0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
3: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: This is Radio Mauritius.
2: Assalamu alaikum.
3: Kimchi Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shrotalandariki hrudayapurvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.

वेदे सांग पद क्रमोपनिषदेर गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस विशेष कार्यक्रम में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। जन्माष्टमी का महान पर्व, श्रोताओं ये पर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात्रि के समय जब चंद्रमा वृष राशि में था उस समय हुआ। ऐसा योग हमेशा मिलता तो नहीं है, लेकिन अधिकांश उपासक जो हैं इनमें से अपने अपने अभीष्ट योग का ग्रहण करते रहते हैं। परंतु सिद्धांत रूप से अर्धरात्रि में मिलने वाली तिथि अधिक मान्य होती है, जो इस वर्ष 4 सितंबर शुक्रवार को पड़ रही है। श्रोताओं, ये त्यौहार हिंदू समाज में अत्यंत लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का और सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि केवल जन्माष्टमी कह देने से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बोध हो जाता है, है ना। और सनातन धर्मानुयायी नर नारी आवाल वृद्ध इसका पालन करके अपने को बहुत धन्य मानते हैं, पवित्र मानते हैं। श्रोताओं, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का अवतार प्रमुख 10 अवतारों में से सर्वप्रमुख अवतार है। अन्य अवतार परब्रह्म के पूर्ण अवतार तक नहीं माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी 12 कलाओं के अवतार माने जाते हैं, परंतु भगवान कृष्ण को 16 कलाओं का पूर्ण अवतार कहा। श्रीमद् भागवत महापुराण ने कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनके पूर्ण ब्रह्म घोषित किए जाने का आधार वास्तव में मनुष्य के रूप में किया गया उनका क्रियाकलाप भी है। उन्होंने अधर्म का उन्मूलन करके धर्म की स्थापना की, अन्याय और असत्य को दबा करके न्याय और सत्य की प्रतिष्ठा की। भगवद गीता में स्वयं अपने मुखारविंद से उन्होंने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की उन्नति होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। श्रोताओं, द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का अवतार अद्वितीय रूप में हुआ। उस समय के अत्याचार का ज्वलंत उदाहरण है कि उनका जन्म कंस के जेल में हुआ था। समझ लीजिए कि कितना अत्याचार उस समय हो रहा था कि भगवान को जेल में अवतरित होना पड़ा। उनके माता पिता बहुत दिन पहले से ही जेल की यात्रा और भुगत रहे थे, जबकि वे कंस के अपने बहन और बहनों ही थे, और जन्मते ही उन्हें चुपचाप गोकुल में और नंद यशोदा के घर पहुंचा दिया गया। मथुरा में जन्म हुआ और कहां पहुंचा दिया, गोकुल गाँव में पहुँचा दिया। अंधकारमयी अर्धरात्रि, चारों ओर भयानक सन्नाटा, आकाश में घनघोर घटाओं का राज्य। इस प्रकार प्रकृति भी तो समाज के उस काले चित्र को प्रस्तुत कर रही थी। कुशासन की काली माँ चारों ओर व्याप्त थी। जनता के हृदय में निराशा की घटाएं और घिरी हुई थी। लोग असहाय होकर के सन्नाटे की दशा में पड़े हुए थे। ऐसी परिस्थिति में अपने दिव्य आलोक से काली घटाओं को चीरते हुए जन मन अधिनायक आनंद कंद व्रज चंद्र श्री कृष्ण चंद्र और उदित हुए। श्रोताओं, इससे लोक की निराशा में आशा का संचार हुआ। भक्तों के हृदय जो है प्रफुल्लित हुए और संत महात्माओं को नवीन संबल प्राप्त हुआ। आज उनके अवतार को 5000 से ज़्यादा वर्ष बीत गए हैं, किंतु समय की ये लंबी अवधि इस दिन के हर्ष और उल्लास की स्मृति को फीकी नहीं कर पाई। श्रोताओं, आज भी हम उसी उत्साह में और इस उत्सव को मनाते हैं जैसे उस समय के ब्रजवासियों ने मनाया होगा।
भगवान श्री कृष्ण का जीवन श्रोताओं अनेक अलौकिक विशेषताओं से युक्त है। अन्य अवतारों में किसी एक आदर्श की स्थापना की गई, परंतु भगवान कृष्ण का जो जीवन है ना, कला कौशल

उनका सौंदर्य, विज्ञान, राजनीति, धर्म, समाज, सामान्य जन तथा ज्ञानी पुरुष आदि से संबंधित विविध क्षेत्रों में समान रूप से व्याप्त है। वे सत्य के आधार पर सुंदरता के साथ कल्याण के नियामक थे। उनका जीवन सत्यम, शिवम, सुंदरम का अद्भुत समन्वय था। उनके व्यवहार की गहनता और आचार की रहस्यात्मकता समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। वे रास लीला रचाते थे, लेकिन महायोगेश्वर भी थे। एक सामान्य गृहस्थ के बालक के समान गोप बालक थे, तो भगवत गीता जैसे गूढ़ ज्ञान के प्रकाशक भी तो थे। उपद्रव बचाने के लिए ब्रज का त्याग किया, किंतु महाभारत के संचालक भी थे। सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण के सहपाठी और मित्र थे, और सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि के स्वामी भी थे। अनेक दुष्ट राजाओं को पदच्युत किया, किंतु स्वयं उनके स्थान पर राजा नहीं बने। श्रोताओं, भक्तों की रक्षा की और उनका अपना परिवार सुरक्षित नहीं रह पाया। ऐसी विविधताओं में अनेक रहस्य भरे पड़े हुए हैं श्रोताओं इनका, और उल्लेख जो है पौराणिक कथाओं तथा महाभारत आदि में और विस्तार से किया गया है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं श्रोताओं वो सांकेतिक हैं, है ना, सिम्बॉलिकल हैं। इसकी और उनकी तह में न पहुंचने के कारण बहुत सारे लोग जो हैं और बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल डालते हैं। उनके जीवन की कुछ घटनाएं लोगों को अटपटी मालूम होती हैं। उनमें से अधिकतर जो है वो रासलीला, चीरहरण का नाम ज़्यादातर लोग लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये शुद्ध अलंकारिक कथा है श्रोताओं, क्योंकि श्रीमद् भागवत एक साहित्य का ग्रंथ भी तो है ना, वो इतिहास नहीं है। इस प्रकार इस प्रकरण में गोपियों और भगवान कृष्ण के रूप में इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के साथ ब्रह्म का जो इच्छानुमूलन, संयोग और वियोग दिखाई गया है श्रोताओं, है ना, बहुत अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन चरित्र है श्रोताओं, उसको हम इस त्यौहार को मना करके उनके जीवन चरित्र को यदि हम आत्मसात करते हैं तो तभी और हमारा कल्याण होता है। हम और धार्मिक हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, भगवान कृष्ण के जीवन से सीखें कि किस तरह से और ऐसी किंकर्तव्य मूढ़ वाली जब परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो अपने जीवन को हम कैसे स्थिर कर सकते हैं। अब देखते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध मैदान में अर्जुन सामने किंकर्तव्य मूढ़ होकर के भगवान से पूछा मैं क्या करूं, तब भगवान ने जिस तरह से समझाया है श्रोताओं, हमको भी जीवन में उसको उतार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आज समय यहीं पर समाप्त हुआ चला जा रहा है। ओम शांति ही, शांति ही, शांति।

0: समय हो चला है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आस्था के साथ है। संध्या नमस्कार आपको आस्था।
1: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी सोमवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। आज हवा के झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। समुद्र बहुत खराब रहेगा और लहरें

0: लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती की तैयारी में है। कैबिनेट ने रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा में पेश करने की मंजूरी दी। गंभीर मामलों में गाड़ी जब्त करने और शराब या ड्रग्स के असर में गाड़ी चलाने वाले लोगों सहित कई अन्य अपराधों के लिए सजा कड़ी करने का प्रावधान है। करीब 18 साल से बंद पोटली थिएटर आज अगले कुछ हफ्तों में फिर से खुल सकता है। सरकार पोटली थिएटर और प्लाजा के संचालन के लिए सरकारी और निजी सेक्टर की साझेदारी को प्राथमिकता दे रही है। विदेश स्तर पर नेपाल के उत्तरी इलाकों में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं और प्रभावित इलाकों में तलाश तथा बचाव अभियान जारी है। और अब चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी सोमवार 31 अगस्त सुबह 10 बजे लागू रहेगी। मस्करीन के दक्षिण में बने मजबूत उच्च दबाव के क्षेत्र के कारण देश में तेज हवा के साथ ठंड का असर बना हुआ है। अगले 24 घंटों में बीच बीच में बादल छाए रहेंगे, खासकर पूर्व दक्षिण और मध्य के ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। ऊंचे इलाकों में दिन का तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस और दूसरे इलाकों में 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात में ऊंचे इलाकों में तापमान 13 से 15 डिग्री और समुद्री किनारे 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। कुछ जगहों पर हवा के तेज झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लोगों को हवा में उड़ने वाली चीजों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। ऊंची इमारतों और दूसरे ऊंचे ढांचों पर काम करने से बचें। खुले रास्तों पर गाड़ी चलाते समय भी खास सावधानी बरतें। सूर्योदय 6:20 पर और सूर्यास्त शाम 6 बजे होगा।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: नमस्कार, सुबह के 6:03 हुए हैं। सुप्रभात। आज रविवार 30 अगस्त 2026 की इस भोर की बेला में आपका हम स्वागत करते हैं। प्रातःकाल का समय बहुत ही मंगलकारी रहे आपके लिए, शांत मन, संतुष्टि और आनंदमय वातावरण मिले आपको, ईश्वर से यही प्रार्थना है हमारी। आइए सुबह के इस बेला में सुनते हैं हम आर्य सभा मॉरिशस की ओर से वैदिक वाणी कार्यक्रम। आज सुनिएगा डॉक्टर वेदपाल जी को।
2: मधुर शहद सी हो आपकी वाणी, आइए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस की ओर से वैदिक वाणी।
3: वेद वाणी के सभी सुधी श्रोतागण, मनुष्य की एक स्वाभाविक कामना है कि उसकी इच्छाएं रहती हैं कि मैं यह हो जाऊं, मैं वह हो जाऊं, मैं इसे प्राप्त कर लूं, मैं उसे भी प्राप्त कर लूं। संसार के जितने भी श्रेष्ठ पदार्थ हैं वह सब मेरे अधिकार में हो, मेरा नियंत्रण हो। किंतु चाहते हुए भी मनुष्य अपनी उन इच्छाओं की, अपनी उन अपूर्ण या अतृप्त कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं होता। किस प्रकार से मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने का उचित माध्यम क्या हो सकता है, इसके लिए वेद ने बहुत सुंदर ही संदेश दिया है। वेद का मंत्र है, इंद्र मृड महियम जीवा तुम इच्छ चोदय धियम अयसो न धाराम यत्किंचा।

अहम् त्वायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधीमा देववंतम्। परमेश्वर ने कहा कि ए मनुष्य, यदि तू यह चाहता है कि तेरी सारी कामनाएं पूर्ण हों, तो तुझे निम्न प्रयत्न करने होंगे। अर्थात जब कोई मनुष्य इस प्रकार का व्यवहार करेगा कि उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा? वेद ने कहा, इंद्र है मृड, जीवा तुम इच्छा। तू चाहता है कि मेरी कामनाएं पूरी हों, तो सबसे पहला काम तुझे यह करना होगा कि सुखी तू रहना चाहता है, तो उसके लिए दूसरों को सुखी रखने का प्रयत्न कर। संसार में ऐसा न तो कभी हुआ और न ऐसा कभी हो सकेगा कि मनुष्य तो सुखी हो जाए और उसके प्रतिवेशी, पड़ोसी, परिवार के सदस्य, परिचित या अपरिचित कोई भी जो व्यक्ति हैं, वह सुखी ना हो। मनुष्य एकाकी सुखी नहीं रह सकता। सुखी रहने के लिए तो उसे अपने पड़ोसियों को सुखी रखना ही पड़ेगा। और यह स्वाभाविक सी घटना है कि यदि पड़ोसी के घर में आग लगी हो, तो उसकी तपत, उसकी गर्मी उसके घर को न लगे, यह संभव नहीं है। अपने घर में शांति से रहना चाहता है तो बहुत जरूरी है कि पड़ोसी के घर में शांति हो। यदि पड़ोसी के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हों, तो अपना घर कितना ही भोज्य सामग्री से भरा हुआ हो, उस भोज्य सामग्री का उपयोग मनुष्य सहजता से नहीं कर सकता। इसलिए अपेक्षित है कि सुख से रहना चाहता है, सुखी होना चाहता है, तो दूसरों को भी सुखी करने का प्रयत्न करे। और दूसरों को सुखी करने के प्रयत्न हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, यह कभी तृप्त नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पृथ्वी के सारे रत्न, पृथ्वी का सारा धन धान्य, सारी संपदाएं भी यदि एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं, तो उसकी कामनाओं की पूर्ति हो सके। किंतु कामनाओं की पूर्ति करने का महत्वपूर्ण लाभ है संतोष का अनुभव करना, क्योंकि व्यक्ति जब संतुष्ट होता है, तो संतुष्ट होने के पश्चात वह उत्तम लाभ को प्राप्त करता है। इससे उत्तम लाभ कुछ नहीं है। पतंजलि ने स्वयं कहा है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। ऐसे सुख का लाभ संतोष से व्यक्ति को प्राप्त होता है, जिसकी तुलना दूसरे किसी सुख से नहीं की जा सकती। अर्थात हमारे पास जो भी है, हम जो भी कर सकते हैं, उस पर केवल अपना अधिकार न माने, अपितु दूसरे व्यक्तियों का भी अपने अर्जित भोग्य पदार्थों पर अधिकार मान करके हम उनके लिए भी वितरण करना सीखें। और यदि मनुष्य वितरण करना सीख जाए, बांट करके खाना सीख जाए, तो संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता, किसी प्रकार का अभाव नहीं हो सकता। तो इसलिए वेद ने कहा है कि बांट करके खाओ। वेद ने कहा, जो जल के स्रोत हैं, वो केवल आपके अकेले के लिए नहीं हैं, अपितु पूरी मानवता के लिए हैं। जितने भी भौतिक संसाधन हैं, उन भौतिक संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। और जब जब किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा, किसी एक राष्ट्र का अधिकार होगा, तो भले ही राष्ट्र के पास वह संपदा बढ़ती रहे, किंतु पड़ोस का राष्ट्र यदि दुखी है, वह दरिद्र है और भूख से पीड़ित है, तो निश्चित रूप से वह अपने पड़ोसी से छीनकर खाने का प्रयास करेगा। इसलिए आवश्यक है कि उन्हीं संसाधनों को पूरी मानवता का मान करके हम बांट करके उपयोग करना सीखें, और जितना हमको प्राप्त हो जाए परिश्रम करने के पश्चात, उसमें हम संतोष की अनुभूति करें। यह पहली महत्वपूर्ण शर्त है। और वेद ने दूसरी बात कही कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, जो तुम चाहते हो वह तुम्हें उपलब्ध हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें एक

काम करना है कि तुम सबके प्रिय बनो। सबके प्रिय बनने का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति वैर को छोड़ देना। यदि व्यक्ति प्राणियों के प्रति वैर को छोड़ दे, विरोध को छोड़ दे, तो उस वैर और विरोध को छोड़ने के पश्चात वह व्यक्ति दूसरों का प्रिय होगा। और दूसरों के प्रिय होने का तात्पर्य है वह परमेश्वर का भी प्रिय होगा, क्योंकि सारी प्रजाएं उस पिता की संतति हैं, सारी प्रजाएं उसकी संतान हैं। व्यक्ति में जो दिव्य भाव हैं उन दिव्य भावों का स्फुरण होगा। दिव्य भाव होने का अर्थ है कि उसका जीवन स्वयं तो प्रकाशित होगा ही होगा, किंतु वह दूसरों को भी प्रकाशित करने में समर्थ हो सकेगा। यदि व्यक्ति दूसरों को प्रकाशित करने का प्रयत्न करता है तो उसे सुख की उपलब्धि होगी। और दूसरों के लिए प्रयत्न करने का अर्थ है कि उनके जीवन से जो अंधकार है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, उस अज्ञान, अविद्या और अंधकार की निवृत्ति कर देना, उसको दूर भगा देना। यदि व्यक्ति इस प्रयत्न में निरत है कि वह संसार से अविद्या को मिटाना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसे सफलता प्राप्त होगी। यह सफलता यह संभव है कि क्रम से हो, थोड़ी थोड़ी हो। पूरी दुनिया को एक व्यक्ति ज्ञान के आलोक से आलोकित न कर सके, किंतु जितना उसका सामर्थ्य है, यदि वह अपने प्राप्त ज्ञान को, अपने प्राप्त अनुभव की पूंजी को दूसरों में बांट करके उनको भी ठोकर खाने से बचा सकता है, उनको दुख होने से बचा सकता है, तो ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से दूसरों का प्रिय होगा। दूसरों का प्रिय होने के लिए जहाँ बांट करके खाना, अविद्या के अंधकार को मिटाना अपेक्षित है, वहीं यह भी अपेक्षित है कि मानव के किसी भी कोने में, उसके आचरण के किसी भी अंश में, किसी भी भाग में किसी प्रकार का अनुचित आचरण न रहे। मनुष्य का आचरण मनुष्य के सदृश हो। यदि मनुष्य का आचरण पशुवत हो जाए, यह पशु प्रवृत्ति है कि वो सबसे पहले जितने भी पदार्थ हैं उनको अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। अनेक पशु इस प्रकार के मिलेंगे जो आज के भोजन की चिंता नहीं करते, अपितु भविष्य के लिए भी भोग सामग्री को संग्रहित करके रखते हैं। तो ऐसी जब पशु प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर जन्म लेने लगती है, तो वह मनुष्य मनुष्य नहीं अपितु पशु होता है। मनुष्य होने का अभिप्राय ही है कि मनन पूर्वक कार्य करना, सोच करके कार्य करना, चिंतन पूर्वक कार्य करना। मन की जो निम्न तल है, मन का, उसकी जो ईड़ नामक प्रवृत्ति है, वह ईड़ नामक प्रवृत्ति सब पदार्थों पर नियंत्रण जमा लेने की प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति से ऊपर उठना और उस प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके ये विचार करना कि मैं जिसे प्राप्त करना चाहता हूँ, क्या मैं उसके लिए अधिकारी हूँ या नहीं। यदि मनुष्य जिसे पाना चाहता है उसका अधिकारी बनने का प्रयत्न करता है, वह उसका अधिकारी हो और फिर पाने का प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, तो निश्चित रूप से जो पदार्थ उसे प्रयत्न से अर्जित हुए हैं, पुरुषार्थ से जो उसने अर्जित किया है, संग्रहित किया है, वह सदैव उस पर कुंडली मार करके नहीं बैठेगा। वो दूसरों का सहयोग लेगा और दूसरों का सहयोग करेगा, क्योंकि हमारा जीवन एकाकी नहीं चल सकता, हमारा जीवन सहयोग पर आश्रित है। बचपन में हम माता पिता का सहयोग लेते हैं, बड़े होकर के गुरुजनों का सहयोग लेते हैं, उससे बड़े होकर समाज के जो समृद्ध व्यक्ति हैं, समाज के जो संपन्न व्यक्ति हैं, उनके सहयोग से हम अपनी जीवन की यात्रा को चलाते हैं। सारे मार्ग मनुष्य स्वयं निर्मित नहीं करता, दूसरों के बनाए हुए मार्गों पर व्यक्ति चलता है। सारे पदार्थों की उत्पत्ति मानव स्वयं नहीं कर सकता,
दूसरों के द्वारा उत्पन्न

0: जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का उपयोग व्यक्ति करता है, और जब व्यक्ति यह विचार कर ले कि मेरे जीवन में दूसरों का बहुत बड़ा भाग है, तो वह स्वयं को समर्पण करना सीखेगा, और ऐसा व्यक्ति स्वयं भी सुखी होगा, समाज भी सुखी होगा। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा वैदिक वाणी,
2: और आज आप सुन रहे थे डॉक्टर वेदपाल जी को। हमारी आपकी मुलाकात रेडियो मॉरिशस पर हो रही है, इस समय 6:16 हुए हैं।
3: एमबीसी रेडियो 24 hours a day।
2: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्तियां हैं, हम आपके लिए पढ़ते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सोचीज सीते लुमियर घोंबे के पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाकों के लोगों को आजू पहाडाइज और लारू ओकिदे के रहने वालों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से आज रविवार 30 अगस्त को सुबह 8:30 से दिन के 3:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी, और हाईलैंड्स के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि बासन रोड केनिजा लेन हाईलैंड्स और आसपास के इलाकों में अगले बुधवार 2 सितंबर को सुबह 9:00 से शाम के 4:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से ही बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय 6:18 हुए हैं और हमारी आपकी मुलाकात रेडियो मॉरिशस पर जो हो रही है, चलिए हम मनन करने योग्य कुछ गाने सुनते हैं, इन बातों पे ज़रा ध्यान रखते हैं। कुछ भावपूर्ण गीत आप लोगों के नाम हम करते हैं और चलिए ज़रा सोचते हैं, जो मिल गया हमको उसमें संतुष्टि मिल जाना कितना अच्छा होता है। इसलिए जो दिया ऊपर वाले ने उसको आप लीजिए और शुक्रिया अदा कीजिए, जो औरों के पास है उस पर मत ध्यान दीजिएगा।

मिल जाए अगर सब कुछ इस जहां में, तो हो सकता है कि इस जहां का मतलब भी नहीं पता हो हमको, अगर मिल जाता है हमको थोड़ा सा और हम पा जाएं पाने की उम्मीदें अपने जीवन में, तो औरों की भी इज्जत हमें आएगी, औरों के लिए हमारे मन में प्रेम भी हमेशा आएगा। इसीलिए नहीं देते सब कुछ इस जहां में हमको ऊपर वाले, बस दे देते हैं थोड़ा सा ताकि हम और भी पाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करें। बस कोशिश करते रहिए, सुबह की ये बेला है, करते रहिए कोशिश। कोशिश का ये संदेश अपने मन में समाये रखिएगा। थोड़ी देर में 6:30 बजने वाले हैं, आप सुन पाएंगे आज का समाचार बुलेटिन, जिसे लेकर आएंगी आस्था।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, सुबह 6:30 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। 30 अगस्त का दिन है, ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी सोमवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। हवा के झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सड़क पर गंभीर नियम तोड़ने वालों

0: के खिलाफ सख्ती की तैयारी। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई है। गंभीर मामलों में गाड़ी जब्त करने और सजा कड़ी करने का प्रस्ताव है। मॉरिशस की दो युवा टीमें स्टेम रेसिंग वर्ल्ड फाइनल्स 2026 में करेंगी देश का प्रतिनिधित्व। अक्टूबर में सिंगापुर में होगी विश्व प्रतियोगिता। सीएससी वेलोसिटी टीम को सरकार देगी आर्थिक सहायता। सैमरोंडो में अब इंटरनेट की सुविधा। लंबे समय से सैटेलाइट फोन और रेडियो पर निर्भर लोगों के लिए संचार का नया माध्यम स्थापित किया गया है। नेपाल के उत्तरी इलाके में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। सैकड़ों लोग लापता हैं। प्रभावित इलाकों में तलाश और बचाव अभियान जारी है। इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी सोमवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। देश में आज मौसम काफी ठंडा और तेज हवा वाला रहेगा। पूर्व दक्षिण और मध्य के ऊंचे इलाकों में बीच बीच में बारिश होने की संभावना है। हवा दक्षिण पूर्व से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि कुछ जगहों पर तेज झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लोगों को उड़ने वाली चीजों से सावधान रहने और खुले रास्तों पर गाड़ी चलाते समय खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। समुद्र बेहद खराब रहेगा और प्रवाल रेखा के बाहर लहरें 4 से 6 मीटर तक पहुंच सकती हैं। ऊंचे ज्वार के समय खासकर पश्चिम और दक्षिण के निचले तटीय इलाकों में पानी भरने का खतरा है। सड़क पर गंभीर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार अब और सख्ती की तैयारी में है। कैबिनेट ने रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। बिल में गंभीर मामलों में गाड़ी जब्त करने और कुछ मामलों में चालक को गाड़ी चलाने से रोकने का प्रावधान है। शराब या नशीले पदार्थों के असर में गाड़ी चलाने, सड़क पर हिंसक व्यवहार और गैर कानूनी रेस के लिए भी सजा कड़ी करने का प्रस्ताव है। इस पर फ्लोरियो फ्लो ने निर्मा नारायण रेड्डी से बात की। विवरण याचना मिश्रा का है।
1: Nous sommes contre la répression, mais ces amendements sont nécessaires pour renforcer la sécurité sur nos routes.
2: हम दमन के खिलाफ हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा ठोस हो इसके लिए ये कदम जरूरी है। जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी, साथ में यात्रियों, राहगीरों, अन्य चालकों की भी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। ड्रग्स के नशे में स्थिति गंभीर हो जाती है और सजा उससे भी गंभीर होनी चाहिए। एक जानलेवा दुर्घटना के बाद चालक को सजा देने की बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बढ़ाना, चालक को अवगत कराना, जागरूक कराना जरूरी है। कार्रवाई, जागरूकता जरूरी है और पेनल्टी पॉइंट्स प्रणाली इसी दिशा में अमल में लाई गई।
1: कंट्रोल एंड कैंपेन डी सेंसिबिलाइजेशन कॉल सिस्टम डी पीएमई आ पॉइंट इज जस्टली वन मेजर की वीज आ रिस्पोंसिबिलिटी डावांटेज डी कंडक्टर।
0: FCC में जानकारी बाहर जाने के शक को लेकर अंदरूनी जांच शुरू की गई है। FCC के मुताबिक नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े काले धन के एक मामले में एक संदिग्ध के पास कमीशन का एक आधिकारिक दस्तावेज मिला है। इसके बाद मामले से जुड़े जांच अधिकारियों के लैपटॉप जांच के लिए ले लिए गए हैं। अब ये पता लगाया जाएगा कि ये दस्तावेज संदिग्ध तक कैसे पहुंचा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। FCC का कहना है कि जांच के नतीजे के आधार पर जरूरी कदम उठाई जाएंगी। बैंक ऑफ मॉरिशस ने इंटरनेट पर चल रही निवेश की एक फर्जी योजना को लेकर लोगों को सावधान किया है। इसमें लोगों को पैसा लगाने के लिए लुभाने के मकसद से बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर डॉक्टर प्रिसिला मथुरा ठाकुर की AI से बनाई गई तस्वीर और एक कारोबारी की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने साफ किया है कि इस योजना को उसकी या देश के किसी भी बैंक की मंजूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ तो उसे तुरंत पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी गई है। मॉरिशस की दो युवा टीमें अरामको स्टेम रेसिंग वर्ल्ड फाइनल्स 2026 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। ये विश्व प्रतियोगिता 3 से 8 अक्टूबर तक सिंगापुर में लगेगी। कैबिनेट ने सेंट एस्प्री कॉलेज की CSE वेलोसिटी टीम को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इस टीम ने पिछले साल मॉरिशस में हुई राष्ट्रीय स्टेम रेसिंग प्रतियोगिता जीती थी। सुखदेव बिसुनदयाल स्टेट कॉलेज की रेसिंग वोटेक्स टीम भी मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करेगी। स्टेम रेसिंग मॉरिशस के फ्रांसवा मॉक ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने राजमिला सीतामुनि से बात की। विवरण याचना मिश्रा।

0: Maurice, c'est énorme parce que Maurice, représente le continent
1: ये
0: africain
1: मॉरिशस के लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बार के लिए इस प्रोग्राम के लिए मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कार्य सत्र होंगे जिसमें हम अपने साझेदारों को भी आमंत्रित कर रहे हैं सहयोग के लिए। हम इस चैंपियनशिप को जीतना चाहते हैं। विश्व फाइनल्स का खर्च 1 से 2 मिलियन के करीब है प्रति टीम के लिए। रजिस्ट्रेशन, भागीदारी, होटल का खर्च इसमें आता है, खासकर सिंगापुर में जहां महंगाई ज्यादा है। सभी टीमों को अभी भी वित्तीय सहयोग की जरूरत है। सरकार ने मदद का वादा किया है, लेकिन कुछ डेडलाइंस भी हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। जो भी सहयोग के लिए आगे आना चाहता हो वो हमारे साथ संपर्क कर सकता है।
2: इस प्रतियोगिता में 13 से 19 साल के युवा अपनी छोटी रेसिंग कार तैयार करते हैं और अपनी टीम बनाकर पूरे प्रोजेक्ट को खुद संभालते हैं। सैम्पोंडो में संचार के क्षेत्र में एक नया कदम। लंबे समय से वहां मॉरिशस से संपर्क के लिए मुख्य रूप से सैटेलाइट फोन और रेडियो का सहारा लिया जाता है। अब सैम्पोंडो में इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। इस परियोजना के लिए कॉन्ट्रैक्ट एमटेल ने हासिल किया है। समझौते पर शुक्रवार 28 अगस्त को पोर्टलुई के लाबुनेने होटल में हस्ताक्षर किए गए। इस सुविधा से सैम्पोंडो में काम करने वाले लोगों के लिए मॉरिशस से संपर्क करना आसान होगा। साथ ही देश के दूर दराज इलाकों को बेहतर संचार सुविधा से जोड़ने की दिशा में भी इसे अहम कदम माना जा रहा है। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तुहल को सुनते हैं याचना मिश्रा।
3: Maintenant nous connecter aussi à Saint-Brandon et Raphael Islands à travers la technologie LEO.
1: हमने सैम्पोंडों और राफेल आइलैंड्स को भी टेक्नोलॉजी लियो के जरिए अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के साथ जोड़ा है। लियो का दाम कम है, कनेक्शन तेज है। टापू के साथ हम जुड़ पाएंगे, वहां के लोगों को इंटरनेट मिलेगा, वे अपने परिवार वालों से भी संपर्क कर पाएंगे।
2: करीब 18 साल से बंद पोटली थिएटर जल्द फिर खुल सकता है। कला और संस्कृति मंत्री महीन गुंजिया ने अगले कुछ हफ्तों में इसे दोबारा खोलने की घोषणा की है। इस सिलसिले में गुरुवार 3 सितंबर को उनके मंत्रालय, प्रांत प्रशासन मंत्रालय और पोटली नगर पालिका के बीच बैठक लगेगी। सरकार पोटली थिएटर और रुजिल के प्लाजा के संचालन के लिए जिम्मेदार सरकारी और निजी सेक्टर की साझेदारी को प्राथमिकता दे रही है। पोटली थिएटर वर्ष 2008 से बंद है। मंत्री महीन गुंडिया को सुनते हैं याचना मिश्रा।
1: पोटली थिएटर की लॉन्चिंग भी कर रहे हैं। दोनों नगर पालिकाओं को बधाइयां देना चाहूंगा दो थिएटर्स को फिर से शुरू करने की उनकी पहल के लेकर। कला एवं संस्कृति मंत्री के नाते मेरे लिए थिएटर बहुत जरूरी है। ऐसा मंच जहां कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर पाए। सेश कॉन्स्टेंटिन थिएटर 4-5 सालों तक बंद रहा। मेरी नियुक्ति के 4-5 महीने बाद मैंने थिएटर की लॉन्चिंग फिर से की, रिनोवेशन कराया। आज जगह में बुकिंग पूरी है, यानी इसकी मांगें ज्यादा हैं। अब आगे देखना है कि हम क्या कर सकते
3: हैं।
2: कलाकारों के अधिकार, मनोरंजन के सेक्टर को और पेशेवर बनाना और पर्यटन में मॉरिशस संस्कृति को अधिक जगह देना, इन्हीं मुद्दों पर मॉरिशस सोसाइटी ऑफ ऑथर्स, माजा आगिम और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने चर्चा की। ये बैठक 19 अगस्त को एबन के होटल स्कूल में लगी। माजा के निदेशक डॉक्टर जेरो लुइस ने कलाकारों के अधिकार और उनकी संरचनाओं की सुरक्षा में संस्था की भूमिका के बारे में बताया। माजा की अध्यक्षा जोएल कोरे ने कहा कि मकसद कलाकारों के अधिकारों को एक रुकावट के रूप में नहीं, बल्कि कलाकारों, रचनात्मक क्षेत्र और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के माध्यम के रूप में देखना है। बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना और इसके लिए अफ्रीका के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना, इन्हीं मुद्दों पर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिंपोजियम 2026 में चर्चा हुई। सम्मेलन का 6वां संस्करण 20 से 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित किया गया। मॉरिशस के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मंत्री अजय गणेश ने भी इसमें हिस्सा लिया। सम्मेलन में अफ्रीका में बुनियादी ढांचों के विकास से जुड़े कई प्रतिनिधि शामिल रहे। इस सम्मेलन और मॉरिशस के

0: ये इसके महत्व पर मंत्री अजय गणेश ने बात की है, विवरण है याचना मिश्रा।
1: दक्षिण अफ्रीका में एक बड़े फर्म का दौरा में कर पाया जहां वेस्ट वाटर पर फिर से काम करके उसे ट्रीट करके उसे पीने योग्य बनाया जाता है, नेटवर्क में फिर से जोड़ा जाता है। हम टेक्नोलॉजी के बारे में सीख पाए हैं। मैंने क्रॉस बॉर्डर यानी सीमाओं से परे जाकर सहयोग पर बात की कि किस प्रकार हम विकास परियोजनाओं में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र के बारे में भी हमने बात की। मैं दक्षिण अफ्रीका के मंत्री द्वारा आमंत्रित था, सारा खर्च वहन उन्होंने किया।
0: नेपाल के उत्तरी इलाके में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है, इसलिए मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। लापता लोगों में 517 विदेशी नागरिक, बिजली घरों और परियोजनाओं में काम करने वाले 937 कर्मचारी, नेपाली सेना के 45 जवान, 40 पुलिसकर्मी और सीमा शुल्क विभाग के 29 अधिकारी शामिल हैं। भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में अचानक आई बाढ़ से कई बस्तियां तबाह हो गई हैं और जरूरी बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित इलाकों में लापता लोगों की तलाश जारी है। अंत में चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी सोमवार 31 अगस्त सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। मस्करविंस के दक्षिण में पाए जाने वाले उच्च दबाव के क्षेत्र के कारण देश में तेज हवा के साथ ठंड का असर बना हुआ है। अगले 24 घंटों में बीच बीच में बादल घिरे रहेंगे, खासकर पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। ऊंचे इलाकों में दिन का तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस और दूसरे इलाकों में यानी तटवर्ती इलाकों में 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात में ऊंचे इलाकों में तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस और समुद्र किनारे 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच। हवा दक्षिण पूर्व से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। कुछ जगहों पर हवा के तेज झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लोगों को हवा में उड़ने वाली चीजों से बेहद सावधान रहने की सलाह दी गई है। ऊंची इमारतों और दूसरे ऊंचे ढांचों पर काम करने से बचे। खुले रास्तों पर गाड़ी चलाते समय भी खास सावधानी बरते। समुद्र बेहद खराब रहेगा। प्रवाल रेखा के बाहर दक्षिण पश्चिम से आने वाली लहरें 4 से 6 मीटर ऊंची हो सकती है। ऊंचे ज्वार के समय बड़ी लहरों के कारण खासकर पश्चिम और दक्षिण के निचले तटीय इलाकों में पानी भरा आ सकता है। मछुआरों, नाव चलाने वालों और आम लोगों को समुद्र में नहीं जाने की सख्त सलाह दी गई है। ऊंची लहरों के समय समुद्र किनारे जाने से भी बचें। सूर्योदय सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त शाम 6:06 होगा।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। मोसलमो गफरे पाई में 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड के मोहम्मद जाहिद हलमत इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के सवा बारह बजे उन्हीं के मकान पाई से निकाल कर दफनाने के लिए पाई का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट क्वार्टर पास्ट नून। स्कूल लेन सेंचुरी बी एम ए 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सगुना येसु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें हीरा के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उन्हें के मकान सेंचुरी बी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसिलिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM।

Mughal Road, Rivenjurampomi, Rivenjurampomi, Ikhattar Saal ke 71 years old ke Shri Rameshwar Sant ki mrityu ho gayi hai. Shri Rameshwar Sant ki mrityu ho gayi hai. Log unhe Pandit Sant ke naam se adhik jante the. Unke arthi aaj din ke 2:30 unki patni Indira Sant ke makan unhi ke ghar Rivenjurampo se uthakar antim sanskar ke liye ilake ki shmshan bhumi le jaya jayegi. Cremation to the at 2:30 PM. Nehru Road, Belt Air Phoenix mein 85 saal ki Tifavizol ki Shrimati Dawanti Chatri ji Shrimati Dawanti Chatri ji ki mrityu ho gayi hai. Paidaish naam Rukmin, unki arthi aaj din ke 2 baje unke bete Parasram ke makan Phoenix se uthakar antim sanskar ke liye Ali Briand ki shmshan bhumi le jaya jayegi. Cremation today at 2 p.m. Jagannath Road, Rivière-du-Rampomi, 88 saal ke 88 years old ke Premlal Ramdhani ki mrityu ho gayi hai. Log unhein Prem ke naam se adhik jante the. Unke arthi aaj din ke 11 baje unke bete Sudesh Ramdhani ke makan Jagannath Road Rivière-du-Rampo se uthakar antim sanskar ke liye L'Aventure ki shmshan bhumi le jaya jayegi. Cremation today at 11 AM. Route Royale Montseulement Saint-André, Royal Road Montseulement Saint-André, 78 saal ki 78 years old ki Shrimati Adama Apadu ki mrityu ho gayi hain. Paidaish naam Gangudu, log unhe Kamsel ke naam se adhik jante the. Unke arthi aaj din ke 12:30 baje unhi ke makan Montseulement Saint-André se uthakar antim sanskar ke liye Tiaminis Triolet ki shmshan bhumi le jaya jayegi. Cremation today at 12:30 PM. 15 canton Vakwame, Chalsat Sal ki 64 years old ki Shri Sunidat John ki ki mrityu ho gayi hai. Log unhe Anil ke naam se adhik jante the. Unki arthi aaj dopahar baad 2 baje unhi ke makan 15 canton Vakwa se uthakar antim sanskar ke liye 3 mamel ki shmshan bhumi le jaya jayegi. Cremation today at 2 p.m. Anand Road, L'Espérance Trébuchemé, 74 Sal ki 74 years old ki Dulari Sibalak ki mrityu ho gayi hai. Unke arthi aaj din ke 1:30 baje unhi ke makan L'Espérance Trébuchet se uthakar antim sanskar ke liye ilake ki shmshan bhumi le jaya jayegi. Cremation today at 12:30 PM. Marijani Katrobon me 79 years old ki Bisunat Hardwal ki mrityu ho gayi hai. Unke arthi aaj dopahar 3 baje unhi ke makan Katsoya se uthakar antim sanskar ke liye Bouchon ki shmshan bhumi le jaya jayegi. Cremation today at 3 p.m. Maisonette Road Rivière des Anguilles, 69 years old ki 69 saal ki Hirauti Patat Roy ki mrityu ho gayi hai. Paidaish naam Jaman, log unhi Veena ke naam se अधिक जानते थे. उनके अर्थ आज दिन के 1 बजे उनके पत्नी अशोक कुमार के घर रिवेदिसोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ताया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1 PM. रेजिडेंस लाशो में बर्ग में 67 इयर्स ओल्ड के श्री शिव सुंदर सालिग्राम तिवारी की मृत्यु हो गई है. श्री शिव सुंदर सालिग्राम तिवारी की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज दिन की 2 बजे उन्हीं के मकान में बग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो में बग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2 पीएम. यंगटाउन ग्रांबोआ में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड के कपिल देव राम सरन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें संतोष के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन की 1:30 बजे उनकी माँ एनुराधा किस्तु मोहन के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबोआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM. इकसठ साल के कुपुसामी मामुंदी की मृत्यु हो गई है. वे पालमा कटरबोन के रहने वाले हैं. लोग उन्हें मनोज के नाम से ज़्यादा जानते थे. उनकी अर्थी आज सुबह के 10 बजे मुगा पेचित रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 10 AM. मौसलमान डीप रिवर ओलिविया बेलेर रिवियर सेश में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की एलामा रामिया की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें कमला के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी आज

इनके 11 बजे उन्हीं के मकान बिलेरवियस शेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। 93 साल की 93 years old की अनी रघु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अनी के नाम से ज़्यादा जानते थे। पैदाइश नाम लक्सिमो, वे कचुबोन की रहने वाली थी। उनके अर्थी आज सुबह के 10:30 बजे एलियनसन बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10:30 AM। प्रिंस दे गाल रोजिल में 93 साल की 93 years old की श्रीमती सुकिया जिबलल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम चतू, उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस. स्पोर्ट्स न्यूज़.
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार. स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है. प्रीमियर लीग में इस सीजन लिवरपूल अभी तक 2-2 मूड में है. न्यूकासल यूनाइटेड के खिलाफ स्कोर 2-2, नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ भी स्कोर 2-2. कब 2-2 से जागेंगे द रेड्स? इस बार एनफील्ड रोड में लिवरपूल नहीं जीत पाया. नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए एंडोई ने पहला गोल स्कोर किया, फिर इसाक ने इक्वलाइज किया. उसके बाद गिब्स व्हाइट ने पेनाल्टी पर आगे भेजा नॉटिंघम फॉरेस्ट को और मुनोज ने लिवरपूल के लिए अपना पहला गोल स्कोर करके मैच ड्रॉ किया. बॉस एंडोनी इराओला बहुत आग बबूला हो रहा है. जब लिवरपूल ने इक्वलाइज किया 1-1 इसाक का गोल, तब लिवरपूल 3 सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा था. फोर्थ ऑफिशियल टिम रॉबिन्सन सब्स्टिट्यूशन बोर्ड को ठीक नहीं कर पा रहा था. इस बीच नॉटिंघम फॉरेस्ट को एक पेनाल्टी मिली और लिवरपूल 2-1 से पीछे. सब्स्टिट्यूशन करने में देरी हुई, नतीजा नॉटिंघम फॉरेस्ट को पेनाल्टी और गोल. टेक्नोलॉजी के इस युग में ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन के लिए 3 मिनट देर करना गलत है. अगर सब्स्टिट्यूशन समय पर फोर्थ ऑफिशियल कर लेता तो शायद पेनाल्टी नहीं होती. इसीलिए कोच इराओला नाराज हो रहा है, जो जायज है, ऐसा स्काई स्पोर्ट्स और बीबीसी स्पोर्ट्स के फुटबॉल एक्सपर्ट कह रहे हैं. टोटनहम हॉटस्पर की फिर से हार हुई. इस बार न्यूकासल यूनाइटेड स्पर्स के घर में जाकर उसे तोड़ा मरोड़ा 2-0 की हार. नए खिलाड़ियों पर 300 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग खर्च करने के बावजूद टोटनहम हॉटस्पर बॉटम ऑफ द टेबल अंतिम स्थान पर हैं. एंटोनी इलांगा और युआन वीसा स्कोरर रहे. नए सीजन के दूसरे ही मैच में फैंस मैच पूरा होने से पहले जाने लगे, तब टोटनहम हॉटस्पर के लिए समस्या गंभीर है. डिजर्बी पर दबाव अभी से ही ठीक नहीं है. कल के खेले गए अन्य 2 मैचों के नतीजे, बोर्नमुथ 1 एवर्टन 1 और हल सिटी की दूसरी जीत. इस बार हल सिटी ने कोवेंट्री के मैदान में जाकर जीत हासिल की 1-0 से. आज 5 बजे चेल्सी वर्सेस ब्राइटन, लीड्स ब्रेंटफोर्ड, संडरलैंड फुलहम और 7:30 बजे 7:30 किक ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा इप्सविच के खिलाफ. और कल मंडे नाइट फुटबॉल एस्टन विला आर्सेनल. अभी के लिए 2 मैच खेलकर केवल 2 सिटी के पास फुल पॉइंट्स हैं, 6 अंक मैनचेस्टर सिटी और हल सिटी. न्यूकासल यूनाइटेड और एवर्टन के पास 4-4 अंक हैं, लिवरपूल के पास 2 अंक. स्पेन के ला लीगा में कल लेवेंटे ने 5-2 से बेटिस को हराया. रियल सोसिएदाद 2 स्पैनियल 1, एथलेटिको मैड्रिड ने एवे जाकर एफसी सेविला को 3-1 से हराया. बायना का डबल, लुकमान का एक गोल. जर्मनी के बुंडेसलीगा में बोरुशिया डॉर्टमुंड 2 हैमबर्ग 0, एल्वेसबर्ग 3 बायर 04 2, एफसी कोल्न 3 होफेनहाइम 2, माइंस 0 पाडेरबोर्न 0, आरबी लेप्ज़िग 3 बोरुशिया मोनकेनग्लादबाख 0, यूनियन बेर्लिन 3 फ्रैंकफर्ट 3. इटली के सेरी आ में यूवेंटुस की जीत पार्मा पर 2-0 से. फ्लोरेंटिना 0 फ्रोजिनोने 3, मोन्जा 2 उडिनीज़े 3, सासुएलो 2 टोरिनो 1. फ्रांस के लीग 1 में लियो ने अपना मैच ड्रॉ किया ले हावर के

Laf 1, 1, Strasbourg 2, Lens 1, Auxerre 1, Angers 10, Brest 2, Toulouse 2, Lorient 1, 3, 2. France News, Cody Gakpo को साइन करने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड सीरियस हैं, बातचीत शुरू हो गई है कल से, कंक्रीट इंटरेस्ट कहा जा रहा है। गाकपो को बेचा जा सकता है क्योंकि ब्रैडली बाकोला आ रहा है 123 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, 123 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर डील लगभग पूरी हो चुकी है, आज शायद वो मेडिकल पूरा करने आएगा। पर खबर है बेचने से पहले लिवरपूल और एक खिलाड़ी को साइन करना चाहता है, ब्राइटन के याकूबा मिंटे और क्रिस्टल पैलेस से इस्माइला साव पर नजर है। पर फुटबॉल एक्सपर्ट और लिवरपूल के फैंस गाकपो को बेचने के फैसले को रिस्की मान रहे हैं। एक तो गाकपो का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, पिछले सप्ताह एक गोल, इस बार एक असिस्ट, ऊपर से नए खिलाड़ी टिक पाएंगे या नहीं अफेरा स्वीव। ट्रांसफर बाजार मंगलवार को बंद हो जाएगा। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में सेल्टिक 2 फाल्कर 1, हार्ट्स 2 सिट जॉनस्टन 1, किलमोनोक 0 डंडी यूनाइटेड 4। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप के नतीजे, डर्बी 0 स्वानसी 3, मिडिल्सब्रो 3 वेस्ट ब्रोमविच आल्बियन 1, वुल्व्स 4 स्टोक 1, ब्लैकबर्न 1 क्वींस पार्क रेंजर्स 2, बोल्टन 0 लिंकन 1, ब्रिस्टल सिटी 2 पोर्टसमुथ 1, कार्डिफ 2 शेफील्ड यूनाइटेड 2, चार्ल्टन 1 प्रेस्टन 0, नॉर्विच 4 बर्नले 1, साउथहैम्पटन 5 मिलवॉल 1, वाटफोर्ड वेस्ट हैम के बीच मैच रो 1-1। क्रिकेट लॉर्ड्स में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच में कल बारिश के कारण खेल रोका गया। अभी इंग्लैंड की टीम 357 रन से आगे हैं। आज चौथे दिन का खेल होगा, इंग्लैंड के पास 3 विकेट बचे हैं, जल्द से जल्द मैक्सिमम रन बटोर कर डिक्लेयर करेंगे। इधर वीमेंस क्रिकेट में वीमेंस एशिया कप के दूसरे मैच में कल डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका की जीत हुई 9 विकेट से यूएई पर। आज शाम इंडिया वीमेन वर्सेस थाईलैंड वीमेन। साइकिलिंग किम्बर्ली ले कूपियना क्लासिक लोरियां रेस पूरा नहीं कर पाई, फिनिश लाइन से 50 किलोमीटर पहले वो क्रैश कर गई, रिस्क न लेते हुए वो रुक गई। मॉरिशस में क्रिकेट आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 के लिए कल एएमजी पैंथर्स ने टोमास कुक टाइगर्स को 8 विकेट से हराया। आज सुबह 9 बजे एपीपी लियोपार्ड्स वर्सेस वन हेल्थ जागुआर और शाम 1 बजे कॉन्टिनेंटल चीताज वर्सेस टोमास कुक टाइगर्स। इस आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का ग्रैंड फाइनल संडे 13 सितंबर यानी 13 सितंबर को मापू के एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में होगा। रीजनल स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर रोशनोय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए आज सतानी रोशनोय वर्सेस ओलंपिक भामस्तान 3:30 रोशनोय में और मोसेलमा सेंटेंड्रे के सतडे रोवर्स फुटबॉल क्लब की ओर से आज एक गाला मैच होगा। आज 4 बजे वहीं पर सतडे रोवर्स वेटेरन कैडेट्स का स्वागत करेगा बहुत मान और सम्मान के साथ। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: श्रावणी महोत्सव के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वधान में रविवार 30 अगस्त को दोपहर के 3 बजे पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। रुष्टय के आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा पुरुष एवं महिला समाज शाखा 5 में गांधी भवन महात्मा गांधी रोड रुष्टय में। आर्य सभा मॉरिशस और वेद प्रचार समिति के तत्वधान में श्रावणी मास के उपलक्ष में इन समाजों में यज्ञ का आयोजन हो रहा है। सावान आर्य जिला परिषद, श्रावणी यज्ञ पूर्णाहुति, श्यामुनी आर्य समाज, शुक्रवार 28 अगस्त 2026 से रविवार 30 अगस्त 2026 तक दोपहर के 3:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। श्रावणी महोत्सव के उपलक्ष में गहलोत राजपूत महासभा त्रियोले के राजपूत समाज शाखा नंबर 4 में पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं इस रविवार 30 अगस्त को सुबह।

के 9:30 बजे से राजपूत मंदिर रॉयल रोड ट्रॉबुचिक ट्रियोले में। मॉरिशियस आर्य रविवेद प्रचारणी सभा श्रवण मास के संदर्भ में यज्ञ एवं प्रवचन का आयोजन कर रहे हैं। इस रविवार 30 अगस्त 2026 को इन सभा

गणपत रेसिडेंस रिवर व्यू कॉम्प्लेक्स तोम्बुबे में। वेल आर्य रविवेद सभा शाखा नंबर 26 इस रविवार 30 अगस्त को सुबह के 9 से 12 बजे तक सर ARM रोड अपवेल में। आर्य रविवेद फेडरेशन शाखा नंबर 6 एवं रोष्टेय शाखा नंबर 5 यहाँ पर इस रविवार 30 अगस्त को दोपहर के 3 से शाम के 6 बजे तक गांधी भवन महात्मा गांधी रोड रोष्टेय में प्रवचन दिया जाएगा। यहाँ पर आचार्य मनोज आर्य श्रू बंधु द्वारा, जो अर्श गुरुकुल महाविद्यालय नर्मदापुरम MP भारत से आए हैं। मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा श्रावणी उपाकर्म के संदर्भ में शाखा नंबर 5 फेडरेशन नंबर 6 श्रावणी पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं रविवार 30 अगस्त 2026 को दोपहर के 3:30 बजे से गांधी भवन महात्मा गांधी रोड रोष्टेय में।

0: NBC Radio 24 hours a day.
1: इस समय 7:03 हुए हैं। विज्ञप्तियां सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आले जुवेजे रोड पेरेबेक के निवासियों को सूचित करता है कि आज रविवार 30 अगस्त को सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड काशी के निवासियों को सूचित करता है कि फाले गली तानिया गली तमाताव गली इदगा ओबेया सेलेस्टिन रशवर्फ और गजेव गलियों में आज रविवार 30 अगस्त को सुबह 8:30 से दिन के 3 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी और मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए हुई ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतज़ाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
2: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
3: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
4: Dil ki bahar, subah ka nazrana, Radio Mauritius par.
1: सुबह के 7:05 हुए हैं। सुबह का ये नजराना है, सुबह का नजराना। सभा में आप लोगों का हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। नजराना ये सुबह का जो होता है बहुत ही अमूल्य होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। ऊपर वाले ने जो हमें ये सुबह दी है इसके लिए शुक्रगुजार हैं हम। आपके लिए ये सुबह बहुत मंगलमय रहे ये हमारी उम्मीद है। सुबह में सूरज का साथ हो, गुनगुनाते पंछियों की आवाज़ हो और मन में एक दूसरे की याद हो, अपनों का साथ हो, ऐसी ही आप की हर सुबह हो। आपका दिन शुभ हो। आज का ये संडे आपके लिए मंगलमय हो। सुबह का नजराना है, नजराने छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपके नाम करेंगे हम। और फिलहाल लेकर आए हैं एक ऐसा गाना जिसे गुनगुनाना चाहेंगे आप।

0: morning sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: MBC Radio, 24 hours a day.
2: इस समय 7:11 हुए हैं. चलिए सुनते हैं और कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉरेस्ट साइड के निवासियों को सूचित कर

0: बताता है कि रेजिडेंस सेंट लुक, इंपास वो और आसपास की गलियों में आज रविवार 30 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फरसाइट के ही निवासियों को सीबी सूचित करता है कि बोलेन के एक भाग में और आसपास की गलियों में आज रविवार 30 अगस्त को सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और इधर एनएचडीसी सुयाक और मोसेल मोंग्रीग्री के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि अगले मंगलवार 1 सितंबर को सुबह 9 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे और इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इन सभी इलाकों में मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाईज फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय 7:12 हुए हैं। चलिए जरा सुनते हैं आज का मंगल विचार कार्यक्रम।
1: मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से सुनिए मंगल विचार।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह लोगों के साथ रहना पसंद करता है। लोगों का संग प्राप्त न हो तो उसका जीवन नीरस और सूना हो जाता है। हम जिन व्यक्तियों के साथ रहते हैं वह हमारी संगति कहलाती है। संगति अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे शिक्षक हमें सदा अच्छी संगति में रहने और बुरी संगति को त्यागने की सलाह क्यों देते हैं? आइए विचार करें। किसी के मुख से निकलने वाले बोल या किसी का विचार करने का ढंग या फिर किसी का दैनिक व्यवहार यह बताता है कि उसकी संगति कैसी है। मनुष्य अपने आसपास के लोगों के आचार विचार से लगातार प्रभावित होता है। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी पर भी संगति का भारी प्रभाव पड़ता है। शोध से यह पता चला है कि किसी मांसाहारी पशु को यदि शाकाहारी पशुओं के बीच रखा जाए तो उसके खाने पीने की आदतों में अपने आप बदलाव होने लगता है। केवल इतना ही नहीं, अगर मनुष्य को भी मानव समाज से कहीं दूर किसी जंगल में पशुओं के साथ रखा जाए तो वह भी धीरे धीरे मनुष्य का स्वभाव छोड़कर पशुओं जैसा व्यवहार करने लगता है। एक राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे एक बस्ती में पहुंचे। वहां पर एक तोता था। राजा को देखते ही तोता चिल्लाने लगा, उसे पकड़ो, मारो, काटो, वह भाग न जाए। तोते के इस भयानक शब्दों को सुनकर राजा घबरा गए और डर के मारे उन्होंने अपने घोड़े को वापस दौड़ाया और दौड़ाते दौड़ाते वे एक जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें प्यास लग रही थी। देखा कि कुछ दूरी पर एक आश्रम है। सोचा कि आश्रम में जाकर थोड़ा पानी पी लिया जाए। जब वे आश्रम के पास पहुँचे तब वहाँ भी उन्होंने एक तोता देखा। राजा को आश्रम की ओर आते देखकर तोता बोला, आइए महाराज, पधारिए, इस आश्रम में आपका स्वागत है। तोते के मुख से सम्मानजनक

0: शब्दों को सुनकर राजा प्रसन्न हुए और आश्रम में प्रवेश करते ही उन्होंने वहां के आचार्य से पूछा, आचार्य जी, मैं जब आप अपने राज्य की एक बस्ती में घूम रहा था, तब वहां बिल्कुल ऐसा ही एक तोता था जैसा आपके आश्रम में है। वह तोता मुझे देखते ही चिल्लाया, उसे पकड़ो, मारो, काटो, वह भाग न जाए। और आपके आश्रम के तोते ने प्रेम और आदर से मेरा स्वागत किया। इसके पीछे राज क्या है? आचार्य ने समझाया, इस दुनिया में किसी के पास अपना कोई शब्द नहीं होता। वह दूसरों से जो भी सुनता है उन्हीं का प्रयोग करता है। इस आश्रम में एक दूसरे से आदर पूर्वक बात की जाती है, इसीलिए इस आश्रम में पलने वाला तोता सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। और जिस बस्ती के तोते ने आपको पकड़ने, मारने और काटने की बात की, हो सकता है कि वह चोरों की बस्ती है, जहाँ पर चोरों के आने से लोग दंड देने की बात करते हैं। आश्रम के तोते की अच्छाई और बस्ती के तोते की बुराई उनकी संगति के ही परिणाम हैं। पशु पक्षी भी अच्छी संगति में आकर मधुर हो जाते हैं और गलत संगति में पड़कर कटु हो जाते हैं। यदि मनुष्य का उठना बैठना और चलना फिरना श्रेष्ठ लोगों में हो तो उसका व्यवहार उत्तम होगा, और अगर वह बुरे लोगों से मित्रता करे तो उसे बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। संस्कृत में एक लोकप्रिय कहावत है, संसर्ग जाह दोष गुणाह भवन्ति, संगति से ही दोष और गुण प्राप्त होते हैं। श्रोताओं, महाभारत में कर्ण अधर्मी दुर्योधन के साथ रहा, इसीलिए दानवीर होने पर भी कर्ण को उचित सम्मान नहीं मिला। रामायण में हनुमान ने राम का साथ दिया और वानर जाति के होते हुए भी उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। महात्मा कबीर कहते हैं, जो जैसे संगति करी सो तैसा ही फल पाई, अर्थात जो जैसा संग करता है वह वैसा ही फल पाता है। इसीलिए संगति करने से पहले यह परख लेना आवश्यक है कि जिसे हम मित्र बनाने जा रहे हैं उसकी सोच, उसकी बोली और उसका व्यवहार कैसा है। सदा अच्छे लोगों के साथ ही हम रहें। एक बार जो संगति सुधर जाएगी तो पूरा जीवन सुधर जाएगा। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

एक झलक जरा हमर रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों की ओर तो लगा लें। अभी हम सुबह का नजराना पेश कर रहे हैं आपके लिए। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे, उसके बाद 9 बजे हमारा आपका साथ पैगामों के सिलसिले के साथ होगा, यानी कि पैगाम आपके नाम कार्यक्रम के दौरान होगा। और पैगाम आपके नाम कार्यक्रम 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा, और 9 बजे आप सुन पाएंगे आज का मंगल आचरण कार्यक्रम संस्कृत समाचारों के बाद। मंगल आचरण कार्यक्रम आज आधारित रहेगा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, और इसे पेश करेंगी दिव्या। 10 बजे संस्कृत समाचारों के बाद आप सुनिएगा आज का उर्दू प्रोग्राम, जिसे निसार लेकर आएंगे, और 11 बजे के संस्कृत समाचारों के बाद सुंदरम से सुनिएगा आज का तमिल प्रोग्राम, और तेलुगु प्रोग्राम सुनिएगा आज राजेंद्र से दिन के 12 बजे। 1 बजे आप सुनिएगा आज का मराठी प्रोग्राम, शीर्ष लेकर आएंगे, और उसके बाद 2 बजे आप सुनिएगा चाइनीज़ प्रोग्राम जिन से।

और 3:30 बजे आज का गुजराती प्रोग्राम रत्नाजी लेकर आएंगी। 4 से 5 बजे तक आप और हम कार्यक्रम पूजा से सुनिएगा। पूजा ही लेकर आएंगे आपके लिए आज का तोहर पसीन कार्यक्रम 5 से 6 बजे तक, और 6 बजे बेशक हर रोज की तरह आज का समाचार बुलेटिन। फिर चले चलेंगे हम चाइनीज प्रोग्राम की ओर, जिसे होंग होंग पेश करेंगी, और 7 बजे आज का तमिल प्रोग्राम युवासन लेकर आएंगे। वंदना पेश करेंगी आज का तेलुगु प्रोग्राम शाम के 7:30 बजे। 7:50 पर गीत गंगा प्रोग्राम होगा, जिसे शिरीष लेकर आएंगे, और डॉक्टर अलका धनपत जी से सुनिएगा आज का भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम। फिर ये होगा 8:10 पर। फिर 8:40 पर आज का उर्दू कार्यक्रम महफिल शब समीर की प्रस्तुति में, और भोजपुरी तड़का प्रोग्राम 9 बजे से रात के 11 बजे तक ऊर्जा लेकर आएंगी। और यादों का पल होगा वेदिता की प्रस्तुति में सुनहरे पल प्रोग्राम के दौरान 11 बजे से रात्रि के 12 बजे तक। सो ये रहा हमारा छोटा सा डिटेल हमारे रेडियो के प्रोग्रामों के बारे में, रेडियो मॉरिशस के प्रोग्रामों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय रहेगा, और रेडियो मॉरिशस तो आपका साथ देगा ही देगा। साथ देते रहिएगा और सुनते रहिएगा प्यारे प्यारे ऐसे गाने जिन्हें सुनकर यादों का एक समंदर सा जाग जाता है, और यादों के ये समंदर में प्यारे प्यारी प्यारी सी लहरें जो उठती हैं उन लहरों में समा जाने का मन करता है। अजय मूवी का ये गाना है, जरा सुन के गुनगुना लेते हैं, जरा सुन के एंजॉय कर लेते हैं।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह का ये सफ़र बड़ा प्यारा रहे, नया दिन नई उमंग के साथ शुरू हो आपका। सुबह का ये प्यारा सा नज़ारा, हवा की खुशबू आपके मन को आनंदमय रखे, पूरे दिन आप खुश और चुस्त रहें, ये हमारी उम्मीद है। उम्मीद हमारी ये भी है कि मन आपका इस तरह से ताज़ा रहे कि हर काम में आपको सफलता मिल जाए। सफल रहिएगा, खुश रहिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा और गानों का ये सिलसिला अपनाते चलिएगा।

तो बस चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी एक लकड़हारे की है। एक राज्य में अब एक नया लकड़हारा आया था और राजा इस नए लकड़हारे के काम और मेहनत से बहुत प्रभावित था। अपने काम से राजा को तो प्रभावित करना ही था, सो लकड़हारे ने अपना सबसे अच्छा काम शुरू किया और पहले महीने के भीतर उसने 18 पेड़ काट डाले। इससे सचमुच राजा बहुत खुश हुए। अगले महीने लकड़हारे ने कठिन मेहनत तो की, लेकिन

15 ही पेड़ काट पाया और तीसरे महीने में उसने फिर से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन केवल 12 पेड़ काट पाया। तीसरे महीने में राजा आया और उसकी उत्पादकता यानी कि उसके प्रोडक्शन में आई गिरावट पर उससे चर्चा की। लकड़हारे को लगा कि शायद उसने अपनी ताकत खो दी हो या फिर काम करने के लिए वह बहुत बूढ़ा हो गया हो। इस पर राजा ने उससे पूछा, ये बताओ तुमने अपनी कुल्हाड़ी कब तेज की थी? राजा को आश्चर्य तो तब हुआ जब लकड़हारे ने कहा कि पिछले 3 महीनों में कुल्हाड़ी को कभी तेज किया ही नहीं था उसने। तो यही कारण था कि वह अधिक पेड़ नहीं काट पा रहा था, अंदाजा है आपको? जी हाँ, उसने अपनी कुल्हाड़ी तेज नहीं की, इससे उसका प्रोडक्शन घटता गया। तो क्या सीखा हमने? काम करना, मेहनत करना जितना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी होता है कि नियमित रूप से अपने कौशल और अपने उपकरणों यानी अपने टूल्स को तेज़ करते रहना। और सिर्फ उपकरण नहीं, सिर्फ कौशल नहीं, हमें अपने आप को भी बहुत फ्रेश बनाना पड़ता है। हर बार देखना पड़ता है कि क्या हम अंदर से खुश हैं, हम अंदर से संतुष्ट हैं और क्या हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है। जिस तरह टूल्स को ब्रेक की ज़रूरत होती है, जिस तरह हमारे मन मस्तिष्क में ठंडक लाने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमारे दिल को भी, हमारे शरीर को भी थोड़ा सा आराम करना होता है। सो आप मेहनत कीजिए। मेहनत का ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को निग्लेक्ट करें, अपने टूल्स को निग्लेक्ट करें और अपने कौशल को यूं ही गिरने दें। आप में कौशल है, आप कर पाते हैं। एक दिन अगर आपने आराम कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेहनत नहीं की। मेहनत आपकी इस बात से नहीं दिखती कि आपने थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लिया है। मेहनत आपकी लगन से दिखती है, आपके रिजल्ट से दिखती है। सो रिजल्ट के लिए आप अपने मन को, अपने शरीर को, अपने टूल्स को, अपने कौशल को खुश ज़रूर रखिएगा।

सुबह का ये नजराना है और इस नजराने को आप ज़रूर कबूल कीजिएगा। नजराना जो होता है वो बहुत ही अमूल्य होता है। हमारे जीवन में प्राकृतिक नजराना जो है वो भी बहुत अमूल्य है। हर नजराने की तरह प्रकृति हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आती है। बस हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि प्राकृतिक सौंदर्य को, प्राकृतिक देन को हम बर्बाद ना करें। और इनमें शामिल है पेड़ न काटना। पेड़ न काटने के हजारों कारण है, बस हमारे दिमाग में वो बातें हैं, हम उस पर अमल कर लें, यही सबसे बड़ी बात है। अब वो बातें तो हम

जानते हैं, फिर भी बार बार दोहराने से मन को ये मन में वो जज्बा आता है कि हम इन पेड़ों का संरक्षण करते रहें करते रहें। अगर ज़रूरी नहीं होता है तो आप बिल्कुल पेड़ों को मत काटिएगा। पेड़ हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर हमें जीने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, फिर क्यों काटें हम पेड़ों को। हमें फल सब्जियां, अनाज और कई प्रकार के जीवन रक्षक जड़ी बूटियां और दवाइयां भी मिलती हैं उनसे, फिर क्यों काटें हम पेड़ पौधों को। वर्षा और जल संरक्षण भी करते हैं ये पेड़। पेड़ बादलों को आकर्षित करके बारिश कराने में मदद करते हैं और भूमिगत जल स्तर यानी कि सतह का जो पानी है उसे बनाए रखते हैं, फिर क्यों काटें हम पेड़ों को बेवजह। और मिट्टी का कटाव भी रोकता है पेड़। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती हैं जिससे बाढ़ और भूस्खलन नहीं होता है, इस समस्या में कमी आती है, फिर क्यों काटें हम पेड़ों को भला। जीव जंतुओं का भी आश्रय होता है ये पेड़। कितने पक्षी उसमें बसते हैं, अनगिनत जानवरों के लिए, कई छोटे जीवों के लिए घर होता है ये पेड़, और इससे हमारे पर्यावरण में बैलेंस आता है, फिर क्यों काटें हम पेड़ों को भला।

इशारों की बातें जहां छिड़ी, वक्त ने इशारा कर दिया कि हमें रोकना पड़ेगा इन गानों के सिलसिले को, इस सुबह का नजराना के इस हिस्से के सिलसिले को। अभी 8:03 बाकी है, 8 बजे आप समाचार सुन पाएंगे। भोजपुरी में आस्था लेकर आएंगी समाचार भोजपुरी का, और उसके बाद हम मिलते हैं पैगाम आपके नाम शो में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: फजीर के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार। नमस्ते। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंचा समुद्री लहर के चेतावनी सोमवार बिहान 10 बजे ले जारी रही। कुछ जगह हवा की झोंका 90 किलोमीटर प्रति घंटा ले पहुंच सकेला। समुद्र में लहर 4 से 6 मीटर ले ऊंचा हो सकेला। लोगन के समुद्र में नहीं जाए और सीमा पर ही सावधानी रखे के सलाह देवल गल बा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में जानकारी बाहर जाए के शक पर अंदरूनी जांच शुरू करल गल बा। काला धन के एगो मामला में एगो संदिग्ध के पास FCC के आधिकारिक कागज मिलल बा। जांच अधिकारी लोगन के लैपटॉप पर जांच खातिर ले लेवल गल बा। अब पता लगावल जाए कि कागज संदिग्ध ले कैसे पहुंचल। बैंक ऑफ मॉरिशस इंटरनेट पर निवेश के गो फर्जी योजना से लोगन के सावधान कर लेबा। इमे गवर्नर डॉक्टर प्रिसिला मथुरा ठाकुर के AI से बनावल तस्वीर इस्तेमाल हुआ था। बैंक साफ बोल लेबा कि ई योजना के कोनो मंजूरी नहीं बा। धोखा के शिकार लोगन से पुलिस में शिकायत करे के कहल गल।

सीमा के गंभीर नियम तोड़े वाला लोगन के खिलाफ सरकार कड़ा कदम उठावे की तैयारी में बा। नवा बिल में गंभीर मामला में गाड़ी जब्त करे और शराब चाहे नशीला पदार्थ के असर में गाड़ी चलावे परी कड़ा सजा के प्रस्ताव बा। मॉरिशस के दो युवा टीम अक्टूबर महीना में सिंगापुर के स्टेम रेसिंग वर्ल्ड फाइनेंस में हिस्सा ले सरकार सेंट एस्प्री कॉलेज के एस एस वेलोसिटी के आर्थिक

भी मॉरिशस के प्रतिनिधित्व करी। सैन ब्रांडो में अब इंटरनेट के सुविधा मिल गल बा, इसे वहाँ काम करे ओला लोगन खातिर मॉरिशस के संपर्क करी आसान हुई परियोजना खातिर एमटेल के चुनल गल बा। दूसर देश के खबर में नेपाल के उत्तरी इलाका में भयंकर बाढ़ से मरे ओला लोगन की संख्या बढ़ के 675 हो गल बा। सैकड़ों लोगन अभी भी लापता हवन जा, भारी वर्षा से कई गो बस्ती तबाह हो गल बा और ई खोज बचाव के काम जारी बा। तो ये रहा हमनी के भोजपुरी में समाचार, हमनी के सुनला जा, धन्यवाद। सुना शोक समाचार। मुसलमान गफरी पाई में 45 बरिस के 45 के मोहम्मद जहीद हलमत इंतकाल कर गल हवन। उनका जनाजा आज दिन के सवा बारह बजे उन्हीं के घरे पाई से उठा के दफनाए खातिर पाई के कब्रिस्तान ले जावल जाए। स्कूल इन सेंचुबिया में 93 साल के सगुना येसु गुजर गल हवन। उन कर माटी आज सपहर 3 बजे उन्हीं के घरे सेंचुबिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सेंचिलिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। मुगल रोड रिव्या जुगांपा में 71 बरिस के 71 के रामेश्वर संत गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2:30 उनकर पत्नी इंदिरा संत के घरे रिव्या जुगांपा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर उतरीव रिव्या जुगांपा के शमशान भूमि ले जावल जाए। नेहरू रोड बिल्टे फेनिक्स में 85 बरिस के 85 के दवंती चटर्जी गुजर गल हवन। पैदाइश नाम रुकमिन, उनकर माटी आज दिन के 2:00 उनकर बेटा परसराम के घरे फिनिक्स से उठा के अंतिम संस्कार खातिर अलीप्रियों के शमशान भूमि ले जावल जाए। जगनाथ रोड रिव्या जुगांपा में 88 बरिस के 88 के प्रेमलाल रामधनी गुर्जर गल हवन। उनकर माटी आज दिन की 11:00 उनकर बेटा सुदेश रामधनी के घरे रिव्या जुगांपा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावंचिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड मोसलमान सैतंत्री में 78 बरिस के 18 के आदमा अपादू गुजर गल हवन। पैदाइश नाम गेंगुडू, उन कर माटी आज दिन के 12:30 उन्हीं के घरे मुसलमान सैतंत्री से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तैमिनी स्त्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए। कैस कौतों वाकुआ में 64 बरिस के 64 के सुनीदत जोन की गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिल के 2:00 उन्हें घरे वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थामा मेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। आनंद रोड लेस्पेरेंस ए ट्रेबुशे में 74 बरिस के 74 के दुलारी सिबालक गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1:30 उन्हीं के घरे लेस्पेरेंस ए ट्रेबुशे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए। मारी जान कत्सुमे 79 साल के 79 के बिसुंदत हरदयाल गुजर गल हवन। उनकर माटी आज सपहर 3:00 उन्हीं के घरे मारी जान कात्सुय से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। मेजुनत रोड रिव्या दिजोंगी में 69 साल के 69 बरिस के 69 के हिराउती पतट्रोय गुजर गल हवन। पैदाइश नाम जमन, उनकर माटी आज दिन के 1:00 उनकर पत्नी अशोक कुमार के घरे रिव्या दिजोंगी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तायाक के शमशान भूमि ले जावल जाए। रेजिडेंस लाशो मेबर्ग में 67 बरिस के 67 के शिव सुंदर सालिग्राम तिवारी गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2:00 उन्हीं के घरे मेबर्ग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तोंबू मेबर्ग के शमशान भूमि ले जावल जाए। यंगटाउन खोंबा में 48 बरिस के 48 के कपिल देवराम सरन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1:30 उनकर माँ इनुराधा किस्त मोहन के घरे खोंबा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर खोंबा के शमशान भूमि ले जावल जाए।

0: कट्रो बोन में लालवीज कट्रो बोन में आनी रघु गुजरगल हवन आनी रघु गुजरगल हवन पैदाइश नम लक्सिमो उम्र 93 बरिस 93 उनकर माटी आज दिन के 10:30 एलियनसन बुबासन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थोमा मेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। Mon seulement dit priva Olivia Bellier Rivière Sèchemi, mon seulement dit priva Olivia Bellier Rivière Sèchemi, Pachatar Bariske 75 ans qui, Elama Ramya, Gujar Galha, Wanun Karmati, Ajdin ki, Gyarabaji, Igyarabaji, Unhike Ghari Bellier Rivière Sèche, Seutakar, Andim Sanskar Khatir, Boshon, Keshamshan Bhumi, Leja Waljai. Chemin Machine, Palma Katrobounmi, Palma Katrobounmi, Kupusami, Mamundi, Gujar Galhawan, Kupusami Mamundi Gujargal Hawan, Umre 61 Bari 61 years old, Une Kar Arthi Ajdin Ke 10 Uni Ke Ghare Balki Mura Petit Rivière Se Utha Ke Antim Sanskar Khatir Gandhi Palma Ke Shamshan Bhumi Le Jawal Jai. Number 13, Prince de Galles, Rosilme 93 Bari Ke 93 ans Ke Sukia Jiulal, सुकिया जीवलाल गुजरगल हवन पैदाइश नाम चतु उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उन्हीं के घरे रोजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोकग्रस्त परिवार संगे हमनी सहानुभूति प्रकट करत हैं जा।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

इस समय सुबह के 8:15 हैं, हमारी आपकी ये मुलाकात पैगामों के गुलदस्ते में हो रही है। जी हाँ, बेशक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पैगाम। आपके नाम प्रोग्राम आपके परिवार में, आपके दोस्तों के बीच में, आपके अपनों के बीच में अगर कोई इवेंट हो और आप अपने अपनों को विशेज भेजना चाहते हो तो आप ज़रूर हमें हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम आपके मैसेजेस आपके अपनों तक पहुंचाने को हैं तैयार। हमें सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं, साथ देते हुए बेहद खुश हो रहे हैं। और देखिए ना, हम आपको बताएंगे कि कौन सा नंबर है फ़ोन करने के लिए, कौन सा नंबर है मैसेजेस के लिए। तो आप कोई भी ज़रिया इस्तेमाल कीजिएगा, बस हमारे इस प्रोग्राम की शान ज़रूर बढ़ाइएगा। अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो 5251-7005 पर मैसेजेस भेजिएगा, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 4028085 पर कीजिएगा कॉल। हम आपके मैसेजेस भी लेंगे, आपके कॉल्स भी लेंगे और आपके अपनों तक आपके प्यार को पहुंचाएंगे ज़रूर। हमारा साथ तो हमारी बहुत सारे श्रोता दे रहे हैं, जिनमें शामिल हैं मारा सुमागो जी, तयोले के सूरज शर्मा सजादा जी, साधना जी खिव्य खेल के की, और अनीता जी मौदालबे की, देवी जी भी साथ दे रही है हमारा, और लक्ष्मण सिगोबिन जी अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर क्लेफों वाकवा से हमारा साथ दे रहे हैं। आपके साथ के लिए बेहद

शुक्रिया। चलिए जरा हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं प्यारी सी गुड़िया सी चेष्विका तुलसी को। चेष्विका तुलसी अपना जन्मदिन मनाने वाली है थर्सडे 3rd September को, और ऐसे में रानी तुलसी जी मौदालबे से अपनी प्यारी सी गुड़िया सी नातिन चेष्विका तुलसी को हैप्पी बर्थडे कह रही हैं और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं। उनके हर कदम पर भगवान उनका साथ दे, ऐसी प्रार्थना की है भगवान से रानी तुलसी जी ने चेष्विका के लिए। चेष्विका को पापा युवराज की तरफ से, मामा क्रिस्टी, दादा राज, कवि, चाची दिव्या और साथ में शिखा, नानी नाना और पूरे तुलसी परिवार, बुधना परिवार की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी पूरी टीम भी कहती है वेरी हैप्पी बर्थडे टू चेष्विका तुलसी।

पैगाम आपके नाम कार्यक्रम आप लोगों के लिए 8:23 हुए हैं। 9 बजे तक हमारा आपका साथ है और हमारा साथ दे रही हैं अनीता जीवली कॉम्फ्लैक्स से, और ऐसे में हम उनका स्वागत करते हैं। तो चलिए ज़रा हम पेश करते हैं ये पैगाम सुदेवी जी की तरफ से। सुदेवी जी का कहना है कि 26 को मानिका की बेटी कृषिका ने अपना 7वां जन्मदिन मनाया और उनको विश कर रही हैं मामा यशना, उनके पापा नीरज, दीदी लक्षिका, नानी इंद्रानी, मामू अक्षय, मौसी स्नेहा, कृति कीर्ति और बेलगोज के की बड़ी नानी और वहाँ से मामू मामी मौसी और पूरा राम रतन परिवार, हिदोई कुआऊ जूतन परिवार, प्यारी सी एक गुड़िया सी कृषिका को कह रहे हैं अ वंडरफुल बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो, जन्मदिन की मंगल कामनाएं। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी बहुत सारी मंगल कामनाएं, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू कृषिका।

सो थैंक यू अनीता जी फ्रीकॉम फ्लैक्स से साथ देने के लिए, और थैंक यू हमारे सभी श्रोताओं को हमारा साथ देने के लिए। इधर दीपशिका गोपी जी अपना जन्मदिन मनाएंगी 2 सितंबर को, उन्हें मंगल कामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। दीपशिका गोपी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं दादी इंदिरा दे रही हैं पूरे लौटन परिवार के साथ मिलकर। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारी सी गुड़िया सी दीक्षा गोपी।

जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम देते हैं हमारे रेगुलर श्रोता आकाश चेतन मनसुख जी को, बॉम्बू के आकाश चेतन मनसुख जी हमारे इस प्रोग्राम में साथ देना कभी नहीं चूकते हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू आकाश जी। हमारी पूरी टीम की तरफ से बस ये दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा भले चंगे रहें, आपकी सेहत में कभी कोई गड़बड़ ना आए और आपकी खुशियों को दुगना और भी दुगना कर ते जाए भगवान। तो आकाश चेतन मनसुख जी, आपको मंगल कामनाओं का ये सिलसिला हम आपके परिवार के साथ भी देते हैं। आपके पूरे परिवार ने आपको मंगल कामनाएं भेजी हैं। मामा प्रीति, पापा क्रिश, आपकी बहनें उर्वशी और विश्नी, जीजू विनेश की तरफ से मंगल कामनाएं, क्यूट से नेफ्यू केहान की तरफ से, नीस नाविया की तरफ से और

चलिए सर, हम आशनी जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं देते हैं। आशनी जी बसोंश की रहने वाली हैं और अपना बर्थडे मना रही हैं बड़ी खुशी खुशी पूरे परिवार के बीच में। उनके पापा किरण की तरफ से, मामा लीना की तरफ से, भाई सोहम, चाची वरुणा, कजिन आरुषि की तरफ से तीन चाचा हैं, चाचा प्रीतिश, चाचा आतिश और चाचा किशन की तरफ से, दादी माँ देवयानी की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारी सी आशनी, हमारी पूरी टीम की तरफ से।

और जन्मदिन की मंगल कामनाएं सच्चिदानंद जी को भी देते हैं जो बॉम्बे के रहने वाले हैं। आप भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। सच्चिदानंद जी, आपके पूरे परिवार में खुशियों का समां बंधा हुआ है। आपकी पत्नी कविता, दो बहुएं, आपकी दो नातिन और पूरा अमृत परिवार आपको हैप्पी बर्थडे कह रहा है। हमारी पूरी टीम की तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सच्चिदानंद जी।

और चलिए जरा हम इंदिरा जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं मिल कर देते हैं। फोंदिसा की इंदिरा जी अपना जन्मदिन मनाने वाली हैं, और जी नहीं, उन्होंने अपना जन्मदिन मना लिया और उनको मंगल कामनाएं बहुत बहुत प्यार के साथ उनके पूरे परिवार ने दी है। उनके भाई प्रेमनाथ, भाभी सुबीता, बहन विश्वानी, बहन रीता और शारदा, बेटी पूनम, पूजा और प्रतिभा और पूरा दुनमुन परिवार मिलकर जन्मदिन की मंगल कामनाएं दे रहा है और यही उम्मीद कर रहा है कि उनको बहुत अच्छी सेहत मिले, उनको बहुत प्यार मिले, पूरे परिवार का साथ मिले।

और हमारे पास आया फोन संगीता जी का। डबल खुशी का मौका है, खुशियां मना रही हैं। संगीता जी अपने पूरे परिवार के बीच में लाल माटी की उनकी बेटी शिक्षा और दामाद प्रवेश की शादी की सालगिरह है। मोदी परिवार में खुशियों की ये बरसात हो रही है। सो प्रवेश और शिक्षा मोदी जी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। जीवन में सुख ही सुख मिले आपको, जीवन में सपोर्ट ही सपोर्ट मिले और आपका परिवार बहुत ही प्यार से आगे बढ़ता रहे, अपने जीवन में सफल होता रहे। और संगीता जी के बेटे वेदीश सिरतन जी कल पुलिस ऑफिसर बने, नॉमिनेट हुए और उनको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी मंगल कामनाएं संगीता जी की तरफ से। और प्रवेश शिक्षा और वेदीश जी को मामा संगीता की तरफ से, पापा सुभाष, पापा सुदेश और मामा करुणा की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, पूरे सिरतन परिवार की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। खुशी का ये दिन है, खुशी का ये पल है, इन पलों को बहुत ही प्यार से मनाइएगा और परिवार के साथ खूब खुशियां बांटिएगा।

तो चलिए ज़रा हम फ्रांस के दीपक बोहेम जी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। फ्रांस में रह रहे हैं दीपक बोहेम जी, पर मॉरिशस से बहुत सारी मंगल कामनाएं उन तक पहुंच रही हैं। ट्रेल्विन की तरफ से, ममा इंदिरा की तरफ से जो लेकाजियन की रहने वाली है, भाभी कविता, भैया सतीश, भतीजे आदेश, फिर है अक्षिका, भाई भाविया, मौसी मिंता भुजावन और पूरा बोहेम परिवार उनको मंगल कामनाएं दे रहा है। और बहन प्रिया और शर्मिला जी बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रही हैं दीपक बोहेम जी को। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं दीपक जी।

आज हम जिया बुआओं को भी जन्मदिन की मंगल कामनाएं देते हैं। 27 अगस्त को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और उनको मंगल कामनाएं मिली हैं यदि खयोल की नानी साधना की तरफ से, देवानंद की तरफ से, मामा अनुषा, पापा सतीश की तरफ से और भैया गौरव, क्रियान, तस्वीक की तरफ से, मामू, मामी और पूरे जीवन परिवार की तरफ से, पुगाऊ परिवार की तरफ से, खिवियदी खेल और मौदाल बे के उनके पूरे परिवार की तरफ से। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारी सी गुड़िया सी जिया पुगाऊ।

तो बस यहीं पर समाप्त हो जाता है हमारा ये प्रोग्राम पैगाम आपके नाम। आपके पैगाम मिले, आपके दोस्तों तक हमने पहुंचाए, इससे खुशी बहुत महसूस हुई हमको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को इस तरह से सजाने के लिए। आप लोगों के पार्टिसिपेशन से ही सजा ये प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए। 9 बजने वाले हैं, ठीक 9 बजे हमारा आपका साथ यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। हमारी आपकी अगली मुलाकात अगली बार होगी। तब तक के लिए हम सुरेखा आपसे आज्ञा चाहेंगे। थोड़ी देर में 9 बजे आप सुनिएगा संक्षिप्त समाचार, उसके बाद आज का मंगल आचरण कार्यक्रम आधारित रहेगा कृष्ण जन्माष्टमी पर, और लेकर आएंगी दिव्या। हमारी आपकी अगली मुलाकात तक शुभ शुभ दिन, शुभ संडे, नमस्कार।

0: सुबह के 6 और 9 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी सोमवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। देश में आज मौसम काफी ठंडा और तेज हवा वाला रहेगा। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में बीच बीच में बारिश होने की भारी संभावना है। हवा दक्षिण पूर्व से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ इलाके में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। समुद्र बेहद खराब रहेगा। प्रवाल रेखा के बाहर 4 से 6 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। सड़क पर गंभीर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार अब और सख्ती की तैयारी में है। मंत्रिमंडल ने रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। बिल में गंभीर मामलों में गाड़ी जब्त करने और कुछ मामलों में चालक को गाड़ी चलाने से रोकने का प्रावधान है। शराब या नशीले पदार्थों के असर में गाड़ी चलाने, सड़क पर हिंसक व्यवहार और गैर कानूनी रेसिंग के लिए भी सजा कड़ी करने का प्रस्ताव है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में जानकारी बाहर जाने के शक को लेकर

अंदरूनी जांच शुरू की गई है। एफसीसी के मुताबिक ड्रग्स की तस्करी से जुड़े काले धन के एक मामले में एक संदिग्ध के पास कमीशन का एक आधिकारिक दस्तावेज मिला है। इसके बाद मामले से जुड़े जांच अधिकारियों के लैपटॉप जांच के लिए ले लिए गए हैं। बैंक ऑफ मॉरिशस ने इंटरनेट पर चल रही निवेश की एक फर्जी योजना

0: की तस्वीर और एक कारोबारी की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने साफ किया है कि इस योजना को उसकी या देश की किसी भी बैंक की मंजूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ है तो उसे तुरंत पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में नेपाल के उत्तरी इलाके में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। राहत और बचाव अभियान जारी है, इसलिए मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में अचानक आई बाढ़ से कई बस्तियां तबाह हुई हैं और जरूरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Radio Mauritius.
3: 800 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.

रेडियो पर आप सभी का हम दिल से स्वागत कर रहे हैं। सुबह के 9:10 हो चुके हैं और यहाँ पर आपका स्वागत कर रही हैं जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जहाँ पर AM2 पे आप हमें सुन रहे हैं। और आज बहुत ही ख़ास दिन है, भले ही हम 4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी मनाने वाले हैं, लेकिन आज हम इस दिन को और भी पावन बनाएंगे और भी ख़ास बनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पर हमें मौका मिल रहा है कुछ और कृष्ण भजन आपको सुनाने के लिए। एंड एक बार फिर से आप सभी को हमारा नमस्ते प्रणाम। वैसे आप सोच रहे होंगे कि हम कितने बजे तक हैं यहाँ पर, तो आपको बता देते हैं कि सुबह के 10 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और आज हम बात करेंगे उनकी जिनकी हर अदा में एक सीख है, जिनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सार है, और वो हैं श्री कृष्ण। जीवन का महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ये जाप अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपका जो जीवन है वो अमृत की तरह पावन हो जाएगा। और जब हम श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि आती है जो नटखट भी हैं और गंभीर भी। वे केवल एक माखन चोर या गोपियों के संग रास रचाने वाले कन्हैया नहीं हैं, बल्कि वे जीवन जीने की कला सिखाने वाले बस एक महानतम शिक्षक हैं। सोच कर देखिए, कृष्ण का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उनका जन्म जेल में हुआ, पैदा होते ही माता पिता से दूर होना पड़ा, बचपन में ही कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी श्री कृष्ण की किसी तस्वीर या मूर्ति में उन्हें उदास देखा है? नहीं ना, उनके चेहरे पर हमेशा एक मनमोहक मुस्कान रहती है। यही कृष्ण का पहला संदेश है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, चेहरे की मुस्कान और मन का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। और महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपनों के सामने ढाल उठाकर खड़े होने में हिचकिचाते रहे थे, तो तब श्री कृष्ण ने उन्हें बस यही कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी अपना कर्म पूरी निष्ठा और लगन

के साथ करो, परिणाम का चिंता मत करो। शायद इसी वजह से लोग कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हैं तो बदले में आपको किसी चीज की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बस ऐसे ही कुछ और खूबसूरत बातों के साथ और श्री कृष्ण के स्मरण में हम कुछ और खूबसूरत भजन आपको सुनाते रहेंगे।

जी हाँ, 9:22 हो चुके हैं। जन्माष्टमी के उपलक्ष पर हमें मौका मिल रहा है कुछ कृष्ण भजन आपको सुनाने के लिए एंड कुछ कृष्ण वाणी आप तक पहुंचाने में हम बस सफल हो रहे हैं। इससे बड़ा कर्म तो शायद नहीं हो सकता है। और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनके हाथ में एक तरफ बांसुरी है, चेहरे पर मंद मुस्कान और सिर पर मोर पंख। आज हम बात कर रहे हैं सबकी आँखों के तारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। कृष्ण एक ऐसा नाम जो प्रेम, ज्ञान और आनंद का अनूठा संगम है। बचपन में जब वे माखन चुराते थे तो उन्होंने सिखाया कि वात्सल्य और मासूमियत क्या होती हैं। जब उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया तो दुनिया को निस्वार्थ प्रेम का अर्थ सिखाया। जब दोस्त सुदामा के आने पर वे नंगे पांव भागे तो उन्होंने बताया कि सच्चे मित्र की कोई कीमत नहीं होती है। और ये भी सोचने वाली बात है कि जब युद्ध के मैदान में अर्जुन का रथ रोककर उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया तो वे केवल अर्जुन के मार्गदर्शक नहीं बने थे बल्कि पूरी मानवता के लिए जीवन दर्शन रच गए जिनका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। और श्रीमद् भगवद गीता अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको हर एक पड़ाव में ज़िंदगी की सीख मिलेगी ही मिलेगी और हर एक हालात से जूझने और इससे पार करने के लिए आपको शक्ति अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण ये भी कहा कि कर्म से भागना नहीं होता है। उन्होंने सिखाया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चेहरे से मुस्कान कभी गायब नहीं होनी चाहिए। अब आप ही सोचिए कि कारागार के अंधेरे में जन्म लेकर भी जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम का उजाला दिया वही तो हमारे श्री कृष्ण हैं।

जहाँ दोस्तों 9:35 हो चुकी हैं, AM2 में आप सभी का एक बार दिल से स्वागत कर रही हैं, जहाँ पर दिव्या का साथ हैं 10 बजे तक, और जन्माष्टमी के उपलक्ष पर हम कुछ कृष्णवाणी और गीता सार के बारे में बात कर रही हैं, और आपको कृष्ण भजन और कुछ लीलाओं के बारे में भी बात कर रही हैं, और हर एक उनकी लीला के पीछे जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। अब आप देखिए कि कृष्ण भगवान हमेशा माखन के पीछे क्यों पड़े रहते थे, आप ये 2 पल के लिए बैठकर सोचिएगा, विचार करिएगा, क्योंकि माखन में मिठास होती है, और जहाँ पर मिठास होती है वहाँ पर कृष्ण भगवान दौड़े चले जाते हैं। इसीलिए आपका मन भी मीठा होना चाहिए, आपका सोच विचार भी मीठा होना चाहिए, और हमेशा लोगों के प्रति वो निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ प्रेम होना

चाहिए, तभी जाकर मन में कृष्ण बसते हैं। वैसे जब भगवत गीता का सार, जब गीता सार उन्होंने अर्जुन को सुनाया, तो उनमें से एक छोटा सा भाग हम आपको ज़रूर सुनाना चाहेंगे, और ये आप अपने बच्चों को छोटे से ही आप ज़रूर उनको सिखाइएगा, ये उनकी सहायता ज़रूर करेगी। और गीता सार में कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुमने क्या पैदा किया जो तुमने खोया है, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप जीवन में परिवर्तन का अनुभव करते हैं तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुख है वहाँ पर दुख है, और ये तो चलता ही रहता है। और अगर आप जीवन में और भी सशक्त बनना चाहते हैं और जो सहन शक्ति है उसको और भी बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमेशा महामंत्र का जाप ही करना चाहिए, वो है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और जब भी जीवन में उलझन महसूस होना, तो थोड़ी देर शांत बैठकर बांसुरी की उस धुन को याद कर लीजिएगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो चलिए आज इस खूबसूरत सुबह में संकल्प लेते हैं कि कृष्ण भगवान की तरह हर परिस्थिति में हम मुस्कुराएंगे, निस्वार्थ प्रेम करेंगे और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन जो है AM2, और महसूस करते रहिए कृष्ण का प्रेम। और कृष्ण भगवान का प्रेम अगर आपको प्राप्त करना है, तो हमेशा आपको प्रेम से कहना चाहिए राधे राधे।

वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः।

यहाँ दोस्तों 9:51 हो चुके हैं। AM2 की लहरों पर दिव्या का साथ है सुबह के 10 बजे तक। अगर सही मायने से देखा जाए तो श्री कृष्ण का जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी कला है। और आप दो पल के लिए ये भी सोचें कि जहाँ पर महाभारत शुरू होने वाला था, वहाँ पर दुर्योधन जब श्री कृष्ण से मिलने गए थे, तो जब श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो, तो उन्होंने बस डटकर बिना बेझिझक होकर यही कहा कि मैं नारायणी सेना मांगना चाहता हूँ। और मुस्कुराकर श्री कृष्ण ने उन्हें नारायणी

नारायणी सेना दे दिया था। भले ही सब लोगों को पता है कि नारायणी सेना कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी सेना दुर्योधन को सौंप दिया था। जब अर्जुन ने ये बात सुनी तो उनके मन में एक डर सा पैदा हो गया और उन्होंने यही कहा कि माधव, आपने ये क्यों निर्णय लिया और उन्हें नारायणी सेना क्यों दी? हमारे पास तो सेना कम हो जाएंगी। तो श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहे, तो क्या हुआ, दुर्योधन के पास नारायणी सेना है तो तुम्हारे पास मैं हूँ। कहने का मतलब यही है कि जब आप सच्चे मार्ग पर चलते हैं, भले ही आप अकेले क्यों ना पड़ जाए, समय आने पर श्री कृष्ण का साथ और श्री कृष्ण का हाथ ज़रूर आपको मिलता है। इसलिए आपको सेना या फिर शक्तिशाली होने की बिल्कुल डर नहीं होनी चाहिए। जब तक श्री कृष्ण आपके साथ हैं, तब तक पूरे ब्रह्मांड आपके साथ है। तो चलिए इसी के साथ कुछ और खूबसूरत भजन के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे।

चलिए, आपसे बात करते करते बस समय का हमें ज्ञात नहीं रहा, तो चलिए इसी भजन के साथ छोड़े जा रही हैं आपको। और आज से आप जरूर संकल्प लीजिएगा कि आप श्री कृष्ण के मार्ग पर जरूर चलेंगे, सत्य का मार्ग, निस्वार्थ प्रेम सब लोगों के लिए। तो हमारे साथ कहते रहिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। 4 सितंबर को हम बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और इसी उपलक्ष पर हमने कुछ भजन आप लोगों के लिए चलाया, गीता सार, कुछ आपस में कृष्ण वाणी के बारे में भी आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो बस सभी के लिए दिव्या को अनुमति दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में जानकारी बाहर जाने के शक को लेकर अंदरूनी जांच शुरू हुई है। FCC के मुताबिक नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े काले धन के एक मामले में एक संदिग्ध के पास कमीशन का एक आधिकारिक दस्तावेज मिली है। इसके बाद मामले से जुड़े जांच अधिकारियों के लैपटॉप जांच के लिए ले लिए गए हैं। अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये दस्तावेज संदिग्ध तक कैसे पहुंची और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। FCC का कहना है कि जांच के नतीजे के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बैंक ऑफ मॉरिशस ने इंटरनेट पर चल रही निवेश की एक फर्जी योजना को लेकर लोगों को सावधान किया है। इस समय लोगों को पैसा लगाने के लिए लुभाने के मकसद से बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर डॉक्टर प्रिसिला मथुरा ठाकुर की AI से बनाई गई तस्वीर और एक कारोबारी की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने साफ किया है कि इस योजना को उसकी या फिर देश के किसी भी बैंक की मंजूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ तो उसे तुरंत पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी गई है। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी। ये चेतावनी सोमवार सुबह 10 बजे तक जारी रहने वाली है। देश में आज मौसम काफी ठंडा और तेज हवा वाला होने वाला है। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में बीच बीच में बारिश होने की भारी संभावना है। हवा पूर्व से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि कुछ जगहों पर तेज होंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लोगों को सावधानी बरतनी

को कहा गया है समुद्र बेहद खराब रहेगा, लहरें 4 से 6 मीटर तक पहुंच सकती है। सैमौदो में संचार के सेक्टर में एक नया कदम, लंबे समय से वहमोश से संपर्क के लिए मुख्य रूप से सैटेलाइट फोन और रेडियो का सहारा लिया जाता रहा है, अब सैमौदो

0: स्तर पर नेपाल में कुदरत की तबाही के बीच जिंदगी बचाने की जंग जारी है। पहाड़ों से आया पानी, बर्फ, पत्थर और कीचड़ का तेज सैलाब अपने रास्ते में घर, सड़कें, पुल और गाड़ियां बहा ले गया। कई परिवार अपनों की तलाश में हैं और बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। ये तबाही बुधवार को नेपाल तिब्बत सीमा के पास एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटने से शुरू हुई। मुश्किल की इस घड़ी में भारत ने नेपाल की मदद की ओर मदद बढ़ाई है। राहत सामग्री के साथ डॉक्टर और सुरंगों में बचाव के विशेषज्ञ भी भेज दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों, खासकर सुरंगों में लापता कर्मचारियों तक पहुंचने की कोशिशें जारी हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। जगन्नाथ रोड, जगन्नाथ रोड रिविया जुरान पॉमी, रिविया जुरान पॉमी 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेमलाल रामधनी, श्री प्रेमलाल रामधनी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे सुदेश रामधनी के मकान रिविया जोपो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंचियो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। स्कूल लेन सेंचुबिया में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सगुना येसु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें हीरा के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनके अर्थी आज सुपहर तीन बजे उन्हीं के मकान सेंचुबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसिलिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड मोसेलमेंट सेंट एंड्रे में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की आदमा अपादू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गेंगुडू, लोग उन्हें कमसेल के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 उन्हीं के मकान मोसलमो सेंट एंड्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तियामिनी स्त्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। शोक में डूबे तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हूँ तो कुछ ना हूँ। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हूँ तो कुछ ना हूँ। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे अज़ीज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं और आपकी समागतों की नज़र हैं। उर्दू प्रोग्राम बज़्म-ए-अक़ीदत, ये बंदा नाचीज़ निसार अख्तर आप तमाम लोगों का दिल बेकरां से इस्तकबाल करता है। सामईन, फ़िलहाल दुनिया के गोशे गोशे में जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासिबत से महफिल मीलाद सज रही है। फ़ज़ाएँ दुरूद व सलाम की खुशबू से मुअत्तर हो रही हैं, गलियाँ चरागों से जगमगा रही हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज में अपने महबूब आका सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत की खुशी का इजहार कर रहे हैं। मिलाद शरीफ दरअसल दिल के आईने में उस ज़ात-ए-अक़दस की मोहब्बत को फिर से जिंदा करने का नाम है जिनके सदक़े ईमान मिला, हिदायत मिली और ज़िंदगी जीने का सलीका मिला। तो सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमारा एक ख़ास प्रोग्राम था ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मौके पर, और इसी वजह से हम आपके पैगामात, आपकी दुआएं नहीं ले पाए। तो आज हम यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप अपने पैगामात, अपने दुआएं, फरमाइशें हम तक पहुँचा सकते हैं। नंबर वही है 5251705. आप चाहे तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जैसा आपको आसानी, जैसा आपको आसान लगे। तो आइए सामईन, इसी रहमत के साए में, इसी अकीदत की खुशबू में महफिल का बाकायदा आगाज़ कुरान पाक

सामईन कराम, अभी आपने सूरा मुल्क की तिलावत समात फरमाई। तमाम नबियों के सरवर, दो आलम के ताजदार जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का दिन साहिब शऊर अहले इस्लाम और इश्क वालों के लिए यकीनन सबसे बड़ी खुशी और मुसर्रत का दिन होता है। इसी वजह से सहाबा कराम अल्लाह तबारक व ताला के इस ख़ास

फ़ज़्ल एहसान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसट के ज़रिए मिलने वाली हिदायत का शुक्र अदा करने के लिए मिल बैठ कर महाफिल सजाया करते हैं। बूढ़ा हो या जवान, गोया हर मुसलमान दिल की ज़बान से बोल उठता है, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।

ईमान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। मौज़ सामईन, सदियां पहले कायनात में एक फूल खिला था जिसकी पाकीज़ा खुशबू ज़माने में फैली। उस गुल की खुशबू सदियां गुजर जाने के बावजूद कम नहीं बल्कि तेज़ से तेज़तर होती चली आ

रही हैं और ता कयामत होती रहेगी। वो गुले बेमिसाल और कोई नहीं बल्कि आकाए दो जहां दिल बरे जाना जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सामीन, आइए आज का पहला पैगाम लेते हैं। आज दादी आफेज़ बाबा साहेब की सालगिरह है। सबसे पहले तो उन्हें सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। उनके बच्चों की तरफ से नेक ख्वाहिशात और ढेर सारी दुआएं। उन्होंने ख़ास गुजारिश की है कि हम उनके लिए एक खूबसूरत कलाम चलाएं। इसके बाद का जो कलाम है वो उनके नाम। और सामईन, आपको फिर से बता दें कि आप लोग भी इसी तरह अपने पैगामात, अपनी दुआएं, फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं। 5251700552517005 पर हम आपके पैगामात का इंतज़ार करेंगे।

सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, ये शेर कई मरतबा हमने नातखा हजरात से सुना। इश्क़ रसूल और याद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबकर हमने बार बार ये शेर पढ़ा। दरअसल ये शेर कहने वाला अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये इल्तिजा कर रहा है कि सरकार मदीना राहत कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले आएँ। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इंसान को अपनी मेज़बानी का शर्फ अता फरमाएंगे, वो खुशनसीब अपनी बुलंदी पर नाज करता होगा। सामईन, अब तेगूश से जनाब मोहसिन के लिए ये अगला कलाम, वो मेरा नबी है।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारे आका और मौला जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बेशुमार हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी अता से आपको ऐसा ज़बरदस्त अख्तियार और कुव्वत अता फरमाई जिसका अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला की अता से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चाँद के दो टुकड़े किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो डूबा सूरज पलट आया। अल्लाह पाक की अता से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आँखों से चश्मे पानी के चश्मे बहा दिए थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जानवर इंसानी बोली बोलते हैं। सामईन, आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। रिविया जुगांपा से शाहान की तरफ से एक पैगाम, वह तमाम इस्लामी भाइयों बहनों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बात पेश करती हैं और साथ ही साथ उनकी प्यारी नानी के लिए दुआएं। अल्लाह तबारक व ताला उनकी नानी मरियम बी को एक अच्छी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। आखिर में उन्होंने एक ख़ास और दिल को छू लेने वाले कलाम की फरमाइश की है। तो सामईन, ये अगला कलाम तमाम बेटियों के नाम

मोहतरम सामईन, इंसान किसी के इल्म से मुतासिर होकर उसकी मोहब्बत का गर्वीदा हो जाता है, उसकी इल्मियत का चर्चा करते नहीं थकता, हर महफिल में उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। हमारे प्यारे आका ख़ातमुन्नबीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में ये वस्फ कामिल तौर पर मौजूद है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उलूम से मालामाल फरमाया। जो हो चुका है और जो होने वाला है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मे गैब के ज़रिए जानते हैं। इसलिए शायर क्या खूब कहता है, और कोई गैब क्या तुम से निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुम से निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दुरूद। सामईन, आइए पैगामात की ओर बढ़ते हैं। कातबोन से मोहतरमा यास्मीन तमाम एमबीसी टीम और तमाम भाइयों बहनों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करती हैं। न्यू ग्रोव से मोहतरमा फातमा ने तमाम एदू और गुलाम हुसैन फैमिलीज़ के लिए एक कलाम की गुजारिश की है। कौशापलों से मोहतरमा नुगेज़ा ने एक कलाम की फरमाइश की है, तो ये अगला कलाम उनके नाम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मॉरिशस वाले पढ़ते सरिया के काले 11 மணி ஆகிறது।

0: SMS ang lumagay 571-85677 Hollywood Doctor
1: Number 10.
0: Album Sync Indie.

0: Yeah.
1: Number five.
2: படத்தின் பெயர் மனிதன் தெய்வ மகளம்.

0: Number one. Number one.
1: Album Talli Pogra.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से NHDC सुयाक और मुसलमान घिघी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 1 सितंबर 2024 को सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली के सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन असुविधाओं के लिए CB अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी है। बिना पूर्वा सूचने दिए बिजली की सप्लाई फिर शुरू हो जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। ये है रेडियो मॉरिशस
3: 819 किलोहर्ट्ज़। ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: मुत्याल स्वरालू।

听众朋友，一首优美动听的歌曲之后呢，接下来让我们一起来欣赏歌曲《英雄》。好，下面有请大家一起来欣赏。

产投资目的地。新加坡在亚太最受欢迎居住领域房地产投资目的地中排行第三，主要由本地投资者偏好带动。

0: 我拍个黄瓜。
1: 您要是弄个拉皮儿哈，拍个黄瓜，我就只能烫壶酒了啊。说着说着，下酒菜都出来了。其实我听得出来，大叔大妈呀是想永远年轻。那就让我们一起祝大叔大妈永远年轻，生活幸福。在我们这次节目结束的时候，按照惯例，我们要请每位嘉宾每个人用一句话再总结一下自己的内心感受。大妈先来。
2: 就剩一句了。
1: 一句话。
2: 发自肺腑的。
1: 对，发自肺腑的。
2: 我十分想见赵忠祥。
0: 拉倒吧。这么丢人
1: 呢，大叔您说一句话。
0: 没正事的晚上你说一句话，你说这干啥玩意儿，丢不丢人？
1: 您说一句话。
0: 你说点关键的，你说一下。我也剩一句了。
1: 一句话，对。
0: 来前的火车票谁给报了？说这个。
1: 感谢现场和电视机前的观众朋友，咱们下周实话实说，再见。
3: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
4: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: हम और आप, हम और आप।

0: हम और आप, हम और आप।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब और गुड आफ्टरनून श्रोतागण। ये एमबीसी रेडियो मॉरिशस का सीधा प्रसारण है और आप सभी का स्वागत करती है पूजा हम और आप कार्यक्रम में, जहां पर हर रविवार को कोई ना कोई विषय हम अवश्य लेकर आते हैं। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको डायल करना है 4028085 पर, 402-80-85 पर। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक ऐसे गंभीर विषय पर जो सभी बात नहीं करते, पर ये सभी के घरों में ये समस्या अवश्य है।

रिश्तों का मुखौटा, अपने कौन पराए कौन। रिश्तों का मुखौटा, अपने कौन पराए कौन। कहते हैं कि संसार में सबसे मजबूत रिश्ता खून का रिश्ता होता है, पर क्या हर खून का रिश्ता दिल का रिश्ता भी होता है? क्या केवल इसीलिए कोई हमारा अपना हो?

हो जाता है क्योंकि वह हमारा रिश्तेदार है। और क्या हर अजनबी वास्तव में पराया होता है? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें रिश्तों की संख्या नहीं, रिश्तों की सच्चाई दिखाई देने लगती है, यानी क्वांटिटी नहीं।

आज हम और आप में बात कुछ ऐसी ही है, रिश्तों के मुखौटे की और सच्चे साथ की। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सामने बहुत अपनापन दिखाते हैं। पूछेंगे, कैसी हो, सब ठीक है, कोई परेशानी हो तो बताना। लेकिन कभी कभी ये शब्द केवल शब्द बनकर रह जाते हैं, क्योंकि जब वास्तव में मुश्किल आती है, जब आर्थिक परेशानी होती है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जब नौकरी में संकट आता है, जब इंसान मानसिक रूप से टूट रहा होता है और उसे किसी एक फोन, एक सहारे या केवल दो सच्चे शब्दों का आवश्यकता होती है, तब पता चलता है कि कौन सच में साथ हैं और कौन केवल दर्शक हैं। कुछ लोग आपके जीवन को ऐसे देखते हैं जैसे कोई कैमरा निगरानी कर रहा हो। आप कहां गए, क्या खरीदा है, किससे मिले, कितना कमाते हैं, क्या पहनते हैं, कितनी सफलता मिली है, सब जानना है। लेकिन जब आपको सहारे की आवश्यकता हो, तब वही लोग अचानक बहुत व्यस्त हो जाते हैं। हर वह व्यक्ति जो आपकी परेशानी सुनता है, आपका शुभचिंतक नहीं होता। कभी कभी लोग आपकी कहानी इसलिए सुनते हैं ताकि उन्हें आपकी कमजोरी पता चले। इसलिए जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि हर बात हर व्यक्ति से साझा नहीं किया जा सकता। अपनापन केवल मीठे शब्दों से नहीं पहचाना जाता। अपनापन तब पहचाना जाता है जब आपके जीवन में अंधेरा हो और कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के आपके पास दीपक लेकर खड़ा हो। आज जहां तहां हम देखते हैं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास बड़ा पद है, किसी के पास प्रसिद्धि है। आज कोई अपने धन, अपने संबंधों और अपनी स्थिति पर गर्व कर रहा है, लेकिन समय किसी का स्थायी नहीं होता। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। आज जिसके पास बहुत कुछ है, कल परिस्थितियां उससे बहुत कुछ छीन सकती हैं। और आज जो संघर्ष कर रहा है, कल वही अपने संघर्षों में संघर्ष से अपनी दुनिया बना सकता है।

0: या उससे बहुत कुछ छीन सकती हैं। और आज जो संघर्ष कर रहा है, कल वही अपने संघर्षों में संघर्ष से अपनी दुनिया बना सकता है। इसी 4028085 पर आपका इंतजार और आपके विचारों के आदान प्रदान भी आप कर सकते हो। चलिए लाइन पर एक श्रोता है, उनसे हम बात करते हैं। हेलो, सभी को मैं 3-3 मिनट दूंगी, आप सभी 3-3 मिनट को रिस्पेक्ट कीजिए और 3-3 मिनट में ही बात की। नमस्कार हरीश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत खुशी होता है हम आपसे बात करने के लिए।
0: हाँ जी,
1: और स्पेशली जब आपके इस प्रोग्राम में अच्छे ऐसे ऐसे विषय लाते हैं
0: जी।
1: तो आपने शुरुआत में कहा गंभीर विषय है, इनफैक्ट रियली ये वेरी सीरियस सब्जेक्ट है, थीम है, कौन पराया कौन अपना,
0: कौन अपना जी।
1: ये मेरे विचार से ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि हम हमारे भाई है, हमारे बहन है, माता जी है, निव्यू है, नीस है, खून के रिश्ते हैं, सेम नेम फैमिली, कि ये जरूरी नहीं है कि वही हमारे सबसे शुभ चिंतक हो या वही हमारे असली रिश्ता हो। ये खून का रिश्ता नेसेसरीली नॉट लाइक दिस। हो सकता है कि भाई बहन में इतना प्यार हो, हमने अभी अभी रक्षाबंधन मनाया, ये ठीक है, लेकिन रियलिटी में जब देखते हैं कितने भाई बहन अपने दुश्मनी है, क्योंकि रिश्तेदार में झगड़ा होता है, इसके जदा मिला उसका छोरा मिला है? तो ये एक से एक एग्जांपल है। तो मेरे विचार से पूजा जी, ये एक इंग्लिश में एक कहावत है, मैं बांटता हूँ, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। वो रियली शुभ चिंतक है वो व्यक्ति जो हमारे डिफिकल्टी में, हमारे प्रॉब्लम्स में भाग लेते हैं, हमको समझते हैं, हमारे वीकनेस जो है उस पर गौर नहीं करते, वो पास लोला ले पोज लोला जमेने ने रे एन देखो इस पादने वीज हेलो उमा, दिस इज अ पर्सन। हर ये व्यक्ति हमारे असली जैसे बोलते हैं फ्रेंड है। अब ये क्वालिटी फ्रेंड है, एक क्वांटिटी नहीं। हमारे 10 दोस्त हो सकते हैं, लेकिन एक ही दोस्त हमको समझते हैं और मैं उसको समझता हूँ, उसके साथ हम जो भी सीक्रेट है हम बांट सकते हैं। कभी अपने भाई अपने माता से या पिताजी से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो दोस्त से मैं कह सकता हूँ जो भी है हमारे दिल में, जो भी है प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। और वो असली दोस्त वो होता है जब इस वक्त में उस वक्त में आपको मदद करता है, अगर मदद कर सकते हो तो दिल से। ये वेरी इम्पोर्टेंट, ये दिल का रिश्ता, मुंह का रिश्ता नहीं, बात पागल पागल पागल नो, दिल से अगर सच्चाई होना चाहिए। दिल सच्चा है, कभी कभी चेहरा झूठा होता है, तो चेहरे पर मत जाइए, बड़े बड़े बोल पर मत जाइए, करनी जो है कर्म, क्या कर रहा है, एक्शन, रियल एक्शन, ये हमको जजमेंट देता है। कैसे हम जज कर सकते हैं किसके साथ हम असली दोस्त है, वो कौन जो नकली दोस्त है। कोई असली, आपने कहा एस्पियोनाज करते हैं, क्या खरीदा है, क्या पहनता है, तो उसका कम क्या माखलुगाज था, मोहम्मद माखलुगाज भी वे इजाफे से देखा, ये होता है जिंदगी में है, वाजिनाज कमागाद जो जो पास टाइम कर दिया उसको, एक पास टाइम है वे इजाफे जिमुन। हम इस तरह के इंसान से बहुत दूर रहता हूँ पूजा जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, आपके 10 मिनट यहीं पर समाप्त हुआ और आपके इस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं। हेलो
2: हेलो पूजा जी,
0: नमस्ते। नमस्कार राधा जी।
2: जी मैं आपने जो विषय चुना है वो अभी इस जमाने के लिए, ये मतलब कि अभी जो चल रहा है ये युग ना, इसमें ये बहुत ही साफ साफ दिखाई देता है। रिश्तों की पहचान हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि समय ही हमें पहचान कराता है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया। कहते हैं ना हाथी के

0: खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। आज का मनुष्य ऐसा ही हो गया है कि सब हर किसी के चेहरे पर मुखौटा है। आप ही पहचान नहीं पाएंगे कि ये मेरा हितैषी है या मेरा दुश्मन है। वो आपसे पूछेंगे बार बार, आप कैसे हैं, कोई समस्या है, लेकिन करने को तो वो कुछ करेंगे नहीं।
1: जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको
0: हाँ
1: बेच पाए।
0: हाँ बेच दें और क्या करें, आपकी चर्चा मतलब मुझे विषय मिल जाता है कुछ बात करने के लिए
1: एंटरटेन
0: बाहर में।
1: करने के लिए, मनोरंजन के
0: हाँ
1: लिए। जी
0: मनोरंजन के लिए वो, लेकिन कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। हाँ कोई अजनबी, कोई जो पराया है, बिल्कुल हो सकता है आपका उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो व्यक्ति शायद आपके लिए कुछ ऐसा कर दे कि आप जिंदगी भर आप उसके एहसान मंद रहेंगे, लेकिन जो रिश्तेदार हैं नहीं, उन लोगों पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। इससे तो बेहतर है कि हम अपना जीवन अलग अलग, जहाँ मिलते हैं प्रणाम नमस्कार ये सब हो जाए औपचारिकता के नाते, उनसे कोसों दूर रहें ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वो केवल आपके दुखों को कुदेड़ेंगे। वो आपको मतलब कैसे कहते हैं ना, किसी के दुख में दुखी होना आसान होता है पूजा जी,
1: जी
0: लेकिन किसी के सुख में सुखी होना ये बहुत मुश्किल बात होती है।
1: क्या बात है जी।
0: समाज की बात, समाज के ये कड़वा सच है जो अभी अभी साफ साफ दिखाई देता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। आपको शुभ संध्या और शुभ रात्रि।
1: शुभ संध्या और शुभ रात्रि आपको भी राधा जी। आइए आज हम रिश्तों का मुखौटा, कौन अपना कौन पराया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और शायद जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जिसने दर्द देखा है वही दर्द की गहराई समझ सकता है। जिसने भूख देखी हो वह रोटी की कीमत समझता है। जिसने अकेलेपन देखा हो वह साथ की कीमत समझता है। जिसने असफलता देखी हो वह सफलता का अर्थ समझता है। और जिसने संघर्ष किया हो वही जानता है कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना कितना कठिन होता है। जिस व्यक्ति के ने जीवन में हर सुविधा बिना संघर्ष के पाई हो वह शायद किसी संघर्षदा व्यक्ति की पीड़ा को पूरी तरह न समझ पाए। इसलिए किसी के संघर्ष का मजाक मत बनाइए, किसी की कठिन परिस्थिति को उसकी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि जिस युद्ध को आपने देखा नहीं उसके घावों का निर्णय भी मत कीजिए, क्योंकि हर किसी अपने जीवन में एक लड़ाई लड़ रहा है। हर कोई जो है अपने जीवन में एक लड़ाई लड़ रहा है और उसके जीवन की वो सच्चाई वो खुद ही जानता है, वो पीड़ा भी वही जानता है। इसीलिए कहते हैं जब हम किसी के द्वार जाते हैं मदद मांगने के लिए, जो सहायता करना चाहता है वो तो सहायता करेंगे और जो नहीं करना चाहता है वो आपको जिम्मेदार ठहराएंगे कि जो हुआ है तुम्हारे साथ वो तुम्हारे साथ होना ही चाहिए था, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। इसीलिए कहते हैं रिश्तों का मुखौटा, कौन अपना कौन पराया, ये दुखों के समय में ही पता चलता है। आइए और भी लोग हैं, सभी को मैं 3-3 मिनट दे रही हूँ और सभी अपना जो विचार है व्यक्त कर सकते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते
1: नमस्ते जी, आपका स्वागत है
2: जी। बड़ा वो बहुत बड़ा विषय है।
1: हाँ
2: तो पिक भी समझे हो गल भाभी, बदलते रिश्ते,
1: रिश्तों का मुखौटा।
2: बदलते रिश्ते तो एगो उधर ला एगो यथिक मजे एगो ब्लड क्यों कर एगो फामी मजे एगो जिसों के तो सब ने अपन ने होला ना। हाँ तीन ढेर जाफे को मजे है सब रिश्ते के तनी बदल देवेला एलवाइये करेला। से पैसा हा सबसे बड़ा रुपया और काम धाम जो बड़का काम करेला तो पर्सनालिटी एगो आदमी के पर्सनालिटी और अच्छी कुमार है सब जेकर जेकर माँ बाप लोग के पैसा बा बाटी बा गहना घीटो बा तो जब शादी कर ले वाला छोकरी छोकरा तो हिये पर ही रिश्ता धर ल अब से पागे होता। समझ ल
1: हाँ।
2: माँ बाप के करल धरल बा तो मंगियन स तो ऐसे झगड़ा करियन सा

0: तोरा एलवाने करियन सब
1: पैसा खातिर दुबोबे हो जाइब
0: तम हां ये सब हो ये सब झूठा नहीं बजन बते सच्चा हो
1: हां
0: लेमोन में बीटा था
1: हां
0: समझ लो
1: हां
0: अभी अभी कोचिते नहीं देखेला अभी कालीते देखेला
1: हां ये सच्चा
0: समझ लो
1: हां
0: और वो आदमी अभी कैसे तोहर वाजो सके हृदय हटा के तोरा देखी तोहरा कौन चाल चलत हो तू कहां जात हो कौन ची करत हो का खाते हो पियत हो है सब बाह भी आदमी काम करता मैं कहता हूँ रिजो हटा के देखता हूँ पारे बहुत खाली टेलीविजन देखता रात दिन और हाउ अदमियत उठावाई जुया करता समझ लो तो ये सब बात भी बहुत एलवाइये हो गल बाबू देखो और आदमी ये सांझे हो गल बा ले मोन पारे बा में आदमी सांझे हो गल बा मूवी हो गल बा प्लीज की 75% भी मूवी हो गल बा ये सच्चा नहीं है हम एवंटे नहीं करते ये सग्रो है जहाँ खाए पिए के बाद अदमिया प्रेजेंट रहता जहाँ माले है उतर नहीं आवता वो अपन अपने को प्लान निकाला तो बता हाई दिनों के हुआ गरली निया गरली हुआ गरली काम करते हैं ना उन्हें तो एक छोटा लेता हूँ निकाल के नहीं सब माले हुआ मैं आई तो अभी आदमी है वो सब नहीं करेला समझ लो
1: हाँ
0: तो ये सब चाहना रिवॉर करके सुशीते मेरा बच्चे सब चाहना देखे के नहीं मन से समझ लो तो है एगो जब एगो रिश्ता जब निमन रही एगो परिवार में नेपथ कौन कौन के परिवार में तो है ये बहुत बड़का बलवान है तो है ये हमारे एगो छोटा संदेश है सब कोई के नमस्कार लेपे आदमी आपके तोरो सब कोई के और है पो गांववा जो सच्चे के तोरा साला पूजावे करे के
1: नहीं हमारे हमारे बढ़ाई नहीं करा काहे की तोहरा बोला था हम एक दिन जाप है जासे हमारे हमारे जन प्लास है हमारे जन जगह है कोई और ले ले मगर हम बहुत कुछ सीखिला
0: जब हवा
1: बहुत कुछ सीखिला तोहर संगे
0: हाँ जब हवा तक मजा हुए बोला था तो हाँ ये बोला था यार वो हमने प्रिय का इलाका कुमार जा भारत जिमोस के जो प्रोग्राम कर बावरे को जिमन सौंते डाल दिया
1: अच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद जन बोले हवा और तोहरा बोला जा शुभ संध्या
0: आले हाँ तोरो सब शुभ संध्या
1: अच्छा अच्छा जी धन्यवाद और भी श्रोता हैं लाइन पर चलिए उनको भी हम सुनते हैं संगीता जी हैं गुजिल से हेलो हेलो हेलो शायद लाइन में कुछ खराबी है कोई बात नहीं हम फिर से बताते हैं कि आज हम और आप कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं रिश्तों का मुखौटा कौन अपना कौन पराया

जी हाँ, क्षमा कीजिए श्रोताओं, कभी किसी ने सच ही कहा है, कभी कभी कोई दूर का रिश्तेदार होता है लेकिन दिल से बहुत दूर, और कभी कोई अजनबी होता है जिससे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं, फिर भी वह कठिन समय में इतना साथ दे देता है।

0: जीवन भर याद रह जाता है। इसीलिए कभी कभी पराए ही अपनों से ज्यादा साथ देते हैं। रिश्तों का मुखौटा कौन अपना कौन पराया। लाइन पर एक और श्रोता है, चलिए उनको सुनते हैं। हेलो।
1: हेलो पूजा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते शोभा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ शोभा जी, आपका क्या कहना है इस विषय पर?
1: हम तो भोजपुरी में बोला।
0: अच्छा, बोला बोला।
1: जितना तू है प्रोग्राम रख ले ना, बहुत सुंदर प्रोग्राम बा। सब भाई बहन लोग सब है बतवा जो हम बोले के सब बोल दिलन सा। बहुत अच्छा विचार दिलन जा। हम तोर से बोला था कैसे बोला था अपन तो दूर हो जाला ना, दूर होला आदमी अपन हो जाला। का बोली ला अपन दूर जब अपन परिवार से बोलब तो उ तो सगरो फैला देवेला। बहन सुनत हो ना? आयो बहन पूजा।
0: हाँ जी, सुनत है सुनत है, बोला।
1: हाँ, हाँ तोहर दुख लेके सगरो बोल देवेलन सा। कैसे तोरे यहाँ पूजा तो हो ना, तो घर में कोनो प्रॉब्लम था तो अपन परिवार से बोलबा ना।
0: हाँ हाँ, ये तो सच है।
1: परिवार वाह से खवानी ना रखेला?
0: नहीं रखी। हाँ, कबो नहीं रखी।
1: हाँ बोला ना, सच्चे के कैसे हो भाई? बोला है सच्चे के है बीता था वो नहीं रखी।
0: नहीं,
1: मैं एगो दोस्त से अपन एगो सच्चा दोस्त से अपन दुख रूप बोलबा पूरा दे बतवा।
0: हाँ,
1: अब भाई परिवार वाह बतवा लेके तोहर यहाँ। अब बोली तोर माँ, तोर माँ बाप कितना धन दौलत रहल तो का कर ली, बॉटले की ले ले तू ही ऐसे करे जीबिया पर।
0: हाँ,
1: में परिवार टूटेला ना, जब टूटेला तो झगड़ा झगड़ा
0: झगड़ा होवेला। हाँ,
1: झगड़ा जरत। अब तू लिमन से रब तो बोलिया सा पूजा का लिमन से बा, सुबह का लिमन से इतना बा तो ई लाहो तोहर रिश्ते में जो निकल बा जोन बार कैसे बोलन सा डिस्टेम कोई नहीं सकला मिटावे ना। इधर ऊपर से लिखा के आवेला ना बहना, तो अभी खातिन जो तोहर अपन हो गल बा अब दुश्मन हो जालन सा। हम बोला था सच्चे की जेकर पर बीतेला ते ही जानेला,
0: यही जानेला। और जिस पर ई दर्दवा बीता था उही काहे जानेला, पस की वो दर्दवा से गुजरा था है ना। अब जो कोई दर्द से गुजरल नहीं बा, उकर गुजर नहीं होल बाते, उ नहीं जानी, उ नहीं जानी कि दर्दवा कौन ची है। उ त खाली तोरा जीजे करी है ये बोली लासा।
1: हाँ, तू हटा के देखे के कहाँ जात हो, कहाँ किनत हो, कहाँ हम किनी का तू किन ल, अब कहाँ कौन ची बचात हो कहूँ गई ला। तो इस सब मोबाइल इस पे वाचा ला निकाले के हबी के बहुत बहुत दुनिया दूसर माय हो गल बा।
0: हाँ,
1: जानेला जब सच्चा जीवन ना कोई तोहरा एगो उंगरी नहीं सकी उठावे, नहीं सकी तोहरा चैलेंज करी। जानेला जब सच्चा आर कैसे बोलन सा, जब एगो कंटा गर जाला हाथ में हाली से गर जाला।
0: हाँ,
1: से मैं जब निकाले के ओके जाला फुक फुक के निकाल के ना, तो हवी इसनी परिवार हो गल बा बहन पूजा। हमरा कही बोले के बा पूजा बहन
0: जैसे बोली लासा कि हर पद का एक समय होता है।
1: हाँ,
0: हाँ ना, तो हर हाँ, कोई मतलब पदवा हमेशा नहीं रही ना,
1: नहीं रही। हाँ,
0: जब लेख बा तब लेख हम ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम लेकर आवत है ना। तो अब मान ला जैसे हम बराई के नहीं, खाली सीखे के बहुत कुछ मिलेला एक कार्यक्रम से।
1: हाँ,
0: एक दूसर दूसर जन विषय भिन्न भिन्न विषय लेकर आईला, तो ढेर हाँ, कोई अपन अपन विचार देवेला है ना।
1: हाँ, ढेर चिंता सीखे के चला सीखिए के।
0: हाँ,
1: हम के लाभी में चला सीखे के।
0: हाँ,
1: आलीमन सीधा सीमा में चले के, टेढ़ा सीमा में नहीं चले के।
0: हाँ,
1: जहाँ कंटा रही तने चला जाए के,
0: कंटावा
1: तोहर पर तोहरे पर चलाए तो निकाले के मुश्किल हो जाला। जब जब रात के सुत बना तो लीन नहीं आई तो हवी आँख में से आंसू बहेला, तो दिल में हवी बंसा मारा लिखे हो जाला। जानत हुआ ना, तो है सबसे चला दूर रहे के। चहला लीमन से लीमन बोली बोली के, मीठा बोली बोली के, जनत नहीं करे के, कोई बात नहीं चलाए के, पूजा पाठ में रह सबसे बहुत अच्छा अथी मिली, सीमा मिली। भाई हमारा कहने के बा
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी ई विचार खातिर। और भी श्रोता है लाइन पर, आइए उनको भी हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों का

0: जो है मुख हटा, कौन अपना कौन पराया, इसी पर हम बात कर रहे हैं। तो और एक श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो
1: हेलो पूजा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ सब ठीक बाटे, तू कैसे हुआ?
0: हम अच्छा हैं। आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों का मुखौटा,
1: हाँ,
0: यानी
1: हाँ,
0: कौन
1: हाँ.
0: अपना कौन पराया, है ना?
1: हाँ तो हमी तो तान के शहर छमेन के नवा नवा विषय लेके आवेल हमने खातिर।
0: हाँ
1: बड़ा बड़ा विद्वान लोग में भाई बहन लोग पाले हुए, जितना जना अभी बोले सबके सबके बोते धन्यवाद, अच्छा अच्छा विचार दिलन सर। आज जितना जना सुना तो प्रणाम बोत है, और हमार अपन विचार दे के गाड़ी पहला हम बोते हैं। जितना जलजला हल बटे नेपाल में, कितना जो प्रॉब्लम हो बाटे सब हम अपन परिवार बस से पाचे हो दें, बस के देखा तो बहुत दुख हो बटे दिल्ली इंसान वहाँ पर, इंसान में सब वहाँ पर गुजर गल बटे।
0: हाँ।
1: कितना तबाही मचल बा वहाँ पर,
0: है
1: पहला हमसे बातचे होते हैं सब हम अपन परिवार बस से जो नेपाल में हुआ।
0: हाँ
1: अब हम बोलते हैं रिश्ते के, रिश्ता तो दिल्ली हम कैसे बोलते भगवान लगे से बन के आल बा। मैं हई में बहुत अति बाटे, बहुत अति है जान जेब अपन परिवार में एडजस्टी है हमने के रिश्तों में प्रॉब्लम हो रटे। और कैसे बोलते बोली से जालू जी पहला हाँ दे के नहीं है हमने के घर हुए में, हमने के परिवार में जालू जी होला।
0: और विजय जी एक बात बातें कि रिश्ते केवल जन्म से नहीं बनते, रिश्ते व्यवहार से बनते हैं। मान ले एगो कोई के द्वारी गल हुआ तो कोई सहायता मांगे तो ऊ तोरा ऐसे सुना दिलक, नहीं नहीं बा हमार लगे कुछ हो है, तू खाली प्रॉब्लम में रह ले है। तो ऐसन ऐसन जो है हमनी के परिवार में बातें तोरा जीजे कर देवलन सा, तो कोई कोई के पीड़ा नहीं समझेला। है ये बोलीला सर रिश्तों के मुखौटा, जब तोहर लगे पैसा बा, खाई के बा, सब कुछ बा, तो वो लोग अयन सा अयन सा।
1: हाँ और हम लोग कैसे पहला जालू जी हम के परिवार में हटे।
0: हाँ काहे बढ़त हुआ, काहे बढ़त
1: के छोड़ दे, तू आगे बढ़त हुआ जहाँ तू रहत हो वहाँ पे तो परिवार बा, तू अपन परिवार है ये परिवार, रिश्ता के घोटाला है ये परिवार हटे
0: है ये। हाँ हाँ गोलमाल हुआ
1: जहाँ तेसुन आगे बढ़ रहे बोलो तो किन्ने तेसुन घर वाले ताक डालत हुआ जब नहीं अच्छा हुआ,
0: नहीं अच्छा हुआ।
1: और परिवार में हमने में हाँ देव के छोड़ दोस्त होके छोड़ दा। और सच्चा परिवार सच्चा दोस्त हुए हटे जब प्रॉब्लम में हुआ, जब वो कमारी तापे कर लो करता वो तोरा लापेल दिलक बोता हाँ कौन चीज होगा कौन प्रॉब्लम हटे
0: तोरा मदद करी
1: मदद कर। अरे जिंदगी में कौन इंसान पैदा हो बटे धरती पर, कौन इंसान लगे प्रॉब्लम नहीं बा, जितना जना यहाँ जन्म नहीं बने के धरती पर सबके सब जिसे प्रॉब्लम बटे। कोई के मलाद के प्रॉब्लम, कोई के मलाद के प्रॉब्लम बटे, कोई के प्रॉब्लम फैमिलियल बटे। हाँ ये तो जिंदगी है, जिंदगी है,
0: जिंदगी तो है ये है। और इंसानियत है ये है विजय जी कि कोई के समझत हो।
1: हाँ कोई कोई यहाँ
0: चाहे ला समझे के। हाँ
1: कोई पॉफे नहीं आता यहाँ पे आके बोलता हमारे मलाद नहीं, हमारे प्रॉब्लम नहीं बा, फिनांस कुछ नहीं, हम यहाँ पे पॉफे नहीं सब देखे हम देखी सब बतावे हमने के फिल्म आज सच्चे की जिस बड़का बड़का राजा बड़का बड़का गुवर्नमेंट जो बार उ प्रॉब्लम हटे तो हमने कौन चाहिए सर। तो हमने के चाहला चाहला जिए जाने के दुनिया में कैसे दो दिन के आने से जिए था प्रॉब्लम था सबके है। सलमान जब हवे सच्चा इंसान जो एदी करे लटे वो प्रॉब्लम में जब टापे करे देखो तो सच के नहीं प्रोचिक नहीं करिया मोपे ना जो जिस मानो कोनो फासों से नहीं बोला कि सौ पूछा एगो सैक पूछा जिस पूछा ए देख लेते तो कोपा हो गल सखियेपन जो बेजवान में सखी निकल जाए वो का फिनांस से का अपन अपन वोलोते से का बोली से का कुछो से है एगो मदद है। मैं आर कोई जब सोने कर बस जेबे देखे तो मुझे साकू तो एकदम प्रॉब्लम हमेशा तो ही प्रॉब्लम।
0: और ऐसे ऐसे जैसे अभी जो है बाईदिला जी बोलन जा कि कोई जो है धन खातिर रले रंसा है ना, और जब लड़ाई होला ये सब होवेला तब देखबा तो वही इंसान धन के खातिर मरेला है ना, मरेला
1: मटिया जब एगो बात के बोते बोल देवते मैं तो अमित नहीं होता बोते मतलब दले को बोला पाता जो था माटी के भाई बहन सब बटे पा होता थे सब कुछ सब के पा होता एगो आधा पेस खाती सके लाटे प्रॉब्लम हो जाए आधा पेस खाती जाफे लाकू लाबरे सब सब चला यहाँ परी।
0: हाँ
1: कहे हो काम करा भैया
0: चोर सब बन जाए बा, चोर सब बन जाए बा, चोर सब बन जाए तो नाम सा दे। हाँ
1: स्वामी तो गल बहुत धन्यवाद दर्शन प्रोग्राम में क्या बोला जीवन में बहुत छिके के मेला जितना जना सुनता था जितना जना भी बतियाई के बच्चे जना सुना था सबको प्रणाम और शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। नमस्ते श्यामा रघुनंदन जी, आपका स्वागत है हम और आप कार्यक्रम में।
2: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते।

0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: अप एंड डाउन टू यू।
0: हाँ, और आज हम बात करें हैं रिश्तों का मुखौटा, कौन अपना कौन पराया, इस पर आपका क्या विचार है?
1: जी, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ आप केवल सुनना। और
0: अच्छा,
1: तो रिश्ता बिना बांधे बन जाता है, बिना तोड़े टूट जाता है, क्योंकि रिश्ते का जो धागा है ना, कांच से भी ज्यादा नाजुक है, फूल से भी ज्यादा कोमल है। जैसे कांच को ठेस लगने से टूट जाता है और फूल को छूने से बिखर जाता है, बस रिश्ता यूं ही ऐसे है। एक दर्जी या दर्जिन को अपनी सुई धागे से रिश्ता है, सुना आपने?
0: हाँ हाँ।
1: एक गायक को अपने वाद्य से रिश्ता है, एक लेखक को अपनी कलम और कागज से रिश्ता है, और एक कवि को अपने काव्य से रिश्ता है, एक देशभक्त को अपने देश से, ये है पवित्र रिश्ता।
0: जी,
1: क्योंकि ये सब अपने दम तक, मरते दम तक इन सब चीजों से अपना रिश्ता नहीं तोड़ता है। भाई बहन माँ बाप सगे होने पर कभी कभी रिश्तों में दरार आ जाता है। पंछी जब शाम को घर से थक कर लौटता है घर अपने नीड़ में, जब वापस आता है तो पेड़ से जो उसका रिश्ता है रहता है, वह कभी उनसे अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि पेड़ भी अब पंछी के लौटने की राह देखता है ना। तो हम मानव कैसे कहते हैं, बुद्धिजीवी है होने के कारण हम अपने रिश्ते नहीं निभाना जानते हैं
0: जी,
1: और अगर निभाना भी चाहते हैं तो किसी न किसी प्रकार से अड़चन आ जाती है
0: जी,
1: क्योंकि हम में अहम है ना, घमंड है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई नहीं है।
0: हाँ,
1: हम झुकना नहीं चाहते,
0: झुकना नहीं चाहते, और बढ़ भी गए हैं जीवन में तो उसका घमंड वो बोलता है, घमंड ही बोलता है, और ये तो
1: बोलता है, वो खुद नहीं बोलता है, उसका पैसा बोलता है,
0: पैसा बोलता है,
1: उसकी उसका बल बोलता है।
0: हाँ,
1: तो ऐसे, और छोटे बड़े का लिहाज नहीं है,
0: नहीं है,
1: तो रिश्ता कैसे बचेगा?
0: नहीं बचेगा।
1: रिश्ते को बचाना है तो आग में घी नहीं बल्कि पानी डालना चाहिए,
0: पानी डालना चाहिए अवश्य।
1: मेरा यही कहना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी, और आपको कहेंगे शुभ संध्या।
1: आपको बराबर पूजा।
0: अच्छा जी, धन्यवाद, बाय बाय। ये लाइन पर एक और श्रोता है, धनी जी है, आपका स्वागत है। धनी जी
2: नमस्कार। पूजा जी
0: नमस्कार।
2: जी आप ठीक हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: चलिए, आप भाग ले रहे हैं हमारे आप कार्यक्रम में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिश्तों का मुखौटा।
2: अपने दोस्तों को सुना, आपको भी सुना
0: जी,
2: ये विषय आज है, चल रहा है आज के समय में
0: जी,
2: ऐसा ही है आजकल।
0: हाँ।
2: किसी के बुरे समय में काम आना ये बड़ा दिल वाला होता है।
0: हाँ, ये तो
2: ये साहस चाहिए। जानते हैं पूजा जी, भगवान आपकी परीक्षा लेता है कभी कभी, उसी आदमी से आपसे मिलाएंगे जो संकट में है। भगवान देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी समय आएगा एक दिन, आपको पता नहीं है। आज अगर आप खुश है, सब कुछ है आपके पास, और अहंकार है आपके दिल में, किसी के काम नहीं आएंगे, अपने को देखते हैं
0: जी,
2: तो एक दिन आप भी मुश्किल में हो जाएंगे
0: जी।
2: तो यही भगवान की परीक्षा है
0: जी,
2: जानते हो। और आजकल ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं आपने बोला कि आजकल ऐसा ही हो रहा है
0: जी,
2: तो अपनों में भी, अपने घर ही में भी आपसे पीठ फेर लेते हैं अपने। अगर आप दुखी में है तो आपको जानेंगे ही नहीं,
0: मुंह फेर लेते हैं, मुंह फेर
2: लेते हैं। जब पैसा है, धन है, आप अच्छे हैं, खा पी रहे हैं, तभी वो लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे।
0: तो
2: ऐसा हो रहा है आजकल,
0: ऐसा हो रहा है, और इसी पर हम गुजर रहे हैं। तो चलिए जो है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विचार के लिए, और आज हम बात कर रहे हैं हम और आप में रिश्तों के मुखौटे।
2: और एक बात है,
0: आप
2: अच्छा कर रही है पूजा जी, आप समय को बांट रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी, नमस्ते।
2: नमस्कार।
0: चलिए, और भी श्रोता हैं लाइन पर, आइए उनसे हम बात करते हैं। अभी हमारे साथ हैं, हेलो
3: हेलो
0: हेलो।

0: विशेषर जी,
1: नमस्ते।
0: कैसे हैं आप? और
1: नमस्ते, सब ठीक है?
0: आज हम
1: हाँ,
0: बात कर रहे हैं रिश्तों के, रिश्तों का मुखौटा, और कौन अपना कौन पराया, और आपका क्या विचार है इस पे?
1: मेरा विचार है ये कि मैं एक छोटी सी कहानी बोल रहा हूँ, सच
0: जी,
1: की कहानी।
0: अच्छा, सुनाइए।
1: हाँ, तो एक धनवान परिवार था। तो धनवान परिवार था, बिजनेस था उनका। और ऐसा होता है कि चार बेटे चार बेटियां थी, और चारों बेटी की शादी हो जाती है, चार बेटे रह जाते हैं। चार बेटे के पास बहुत धन दौलत मिल गया, और लड़कर अपने माता जी से कहा कि हमें चाहिए अपना हक, और माता जी ने बंटवारा कर दिया। क्या होता है, उन लोगों को पैसे मिल गया तो अपने अपने बिजनेस चलाने लगा। माता जी तो अकेले छोड़ छोड़ दिए घर में, बड़ा घर था, और सब बेटे अपना अपना जमीन खरीद कर चले गए दूर दूर। अब ये बेचारी क्या करे, अकेली रहती थी, कभी गिर जाती थी, कभी बीमार पड़ जाती थी, कौन इसको, किसी में कोई नहीं था उनको रेख देख करने के लिए। तो क्या होता है अंत में कि एक पड़ोस कभी कभी आती थी, तो जब देखा कि ऐसे इसकी दशा ये है, तो उनको कोशिश करके उनको कहा कि क्या करोगे, बेटे बेटी तो बिल्कुल गंती नहीं ले रहे थे। तो कहा कि देखो, मुझे एक आश्रम में डाल दो। और वो आश्रय जो जो थी वाजिन, तो उनको जाकर एक आश्रम में रह, बीमार भी वहां थी, लेकिन एक बेटे का समय नहीं था बेटे बेटी को कि जाकर उनको एक बार देख लें। और अंत में बेटे का समय भी नहीं था, और उसकी मृत्यु हो जाती है आश्रम ही में। लेकिन बेटे को इतना बिजनेस में इतना पड़ गया था रुपया बटोरने में, और कई वो मॉरीशस छोड़कर चले गए थे, लेकिन कोई वहां पर नहीं गए,
0: जी
1: और आश्रम को उसका सब कुछ करना पड़ा। तो ये है रिश्तों, रिश्ता ये है कैसे होता है, जब धन मिल जाता है, माता जी को पिताजी को भूल जाते हैं, भाई भाई में टकराव होता है। तो यही है रिश्तों में, मेरा अंत में यही कहना है कि रिश्ता रिश्ता होता है, प्यार से रहो, अपने भाई बहनों में प्यार से रहो, प्यार बांटो, परिवार को देखो, कोई भी मुसीबत में पड़ जाए तो उसको जहां तक हो सके उनको सहायता दो, और एकजुट मिल कर रहो, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका, और आपके इस विचार और इस कहानी भी बहुत रोचक है, और जो भी आपने कहा इसी पर जो है आज हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत
1: हाँ,
0: बहुत धन्यवाद आपका,
1: बहुत
0: और
1: धन्यवाद
0: शुभ
1: पूजा जी,
0: संध्या
1: बहुत शुभ
0: आपको।
1: संध्या आपको भी, धन्यवाद।
0: तो चलिए, लाइन पर रिकॉर्ड श्रोता हैं, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते पूजा जी, मैं इंदिरा हूँ।
0: नमस्ते इंदिरा जी,
2: हाँ,
0: कैसी हैं
2: कैसे हो
0: आप?
2: पूजा जी? ठीक है, हाँ,
0: मैं
2: पिताजी
0: ठीक
2: एकदम
0: हूँ
2: बढ़िया है।
0: जी।
2: मैं बोलिए, सबको अच्छा ही बोरी विचार बोला है। आजकल तो आदमी का मोल नहीं है, पैसा का मोल है।
0: जी
2: और एक ही दो लाइन में एक गाना गाऊंगी तो आप समझ जाएंगे।
0: जी
2: देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आजकल इंसान का मोल नहीं है बहन,
0: जी
2: यही बोलूंगी।
0: जी
2: हाँ, शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या आपको भी। तो आइए, एक
2: हाँ,
0: और श्रोता है लाइन पर, आइए
2: जैसे कि
0: उनको
2: बोलते
0: हम
2: हैं
0: जिस जी
2: मनी हाथ बाजू,
0: जी
2: हाँ यही सब पैसा का मोल है।
0: अच्छा जी। तो
2: सबसे बड़ा रुपया एक ही में, सबसे बड़ा रुपया, हाँ
0: जी,
2: ये मोल चल रहा है आजकल कलयुग
0: आजकल
2: में,
0: बस यही चल रहा है, और
2: है
0: बस
2: कलयुग के
0: लोग इसी
2: मोल
0: पर
2: में।
0: बात
2: पैसा है
0: कर
2: तो सब कुछ है, पैसा है तो आपको देखेंगे, अगर पैसा नहीं है तो आपको फेंक देंगे।
0: जी।
2: हाँ, अच्छा, शुभ रात संध्या।
0: अच्छा जी, और शुभ संध्या आपको भी। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको भी हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर।

0: आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों का मुखौटा, और बहुत सारे लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं हमारा आप कार्यक्रम में, और लाइन पर कौन है आइए उनका हम स्वागत करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी
1: तो
0: हैं?
1: नाम की हाय बोला था
0: संगीता जी। चलिए बताइए।
1: हाँ, से मैंने की को पूजा में चल गए नहीं सकते आज बड़ी बतिया पांच वर्ष से।
0: अच्छा।
1: हाँ, कैसे सब ठीक बा?
0: सब ठीक।
1: हाँ, रिश्ता बोला तो रिश्ता तो चाहे ना हमने के दिल से है, मुहे से चाहे ना जोड़े के हमने के मन से चाहे कोई के देखब तब बतिया तो रिश्ता अपन मने अदमिया संगे को सुई कर ला तो कोई से तुहर अपन से बढ़ के होगल।
0: हाँ
1: कि नहीं ओकर से निमन से बतिया प्यार से प्रेम से एगो रिश्ता वो तो धरला अपन से जस्तीये बड़ा होगल हो। हाँ कि नहीं चाहे ना ऐसने रिश्ता जोड़े के। हाँ तो एगो सुई कर खुशी होगल अब एगो चीज अपन घरे बोलबा ये आए तू जैबा तो कितना खुशी होगा। ऐसने से मोबे नहीं चाहेला देख मोबे नहीं चाहेला पौसे करे के कोई की।
0: हाँ,
1: अपन मजे अपन दिल से निमन से सबसे बतियावा प्रेम रिश्ता जोड़े के बोलत हुआ।
0: हाँ,
1: रिश्ता। हाँ, मेम्बर भाई बट और बहन सब कोई से निमन से चाहेला जी,
0: निमन से चाहेला जी।
1: देखे ल दो दिन के बाद रहे के बात है यहाँ सब कोई से जाए बहुत प्यार से रहेगे।
0: हाँ,
1: रिश्ता जोड़ के। हाँ, ऐसे हमने के चाहेला जीवन ले जाए की का बोले।
0: हाँ,
1: अपन अपन घर में अपन बेटा अपन बेटा बटो लड़का लोग से भी खुशी से रहे के चाहे।
0: चाहेला रहे के निमने से,
1: निमन से खुशी से वो लोगो खुशी रही तोरा।
0: हाँ,
1: अब तू अपन पतो बेटा वो लोग से निमन से बेटा बेटो तोरा खुशी रही का बोले ला।
0: हाँ,
1: लही का लोग।
0: हाँ,
1: ये तो और से बोला था अच्छा बतिया ले ली तोर संगे।
0: धन्यवाद।
1: आले शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या आपको भी संगीता जी, और हम कहेंगे कि आपके विचार बहुत नेक हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो।
2: हेलो पूजा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते वीना जी, कैसी हैं आप? आपका जो आवाज़ है वो ठीक से नहीं आ रहा है,
2: अभी अभी
0: उसमें थोड़ी सी खराबी है शायद।
2: अभी अभी नहीं सुनाई दे रहा है।
0: सुनाई दे रहा है बहुत कम। अच्छा, बोलिए बोलिए।
2: हाँ, मैं यही दो चार शब्द बोलूंगी जो कि फोन का कभी कभी वो गड़बड़ हो जाती है
0: जी,
2: लेकिन सुन रही है ना आप?
0: अच्छा, बोलिए बोलिए।
2: हाँ, तो मैं क्या कहती हूँ कि अगर रिश्ते की मुखौटी के बारे में आप बोल रही है।
0: हाँ,
2: तो रिश्ता देखिए, अगर संसार को ही कहा है वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा संसार हमारा कुटुम्ब परिवार
0: जी,
2: सभी के साथ हमारा कोई न कोई रिश्ता होता है
0: जी,
2: लेकिन रिश्ते को किस तरह से निभाना ये हमारे हाथ में है,
0: ये हमारे ही हमारे ऊपर ही निर्भर है।
2: हाँ,
0: तो
2: और देखिए ना, इसीलिए तो रामचरितमानस में भी कहा गया है एक चौपाई में कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परख ये चारी, लेकिन चारों को मित्र स्त्री धर्म विपत्ति के समय में रिश्ता जो होता है विपत्ति के समय में दिखाई हम उसकी मतलब परीक्षा होती है
0: जी।
2: जब आप मुसीबत में हो, जब संकट में हो, जब कोई हाथ बढ़ाकर आपकी मदद करता है तो वही आपका सच्चा रिश्तेदार होता है
0: जी,
2: क्योंकि बिना दिखावा के हैं, बिना दिखावा के मैं बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम आते हैं इस संसार में तो हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता होता नहीं है
0: जी,
2: माँ के साथ सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं, फिर बाद में घर के सदस्यों से माता पिता भाई बहन, फिर ऐसे धीरे धीरे कितने हमारे रिश्ते बनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना पूजा जी, जब संसारिक दुनिया में जब हम रहते हैं, किसी को हम अगर मदद भी कभी कभी करना चाहते हैं ना, तो वो लोग अपने अहम के कारण वो स्वीकारते नहीं है
0: जी,
2: समझ रहे हैं ना, वो आपकी मदद लेना नहीं चाहते। जैसे एक में एक अहम होती है, समझ रही है ना
0: जी।
2: तो इस तरह से हम क्या इस समय में हम लाचार हो जाते, क्योंकि हम सच्चे दिल से मतलब सहायता करने चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं चाहते।

0: जी
1: ये भी होता है, क्योंकि देखिए वो संसार एक बगीचे की तरह, जिस तरह एक बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, उसी तरह भगवान ने जो संसार रूपी बगीचा बनाया तो तरह तरह के मनुष्य होते हैं,
0: जी
1: सबकी अपनी सोच होती है, सबका अपना विचार होता है। लेकिन श्यामा जी ने जो दर्शन सुनाया, जो फिलोसोफी उन्होंने दिया इस रिश्ते पर, बहुत अच्छा दिया। मेरा भी यही मानना है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि रिश्ता कैसा कैसा होता है, पेड़ पौधों के साथ भी रिश्ता होता है, हमारा जानवरों पशुओं के साथ भी होता है रिश्ता, सभी के साथ। लेकिन एक बात है, अगर कोई आपका मदद लेना स्वीकार नहीं करता है ना, तो शास्त्र में कहा है कि आप बीच वाला रास्ता निकालो, ना ही उसके साथ दुश्मनी करो, ना ही उसके साथ मित्रता करो, आप बीच वाला रास्ता, समझ रही है
0: जी।
1: आप तो समझदार है, समझ ही गई होंगी कि मैं क्या कहूँ। बीच वाला रास्ता मतलब कि उसके साथ ना ही, कैसे बोलते हैं, बहुत मीठा नहीं रहना है, ना ही कड़वा रहना है
0: जी।
1: उसको देखेंगे तो नमस्ते आदि बोलेंगे, हाल चाल पूछेंगे, लेकिन जैसे कि एकदम से अंतरंग मित्र, जैसे कि बोलते हैं ऐसे, इस तरह से नहीं। तो इस ऐसा जब हम कभी कभी करते हैं ना, तो हम ही खतरे में पड़ जाती हैं, मानेंगी। अगर आप किसी को के बारे में जानती नहीं है, रिश्ता बनाया है, और आप उससे अपना सारा कुछ, अपना मन का जो है भेद उड़ेल देते हैं, फिर बाद में क्या होता है, आप सुनेंगे थोड़े दिनों में कि आपकी बातें चारों ओर चर्चा में आ रही है, तो कैसा लगेगा फिर आपको, आपका तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा,
0: ठेस पहुंचेगा।
1: रिश्तों से ज्यादा खुद को, मनुष्य को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, और भगवान
0: किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहिए।
1: जी जी, और भगवान ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, ऐसी दृष्टि दी है कि हम पहली ही नजर में हमें जान जाना चाहिए कि ये मनुष्य कैसा है, ये रिश्ते बनाने लायक है कि नहीं है
0: जी।
1: नहीं तो कई बार हम खुद ही धोखा खाते, और हमारा फिर अंत में जग में हंसाई भी होती है, और हम कहीं के नहीं रहते हैं। अगर कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाता है तो आप अवश्य उसकी मदद कीजिए, अगर नहीं लेना चाहता है तो फिर तो हम क्या करेंगे इसमें, हमारा कोई बस नहीं है ना, ये उसकी मर्जी है। तो बस मैं यही जल्दी जल्दी में दो चार शब्द, पता नहीं मैंने क्या खिलाऊं सब भूल दिया है,
0: नहीं
1: क्योंकि मैं कब से वो लगा रही, जैसे मेरे सारे विचार भी उड़ गए जितना। लेकिन श्यामा जी ने जो कुछ कहा, लगभग वही मैं भी कहने वाला, उन्होंने बहुत अच्छा दर्शन जैसे बोलते हैं फिलोसोफी, उसके अंदर में जो होती है वो बातें उन्होंने कही
0: जी,
1: वो बहुत बहुत ही बढ़िया था। समझने वाले समझना चाहिए
0: जी,
1: तभी हम रिश्ते का सही अर्थ समझ पाएंगे
0: जी।
1: तो बस मैं यही यही कहती हूँ आपको, और आप अच्छे अच्छे विचार लाते हैं, अच्छे अच्छा विषय रखते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ, दोहराती हूँ कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं
0: जी,
1: और सिर्फ अभी के लिए सिर्फ रेडियो पर नहीं है, बाद में भी हम सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा एक विषय पूजा जी ने रखा था, सच में उसमें कोई वजन है, कोई बात है। तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी,
1: आशीर्वाद आपको,
0: आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी, आपने इतनी अच्छे अच्छे विचार दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और अच्छे अच्छे विषय लेकर आऊँगी आपके नाम।
1: जी जरूर, और आशीर्वाद आप ऐसे ही, आप भगवान आपकी बुद्धि को और विवेक को प्रखर करे, आपको और आपका मतलब विवेक खुले, आपकी दृष्टि खुली, भगवान उसमें मतलब और भी आपको सहायता करेंगे, और अच्छे से मतलब उसमें तेज आएगा आपके माथे पर, और अच्छे से आप इस तरह से विचार अपने आप आपके अंदर से आएगा हम समाज को देने के लिए। हम भी तो सीखते ही है ना, कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े विदुषी विद्वान हैं, हम भी तो आपसे सीखती ही है जो कुछ आप सुनाती है।
0: और मुझे मुझे तो बस एक एक अवसर मिल जाती है कि आप लोगों से मैं बात कर लूं।
1: जरूर, मेरा भी मैं पूरे सप्ताह यही, वैसे तो रोज मैं गुड मॉर्निंग विश भेजती हूँ, लेकिन जब बात हो जाती है तो मेरा पूरा सप्ताह सफल हो जाता है।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: आपके साथ भी मेरा बहुत गहरा रिश्ता है।
0: धन्यवाद वीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: मन से रिश्ता है, मन का रिश्ता है।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: शुभ संध्या आपको।
1: शुभ संध्या।
0: चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको भी हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो,
2: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ, और आपका क्या कहना है?
2: मैं बोसों से सुविता बोल

0: रही हूँ।
1: आपका स्वागत है सविता जी।
0: जी, सब भाई बहन सब की बातें बहुत अच्छी हैं। मैंने ये फोन किया, मैं ये गाना गाऊंगी।
1: चलिए गाइए।
0: प्लीज प्लीज।
1: हाँ जी गाइए।
0: ना जाने कैसे पल में बदल जाते
1: क्या बात
0: हैं।
1: है।

0: बहुत बहुत
1: कहाँ
0: सुंदर।
1: जाने के ना, ये तो सच है बहन जी,
0: हाँ जी।
1: ये सच है। और एक गाना है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई,
0: दुख में ना कोई जी।
1: ये सच बातें हैं, ये ही है पूजा जी मुझे कहने को।
0: हाँ,
1: बाय, शुभ
0: बाय।
1: संध्या।
0: शुभ संध्या आपको भी। तो चलिए, एक
1: हेलो,
0: और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको हम सुनते हैं। हेलो,
1: नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार बसंती जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
0: बताइए।
1: मैं 2 सप्ताह से सोचती हूँ,
0: अच्छा।
1: इस आपका जो सहराय है ना, एक दिन आपका छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन किसी ने ये बात कह दिया, मेरे दिल
0: अच्छा
1: के बात कह दिया
0: अच्छा
1: जी, आपका सहराय एक दिन ना, एक दिन हमें छोड़कर जाना पड़ता है ना। तो मैं आज सब सब कोई तो सब कुछ कह दिया, मैं 2-3 लाइन गा कर आपको सुनाऊंगी।
0: अच्छा, गाइए।
1: ठीक है। कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
0: क्या बात है।
1: कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठा, नाते हैं नातों का क्या। कसमी वादे प्यार वफा सब बात

0: अपना कोनी आखिर तुझको आग लगाएगा आसमान में, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमी वादे प्यार वफ़ात बातें हैं बातों का क्या।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बसंती जी, ये इस गीत में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और ये गीत तो मेरे पिताजी का जो है बहुत फेवरेट है, जब भी वो दुखी रहता है तो ये गीत गाता है। हाँ, और बहुत
0: हाँ, जब हम ओल्डीज पर्सन है ना, ये मुझे अच्छा लगता है सुनने के लिए ना।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बसंती जी। ये लाइन पर नवीन नचमन जी, शुभ नमस्कार आपको नवीन जी।
2: शुभ नमस्कार पूजा जी,
1: आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद। ठीक हो ना आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: चलो, तो रिश्ते पर बात हो रही है।
1: हाँ, रिश्तों का मुखौटा, कौन अपना कौन पराया।
2: सभी अपना है सभी पराया है
1: जी।
2: और कहूँगा आपसे
1: जी,
2: अगर इस संसार में कोई रिश्ता स्थापित करने वाला है तो वह मनुष्य जाति है
1: जी,
2: और कोई योनि में रिश्ता नहीं है। सिर्फ मनुष्य जाति में
1: जी,
2: तो क्यों नहीं से न निभाएं। लेकिन हमने सब खो दिए हैं, सब खो दिए हैं रिश्ते को। जहां खजाना है वहां रिश्ता नहीं है। और रिश्ता निभाने में प्रतीक्षा न करें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मरने के बाद, किसी व्यक्ति के मरने के बाद कुछ कहिए वो तो सुनेगा ही नहीं। कहो मेरा क्या था, क्या लगता था रिश्ते में, क्या हो, अब तो बहुत देर हो चुकी है
1: जी।

0: कहने का तात्पर्य, अगर किसी को क्षमा करना है तो करो तुरंत, सबके प्रति अच्छा बोलो
1: जी।
0: ये रिश्ता को यानी कि संभाल कर रखता है। देखिए एक बात बोलता हूँ आपको
1: जी,
0: एक ही चीज है सच, मौत मृत्यु
1: जी।
0: उस समय सभी लोग सोचते हैं, सभी लोग और शांत से जाते हैं, शांत वहां बैठते हैं, ओके कुछ प्रार्थना तो होती है, दूलिक और स्मशान जाते वक्त सोचते रहते हैं हमने कितना समय गंवा दिया, चाहे रिश्ते में चाहे कुछ में भी, और वहां से लौटते समय मन में आता है कि अब जीवन को प्रेम शांति और इंसानियत के साथ जिएंगे, रिश्ता बनाए रखेंगे, क्योंकि पेट में जो कुछ है अगर नहीं बोलेंगे तो वो पेट ही में रह जाएगा, हम मर जाएंगे। लेकिन घर पहुंचते ही वही स्वार्थ, वही अहंकार, वही गाली गलौज, वही आपसी तनातनी और फिर हम अपने जीवन को व्यर्थ करने लग जाते हैं। जानते हो पूजा जी, ये जिंदगी बहुत छोटी है
1: जी।
0: सभी दोस्तों से कहूंगा, सभी मेरे मित्रों से, सभी रिश्ते निभाओ, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं क्या मिलेगा, एक दूसरे को उठाने में लगाइए समय
1: जी,
0: क्योंकि अंत में साथ कुछ नहीं जाएगा। ये जो जो जो जो हुआ है गत सप्ताह नेपाल में, कुछ सोचने को दिया है, ये सब एक चेतावनी है, ये सब एक चेतावनी आदमी को सोचने के लिए। अब बोलते हैं अच्छा है, याद करना चाहिए, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है भगवान उनको शरण में ले लें, और जो लोग बच गए हैं उनके लिए हम प्रार्थना तो करनी चाहिए। तो क्योंकि मैं बोल रहा था कि अंध में कुछ नहीं जाएगा, रिश्ता तो तुरंत खत्म हो जाता है, जैसे एक एक एक, एक रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है, न मामा है अब, न चाचा है, न चाची है, न मामी है, न माँ है, न बाप है, न कुछ। तो ये अहंकार छोड़ो, धन के लिए ये रिश्ता मत रखो। तो मैं कहूंगा कि रिश्ते में न अहंकार, न धन, न दुश्मनी, ये हमारे साथ हमारे कर्म जाते। और सबसे अच्छी बात जो रखनी चाहिए, हमारी इंसानियत, हमारी मनुष्य तत्व, ये हमारे साथ रहेगा। देखिए एक बात कहूंगा, वो जो घर नहीं टूटा इस बार में, वे लोग शायद नहीं, ये भगवान उन लोगों को बचा लिया, कितने अच्छे कर्म किए होंगे, ये तो दोबारा उन लोगों के लिए दोबारा जन्म है। मैंने नहीं देखा था ये क्योंकि मैं बहुत गया था, लेकिन कल रात्रि में मैं कुछ देख रहा था, मैं जानना चाहूंगा कि क्या हुआ है नेपाल में
1: जी।
0: तो यही मैं कहूंगा, तो रिश्ता चाहिए हम निभाएं, क्योंकि हम ये रिश्ता स्थापित करते हैं मनुष्य जाति। धन्यवाद जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: छोटी सी दुनिया में और बात करेंगे, मैं बहुत देर से घर लौटा, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि रिश्ता रिश्ता बात हो रही है। चलिए नमस्कार, शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी, धन्यवाद। एक और श्रोता है, आखिरी श्रोता को हम ले लेते हैं, चलिए उनको भी हम अवसर देते हैं बात कुछ बात करने के लिए। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक है, आप ठीक है?
1: मैं ठीक हूँ। चलिए बताइए आपका क्या कहना है।
2: रिश्ते के बात होते हैं ना,
1: रिश्तों का मुखौटा, रिश्तों का मुखौटा, कौन अपना कौन पराया।
2: रिश्ते को एक गाना है ना, जो रिश्ते कभी टूटे कहाँ, जो टूटे जाए वो रिश्ते नहीं ना।
1: हाँ।
2: तो रिश्ते को अच्छे से संभाल को रखना चाहिए, उसको नहीं संभालेगा तो वो बिखर जाएगा, वो टूट भी करेगा ना।
1: हाँ।
2: किसी से उसद बात नहीं बोलना चाहिए, ठीक से बात करना चाहिए, अच्छी से बात करना चाहिए, उसको नाराज हो गई तो उसको अच्छे से बात करना चाहिए। अपने तो दूसरों को अपने रिश्ते बनाते हैं ना,

0: तो हमें इतने बोलते हैं सबके साथ अच्छा से बात करना चाहिए, रिश्ते अच्छा से बनाना चाहिए, बिगड़े नहीं देना चाहिए,
1: जी
0: इतने हम बोलते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विचार के लिए तारा जी, और शुभ
0: शुभ
1: संध्या आपको,
0: संध्या।
1: आपको भी। चलिए आज हमने बात किया है रिश्तों का, रिश्ते का मुखौटा कौन अपना कौन पराया। कहा जाता है कि जब इंसान अपनी तकलीफ, अपना जो समस्या है किसी को बताता है, या फिर किसी परिवार को बताता है, सदस्य को बताता है, परिवार के सदस्य को बताता है, तो ये नहीं कि वो शिकायत कर रहा है, सच में शायद वो किसी समस्या में है। अगर आपके बस में है सहायता करने के लिए तो सहायता कर लीजिए, परंतु उसका आप मजाक मत उड़ाइए। समय उसका बुरा है, आपका नहीं, आपका भी बुरा आ सकता है। और इच्छा भी मत करना चाहिए कि कोई आपका जो है सहायता कर सकता है। कोई सहायता करके बाल बाला भी करता है, बार बोलता है कि हाँ मैंने इसकी सहायता किया है, और जो बोल बाला करता है, चुगली करता है अपने आप को बढ़ाने के लिए, या फिर जो जिस इंसान के पास सब कुछ है फिर भी घमंड के साथ जीता है कि मैंने किया है, अकेले से किया है, सब कुछ किया है, तो ये घमंड

0: तो चलिए श्रोताओं, इसी के साथ हम और आप कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ, और जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे।
1: हम और आप, हम
0: तो सबको की नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। तो हर पसंद कार्यक्रम में सबको की हमने स्वागत करा थे जा, और थोड़े पसंद के गीत हमने चलाओ अब जा, और भोजपुरी गीत, गमट के गीत चलाल बातें। तो ये कार्यक्रम में भाग लेवे खातिर सकब जा हमनी के टेलीफोन करे 4028085 पर, नहीं तो सेकंड 3 पर सकब जा मिसाजो भेजे। तो चला आज अभी जुन जुन परिवार है और जुन जुन श्रोतागण हमनी संगे जुड़ल हवन जा, सब कोई के बुलब जा बहुत बहुत स्वागत है। चल सब कोई खातिर
2: चल
0: चल हमनी संगे
2: घुमा दे
0: सुन गमट कर अब सर, कहाँ बड़ी तोहार पसंद कार्यक्रम में।

हमार लगे एक ऐसा श्रोता आवेला हर दिमाग के बोलेला हमार गीतवा डाल दे रहे, हमार गीतवा डाल देवा, काहे कि हम सुनत हैं हर घड़ी हमार गीत पछिला डाल दिले हो ये खातिर खिसिया जाला। तो सुनीता जी गाँव गुप से हवन जा और अपन बहिन विमला जी के गीतवा के मांग कर ले बाते और कर देने से उकर बहिन खातिर। तो चला जिन जिन ये गीतवा के पसंद करे नंजा और जो सुनानोयान जी के गीत के पसंद करे नंजा खास तौर पर सुनान चिरंगी जी और उनका सब परिवार। तो चला अभी हमनी सुनब सा कौन फुलवा सुनानोयान के गावल गीत सुना था वह तुहार पसंद कार्यक्रम 4028085 पर सब कोई के हमनी इंतजार करा थी जा।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा

संगत करा जान के पानी पिया छान के, कहे कि संगत जब करवा उही संगत से तो हर जीवन में नयापन आई, नयता तो हर सोचो बदली। हये चाहेला निमन से अपन मित्र के संगत्या लोग के सोच विचार करके संगत करा, जान के तप जाके संगत्या करा, मित्रता करिया। तो चला अभी जुन्हा रीता खेदनी जी खातिर एगो गीत और ई संगत कर जान के ई गीतवा के मांग कर ले रहा शांता सुकारी जी। और चला अभी नीता खेदनी जी और कर सब खेदनी परिवार के नाम

गीत खास तौर पर नीता खेदनी जी खातिर और अभी जन हमनी संगी शोभा जी जन सादे वन जा खास तौर पर मिसी सिंह मीरा मोहन जी के गावल गीत की मांग कर ले बाते और गीतवा कर सब परिवार खातिर रहता चला है गीतवा हमने सुनी रसा चतनिया।

तो चलो अभी जो है शोभा जी वाकवा से हवन जा और रंभा राम तोहल जी के गावल गीत और कैसा पुरान परिवार के नाम और जे कोई गीत वाके पसंद करे लन जा खास तौर पर वीना रामफुल जी और साथ में श्यामा रघुनंदन जी आशा जानू जी और मामा कुमारी और भांजी जुन हंशिवम और जीजा और दीदी आरती खातिर साथ में चित्रा जी और कमला जी कमला दिनू जी और प्यारी आरोही और साथ में जे गीत वाके पसंद करे लन जा रंभा जी के पसंद करे लन जा चला गीत वो हमने सुनी रासा और खास तौर पर काजल जी जो हाईलैंड से सुनत हवन जाओ कर छुटका बाबू खातिर और कर सब परिवार खातिर।

तो चला अभी हमनी संगे जुड़ल हवन जा शैला जी गांव हवे सुदेश से और अपन सब परिवार खातिर गीतवा के मांग कर ले बाते। तो चला जब बिस्वानी जी आवेला तो तोरा नचा के ही छोरी है ना बिस्वानी जी। चला अभी सुनत हवा तो तोहर खातिर भी है गीतवा हमनी चलावत हैं जा और जिन जिन गीतवा के पसंद करेलन जा और है गीतवा में तो जब भी जाएबा गीत गवाई में तो है गीतवा खेलेला है गीतवा ओकर गमट हुएला सब कोई नाचे ला गीतवा में। तो चला मिशेजोज कुंच पहन के आल हवा तोहर सापो कहाँ बाते कॉस्ट्यूम कहाँ बाते। तो चला खासतौर पर बिस्वानी दीपा जी के गावल गीत मिशेजोज़

सही गीतवा खासतौर पर धनी जी बौशेगी से हवन जा और अपन सब परिवार खातिर है गीतवा के मांग कले रहल। तो चले एक और गीत हमने चलावत हैं जब प्रीति रंजित जी के देने से उकर सब मेंबर्स जो का उकर सदस्य उन वननेस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जो है मुकेश सुखदेव जी के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भेजा थवन जा आयुषी येशा और उनकी पत्नी रागिनी जी के देने से उकरा जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं और जे के अपन जन्मदिन जे कोई अपन जन्मदिन मनावत हवन जा आज जा पूरे MBC टीम के देने से सब कोई के जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं।

सबको की जोन बोला जा खास तौर पर मुकेश जी जो अपन जन्मदिन के मनावत हवन जा और जे कोई अपन जन्मदिन मनावत हवन जा सब कोई के जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो है अनिता चाची चलाल हवन जा बोला तवन सरदार बोले एतवा है गीतवा डाल द हमार सब परिवार खातिर और बेटी आरती और साथ में बातें छोटी सी या और पर सब सदस्य परिवार के सदस्य खातिर और जी कोई गीतवा के पसंद करे लन जा ब्रह्मा राम तोहल जी के गावल गीत है।

तकरी हुए संगे हमनी तोहार पसंद कार्यक्रम के अंत तक चलाल हैं जा और अंतिम गीत जन लिखराज जी और ओकर सब परिवार खातिर धोती पोती पगड़ी के गीत की मांग कर ले बाते और खास तौर पर यूनियन बॉक्स से सुदेवी जी अपन बहिन के सालगिरह पर गीत के मांग कर ले बाते तो चला ओकरो खातिर है गीतवा हमनी चलावत हैं जा शिव गोबिंद परिवार के नाम तो चला सबको की बोला जा नमस्ते स्वस्थ रहिया सुरक्षित रहिया पूजा को अनुमति दा हमार देने से सबको के नमस्ते प्रणाम।

घड़ी मिलाइए, शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने 50 साल पुराने कोविल के स्थान पर नए सुलिचित मारियामेन कोविल की आधारशिला रखी और समाज में आध्यात्मिकता तथा राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से 700 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 3000 से ज्यादा लापता। तोबिश में तटीय कटाव से निपटने के लिए विशेषज्ञ रेत भरने और कृत्रिम संरचनाओं के बजाय लगूनों की गतिशीलता और चक्रवातों के अनुकूल हाइब्रिड समाधान अपनाने पर जोर दे रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय और MFDC जल्द ही स्थानीय प्रतिभाओं को तलाशने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज सुबह सुरीचित में नए मारियामेन कोविल की आधारशिला रखी। 50 साल से भी ज्यादा समय से पुराने इस कोविल की हालत समय के साथ खराब हो गई थी, इसलिए मौजूदा ढांचे को गिराकर एक नई इमारत बनाई जा रही है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस अवसर पर अपने संदेश में आध्यात्मिकता के महत्व पर बल देते हुए इसे समाज की नींव कहा। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण और उसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने

0: के लिए हर संभव कोशिश करेगी सिल्वाना पारिमामन रजनीबीकर।
1: तमिल परंपरानुसार समारोह संपन्न हुआ और विधियां चलाई गईं। सोलिचित मारियम्मन कोविल के लिए निर्माण के प्रारंभ का प्रतीक उड़ाना ढांचा 1972 का था, लेकिन इसका इतिहास इससे पूर्व 19वीं सदी से है। शर्तबंद कामगारों के आगमन के साथ सोलिचित मारियम्मन कोविल के अध्यक्ष मुरुगा नारायणन ने कहा, काफी समय बीतता चला गया और कोविल पुराना हो चला। पुराने ढांचे को गिराना पड़ा और इसके बदले में एक नए कोविल को बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये एक प्रतीकात्मक घड़ी है। उन्होंने भविष्य के लिए आस्था के कार्य की बात कही।
2: कोने स्पिरिचुअलिटी समय बाज टू सोसाइटी हां मन वैल्यू एंड मन रिलीजन इनकल्केट डन नोर लाइफ सेम मन बूसोल जा फॉर नोर सोसाइटी सा रिचेस कल्चरल की नू पेयी नन ला ऑफिस एन ग्रैंड बेनेडिक्शन फॉर नू नू बिज कंटिन्यू फेयर टू एमो फेयर टू फॉर कंटिन्यू रासेंबले टू मन कंपोजेंट de la société, de la communauté mauricienne. Le gouvernement fait tout pour encourager aussi sauvegarder mon patrimoine parce qu'il nous besoin de transmettre mon culture de génération en génération. Il y a beaucoup d'organisations comme Tamil Speaking Union, Manchester Tamil Cultural Center Trust qui est présent là. Le mandaté pour promouvoir la culture et la langue tamoul, mais aussi pas juste pour promouvoir propager. C'est grâce à une organisation pareille, comme Bancoville, à travers Maurice, qui communauté capable d'avancer car compose une culture.
1: नए कोविल के निर्माण की शुरुआत मंगलवार के लिए निर्धारित और कार्य एक वर्ष में पूरा होगा, तब यहाँ पर कई पर्व मनाए जा सकेंगे जैसे कि कावेदी आदि।
0: श्रावण मास हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस महीने के दौरान विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए। सप्ताहांत के दौरान श्रावण मास के समापन के संदर्भ में देश के कई इलाकों में पूर्णाहुति विधि संपन्न की गई। तो विश्व में समंदर के बढ़ते जलस्तर और इरोजन की समस्या से निपटने के लिए ज़रूरी उपाय लागू करना पहले से कहीं ज़्यादा आवश्यक हो रहा है। अनुमान है कि 2026 से हर साल कुछ इलाकों में 1 से 2 मीटर तक जमीन का कटाव होगा। इस बेहद संवेदनशील इलाके में समंदर तट, समुद्री इकोसिस्टम और आसपास के मूल ढांचों को खतरा है। रेत की भरपाई, सुरक्षा के ढांचे बनाने से लेकर प्राकृतिक सुरक्षा उपाय बनाए रखने तक संबद्ध विशेषज्ञ लगूनों की स्थितियों और तूफानों के खतरों को ध्यान में रखते हुए अब हाइब्रिड समाधान अपनाने की सलाह दे रहे हैं। सकाउनु गीता सुनरान।
3: तो विश्व में समुद्र तट का कटाव लगातार तट को नुकसान पहुंचा रहा है। रेत के बहाव को रोकने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। इनमें समुद्र तट पर दोबारा रेत डालना, लगून में ऐसी संरचनाएं बनाना जो लहरों की ताकत को कम करें और तट के किनारे सुरक्षा के लिए ढांचे बनाना शामिल हैं। डॉक्टर राजीव भीरू कहते हैं, फिलहाल 2 परियोजनाएं हैं। एक में पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी में जियो टेक्सटाइल का।
4: Liban EPI, mais l'EPI a implémenté avec ce qu'on appelle un géotextile, un sac géotextile.
3: लेकिन क्या ये उपाय लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे? समुद्री विज्ञान और तटीय समुद्र विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव भीरू का मानना है कि समुद्र तटों के पास अब भी मौजूद पक्के ढांचे कटाव को बढ़ावा देते रहेंगे। एक दीवार रेत के बहाव को नहीं रोकती बल्कि इसे तेज करती है। सभी समुद्री पौधों को नुकसान होता है। प्लेटफॉर्म मोरिस लॉविगोनमॉ की आदि तिलक भी इसी राय से सहमत हैं। उनका कहना है कि समुद्र के किनारे होने वाले निर्माण की बेहतर और सख्त योजना जरूरी है। प्रकृति आधारित समाधान या प्रकृति और पत्थर के मिश्रण वाले समाधान, इनका मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या ज्यादा अच्छा है हर जगह के लिए। हमारे लिए ये बेहतर समाधान है।

0: Ça, pour nous, c'est une meilleure solution.
1: फिलहाल थोबिश को तटीय सुरक्षा के लिए प्राथमिकता वाले इलाकों में शामिल किया गया है। यहाँ पत्थरों से सुरक्षा दीवार बनाने, दोबारा रेत डालने और समुद्र तट के विकास एवं सुधार के काम किए जाने की घोषणा की गई है।
2: वैश्विक स्तर पर खाद्य सामानों के आयात को लेकर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए फागे खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा है। इस दिशा में देश के खेतीहरों और पशु

0: वर्ष में स्थानीय उपभोग का लगभग 70% भाग आयात किया जाता है।
1: कृषि उद्योग मॉरिशस का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और रोजगार पैदा करने में बहुत ही योगदान देता है। फागे से कई किसान और पशुपालक आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि फागे की 20 से ज्यादा सहायता योजनाएं हैं और उसका मानना है कि इन योजनाओं में बदलाव करना अब जरूरी हो गया है। फागे की CEO डॉक्टर माधवी मधु कहती हैं, कुछ सहायता योजनाएं 10 या 15 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गई हैं, पैदावार की लागत, मौसम परिवर्तन, मजदूरों की समस्याएं आदि, इसलिए सब्सिडीज और ग्रांट्स पर फिर से गौर करने का समय आ गया है। अब फागे में किसी भी नई परियोजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति पहली आर्थिक सहायता मिलने के 3 महीने बाद दूसरी सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकता है। कृषि भूमि के क्षेत्रफल और कृषि किराए की अवधि को लेकर भी अब नियमों में अधिक लचीलापन है। मेजिन कोडमास्क में सब्जियों की खेती के लिए ग्रीन हाउस चलाने वाले फरदीन लाल मोहम्मद इससे खुश हैं। वे कहते हैं,
2: मैं
1: और मेरा भाई दोनों के ग्रीन हाउस हैं। मेरे साथ ग्रीन हाउस हैं, टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च रोपते हैं, कंपनियों और आम जनता के लिए खेती करते हैं। बजट में ऐलान किए कदमों के अनुसार हम और 2 स्कीम्स पाने के योग्य हैं, ताकि अपने कारोबार को हम बढ़ा सके। हमें इससे लाभ उठाना चाहिए। ग्रीन हाउस में खेती को बढ़ावा देना, यही शेल्टर्ड फार्मिंग स्कीम का उद्देश्य है। फागे के उप निदेशक अखिल आनंद जी गुलुब कहते हैं, एक व्यक्ति के पास कम से कम 400 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए 250 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस बनाने के लिए। पहले एक व्यक्ति को कम से कम 2 ग्रीन हाउस दे सकते थे, अब इसे बढ़ा दिया गया है ताकि पैदावार ज्यादा हो। एक व्यक्ति को अब 4 ग्रीन हाउस मिल सकते हैं और मल्टी स्पान के लिए 2000 वर्ग मीटर पर हर 500 वर्ग मीटर के लिए ग्रांट मिलेगा। मॉरिशस अपने उपभोग के लिए करीब 70% खाद्य पैदावार का आयात करता है। फागे के अनुसार ये नई योजनाएं आयात पर हमारी निर्भरता कम करने में मदद करेंगी और देश की खाद्य सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।
0: बैंक ऑफ मॉरिशस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी एक झूठी तस्वीर को लेकर जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसमें केंद्रीय बैंक की गवर्नर प्रिसिला मतुगाताकू को जनता से एक फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए दिखाया गया है। बैंक ऑफ मॉरिशस जनता से सावधानी बरतने और इस प्रकार की किसी भी धोखाधड़ी की स्कीम से निवेश न करने की मांग करता है। और स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, उभरते हुए स्क्रीन राइटर्स तथा सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए ये खबर। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जल्द ही मॉरिशन प्रतिभाओं की तलाश के वास्ते एक प्रतियोगिता शुरू करेगा। देश में फिल्म उद्योग को नई गति देने के मकसद से इस परियोजना में एक मॉरिशस एंटरटेनमेंट अकेडमी का निर्माण शामिल है, जिसमें एक स्थानीय स्टूडियो और कैंपस की स्थापना भी होगा। पेश है अंजुराम गुलाम और रजनी बिकर की ये रिपोर्ट।
3: हल्की रोशनी वाले कक्ष के द्वार पर लाल रंग के सोफे मानो कोई महोत्सव। हर कोई अपने कार्य एवं भूमिका निभाने की तैयारी में। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाना चाहता है, स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन तक के सफर तक। इस तरह मॉरिशस एंटरटेनमेंट अकेडमी कायम करना, सिनेमा के एक स्टूडियो के साथ साथ मॉरिशस में एक कैंपस भी। MFDC के CEO केविन गति ने कहा, यही उम्मीद है कि बॉलीवुड का समा बंध जाए। आज जो ढांचे कायम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए तैयार खड़े हैं, साथ ही हमारी स्थानीय कहानियों को भी विदेश की ओर भेजने के लिए तैयार है। परियोजना की कुल लागत कोई 5 बिलियन रुपए। चूंकि ये रकम आसमान से तो मिलने वाली नहीं, ना ही किसी स्पेशल इफेक्ट से, अतः MFDC ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के वास्ते एक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। मकसद है उनसे पहली भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। द स्टूडियो ग्रुप के फाइनेंस एवं इन्वेस्टमेंट प्रमुख मेरेडिथ ऑनत ने कहा

0: sometimes sports and music, and at the heart of these campuses is education and training.
1: ये फिल्म स्ट्रीमिंग है, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, गेमिंग भी, कभी पोज, कभी संगीत. कैंपस में मुख्य रूप से शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा स्थानीय नौजवानों के लिए, ताकि यहाँ उद्योग कायम हो, न केवल स्टेज तैयार करें. कास्टिंग पर पॉल ब्रेट मौजूद, वे बर्तानी सिनेमा के प्रोड्यूसर एवं फाइनेंसर है. मुख्य रूप से ओस्कर वाली फिल्म द किंग्स स्पीच या लेजिस्कू द रॉ और अमेरिकी कॉमेडी फिल्म शेफ के लिए, जिसमें डस्टिन हॉफमैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और स्कारलेट योहानसन शामिल. द स्टूडियो ग्रुप के सह संस्थापक एवं प्रोड्यूसर पॉल ब्रेट ने कहा,
2: स्मॉल आइलैंड, यू हैव मेनी मेनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड,
1: यहाँ पर भारी संभावनाएं हैं. एक छोटा टापू है, दुनिया के कई इलाकों के लोग हैं, और जियोग्राफिकली भी अफ्रीका के साथ बहुत ही अच्छे संपर्क है. पूरे महाद्वीप में सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक, गल्फ राष्ट्रों के साथ भी बेहतरीन संपर्क है, चीन के साथ भी ये एक बहुत ही लोकप्रिय गंतव्य है. दूसरी तरफ अपना रुमाल निकाल कर रखने की तैयारी कर लीजिए, माघी माओ या तुलसी की ही तरह एक शो होगा जिनके 200 एपिसोड्स होंगे. इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है.
3: Sur des histoires qui vont parler de Maurice.
1: मेजावा अफ्रीका के प्रोड्यूसर अलेक्जेंड्र रिडो ने कहा, ऐसी कहानियां हैं जो मॉरिशस के बारे में बताती हैं, मॉरिशन जनता के लिए, साथ में इलाकाई दर्शकों के लिए भी. दुनिया भर में लोगों को देखने और जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह यहाँ लोग खास जिंदगी जी रहे हैं. ऐसे में स्थानीय प्रोड्यूसरों को भी कैमरा एक्शन बोलने की चाह. मॉरिशन प्रोड्यूसर निवेन पारिमानन ने कहा, आधारशिला रख रही है ताकि 10-15 वर्षों या इससे कम अवधि में ही एक वास्तविक फिल्म उद्योग हो, हर साल कलाकार हो, फिल्म निकले. तब तक पॉपकॉर्न तैयार रखिए. MFDC की ओर से जल्द ही स्थानीय लेजेंड पर आधारित एक फिल्म प्रसारित की जाएगी. संकेत के लिए यही बता दें कि वे स्पाइडरमैन की तरह पोशाक तो नहीं पहनते, पर नग्न ही घूमते थे. एक विनाशकारी तूफान के गुजरने के बाद लोगों को डराते थे.
4: बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, संयुक्त राष्ट्र ने कल जारी कम्युनिके में पहली बार नेपाल में आई आपदा के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया है. नेपाल में हजारों लापता लोगों का पता लगाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं. इस विनाशकारी बाढ़ से के 5 दिन बाद मरने वालों की संख्या 700 पार कर गई है और जीवित बचे लोगों के मिलने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं. विधिमासी बोलन.
5: बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के 900 से अधिक लापता कामगारों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है. आपातकालीन कर्मियों ने एक सुरंग में हवा पंप की है और भोजन गिराया है, लेकिन अभी तक अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है. 3,000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं. अमेरिका पहले घोषित किए गए $500,000 से बढ़ाकर $3.6 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है. इस आपदा में कम से कम 750 लोगों की जान जा चुकी है. नेपाल में 700 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और चीन में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है. नेपाली अधिकारी बढ़ते शवों की संख्या से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं और चीनी अधिकारियों ने कहा है कि उनके खोज दलों को अभी तक कोई और जीवित व्यक्ति नहीं मिला है. भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए 11 टन मानवीय सहायता लेकर अपनी चौथी राहत उड़ान रवाना की है, जिससे भारत की कुल हवाई मार्ग से भेजी गई राहत सामग्री 68.5 टन हो गई है.
4: यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक आवासीय इलाके में रूसी ताकतों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कम से कम 37 लोगों की मौत हुई है. 400 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं. ये हमला यूक्रेनियन सेना के हथियारों के एक भंडार केंद्र को निशाना बनाकर किया गया था. इस पर और विदेश की कुछ अन्य खबरों पर यह अगली रिपोर्ट.
5: शुक्रवार देर रात कीव के पास एक गोला बारूद डिपो पर हुए रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 37 लोग मारे गए, जो इस साल यूक्रेन में हुए सबसे घातक हमलों में से एक हैं. 2 महीने से भी कम समय में यूक्रेनी राजधानी के पास किसी हथियार डिपो पर हुआ ये दूसरा ड्रोन हमला था. एक लिखित बयान में ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों से आग्रह किया है कि वे अपने असली दुश्मन को पहचानें, उसकी योजनाओं को समझें और उसका मुकाबला करें. उप विदेश मंत्री काजम गरीब आबादी का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है और ईरान इसे दोबारा खोलने की जल्दी में नहीं है. आइसलैंड ने एक दशक पहले पिछली वार्ताओं के रुकने के बाद यूरोपीय संघ में शामिल

0: होने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की योजना को खारिज कर दिया है। एक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी निर्वाचन क्षेत्रों के पूर्ण परिणाम सामने आने के बाद यूरोपीय संघ के खिलाफ पड़े वोटों का प्रतिशत 52.5% से 47.5% रहा। यूरोपोल के अनुसार यूरोप के संग्रहालयों में तेजी से हिंसक और परिष्कृत आपराधिक नेटवर्क से बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुई एक हाई प्रोफाइल चोरी में दो व्यक्ति गुरुवार को आगंतुकों के रूप में वियना के अप्लाइड आर्ट्स संग्रहालय में दाखिल हुए और कुछ ही देर में करोड़ों डॉलर मूल्य का एक अनमोल 200 कैरेट का प्लैटिनम और डायमंड नेकलेस लेकर वहाँ से फरार हो गए।
1: आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी बरकरार है, जो कल सोमवार 31 अगस्त दिन के 10 बजे तक जारी रहेगी। मास्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाली जोरदार एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, खासकर देश के पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। जनता से खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है, खासकर ऊंची जगहों पर न जाएं और सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए खासकर क्रॉस विंड्स वाली जगहों पर खास सावधानी बरतें। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों और तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से दूर समंदर और इन तटीय इलाकों पर भी न जाने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 13 से 15, अधिकतम 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 17 से 20, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:19 पर सूर्योदय, शाम को 6 बजे सूर्यास्त होगा।

0: देश विदेश की खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फिजान हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रेजिडेंस नाटुआ रोड ट्रायंगल गुडलैंड्स में, नाटुआ रोड ट्रायंगल गुडलैंड्स में 84 साल की 84 इयर्स ओल्ड श्रीमती सियुरानी परेस, श्रीमती सियुरानी परेस जो सोनी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे के बेटे श्री नवीन गणेश के मकान नाथुआ रो त्रियोंग गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। अलेजाक रोड नोवेल फ्रांस में, अलेजाक रोड नोवेल फ्रांस में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड श्री मनोज कुमार बैं जो मनोज नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती कल्याणी बैं के मकान अलेजाक रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट हाफ पास्ट नून। नंबर 9 पेयर रोबेर जीरो गली रोशबा में, छिहत्तर साल के 76 ईयर्स ओल्ड श्री नारायण सामी उचामा जो तो नारायण नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनके मकान नंबर 9 पेयरोबेजीरो गली रोशवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। मारामाजो गुडलैंड्स में 32 साल के 32 ईयर्स ओल्ड श्री जेविन ग्रीधर जो चिपची नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे इनकी अर्थी कल दिन के

एबोजेन के पिताश्री भगवान दास गिरिधर के मकान मनामाजो गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाह हुई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2:30 PM सिमिट्री रोड अमोरी में, सिमिट्री रोड अमोरी में 76 साल की 76 years old श्रीमती पंजाले रंगेन, श्रीमती पंजाले रंगेन पैदाशी नाम जोन की, जो सरोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान सिमिट्री रोड अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल में, शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल में 39 साल की 39 years old श्रीमती शालिनी दनपत भवानी दीन, श्रीमती शालिनी दनपत भवानी दीन पैदाशी नाम दनपत, जो शालिनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी मंगलवार 1 सितंबर को, इनकी अर्थी मंगलवार 1 सितंबर को दिन के 10 बजे इनके मकान शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन 1 सितंबर। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: MBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। सीबी एनएचडीसी सुयाक और मोसेलमो ग्रीगरी के ग्राहकों को सूचित करता है कि आगामी मंगलवार 1 सितंबर 2026 को प्रातःकाल के 9 से लेकर शाम के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मंगलवार 1 सितंबर 2026 को प्रातःकाल के 9 से लेकर 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सीबी इन ग्राहकों को यह भी सूचित करती हैं कि मरम्मत कार्य के समाप्त होते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। इन असुविधाओं के लिए सीबी क्षमा प्रार्थी हैं। ये थी एक व्यक्ति सीबी की ओर से।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस

晚风轻拂，歌声悠悠，暂且放下生活纷扰，继续聆听动人旋律。

美好的音乐时光即将结束，听众朋友，愿今晚这份惬意为新一周积蓄力量。感谢收听晚风歌单，我们下次节目再会。

எத்தனையோ வழிகள் உண்டு. முதல் வழி மன்னிப்பு.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: नमस्कार श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम। अरे प्रभु का नाम जपते जपते अचानक लड्डू का ध्यान आ जाता है तो लगता है कि वाह लड्डू मिल जाए तो मजा आ जाए। तो भाई किसकी जीत हुई, प्रभु के नाम की या स्वाद की इंद्रिय की? स्वाद की इंद्रिय की। उसी समय याद आता है मेरे फ्रिज में चॉकलेट है, चलो उठ के थोड़ी खा लेते हैं। तो किसकी जीत हुई, प्रभु के नाम की या स्वाद इंद्रिय की? स्वाद इंद्रिय की। तो श्रोताओं, प्रभु का नाम जपते हुए अपने आप को संयमित करना और नहीं हो पा रहा तो सीखना, यह बहुत ज़रूरी है। यही है भजले प्रभु का नाम। जैसे अध्यापक की कक्षा हो, जब तक उसकी कक्षा है बच्चा कक्षा से बाहर नहीं जाता, खाना नहीं खाता है, उसे पता है घंटी बजने तक उसे कक्षा में बैठकर पढ़ना है। ठीक ऐसे ही अपने मन को हमें कंट्रोल करना होगा कि नहीं, अभी मैं प्रभु का नाम भज रहा हूँ, मन तो इधर उधर नहीं भागेगा। तो आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, इस जीभ में तो बहुत ही लालच है, एक और खाने के स्वाद और दूसरी ओर निंदा रस लेती है। और निंदा रस की तो पूछिए ही मत, चाहे घंटा भर एक ग्रुप को बिठा दीजिए, इतना आनंद लेते हैं वे लोग कि आप कहें चलिए अच्छा दो मिनट और एक मिनट और, वे लोग बार बार यही कहते हैं। तो निंदा जब किसी की करते हैं तो अपने भीतर उन बुराइयों को ले आते हैं। बल्कि कबीर तो कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुबाए। अरे भाई रख लो बुराई करने वाले को, बिना साबुन और पानी के तुम स्वच्छ हो जाओगे। तो श्रोताओं, ये तो है भक्तों की स्थिति कि वे परवाह ही नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जिह्वा को कंट्रोल में रखें। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आस्वाद का व्रत बहुत जरूरी है, इसीलिए कभी कभी हम व्रत भी रखते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो, आज पूरा दिन मैं केवल पानी पीऊंगा या मैं केवल जूस पीऊंगा, आज मैं कुछ अन्नहार नहीं लूंगा। इस तरह से हम अपने आप को संयमित करते हैं। तो ये एक तरह का उपवास है। उपवास मतलब अपने शरीर को भी शुद्ध करना और मन को भी संयमित करना, क्योंकि बहुत बार हम बहुत ज़्यादा भी खा लेते हैं। तो ये उपवास हमें सिखाता है कि भाई अपने मन को संयमित करो, कुछ भी हो आज हम नहीं खाएंगे। तो श्रोताओं, यह है प्रभु का नाम भजन, जो हमारे भीतर ऐसी शक्ति को पैदा करता है।

श्रोताओं, आहार लेना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आहार सिंपल या सरल आहार या सात्विक आहार का मतलब ये नहीं कि वह स्वाद रहित हो। अरे आप आम खाइए, कितना स्वाद है उसमें। आप संतरा खाइए, जूस का आनंद आ जाता है। केला खाइए, स्वाद ही स्वाद है। बहुत चीज़ों में, सात्विक आहार में भी बहुत स्वाद है, लेकिन हमें अपने मन को सात्विक बनाना होगा। यदि हर समय आप राजसिक और तामसिक ढूंढेंगे तो सात्विक आहार आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। इसीलिए श्रोताओं, प्रभु नाम जब लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन सात्विक होने लगता है। यहाँ तक कि मिठाई भी सात्विक हो सकती है। दूध से बनी मिठाई है, पनीर की मिठाई है, बहुत ज़्यादा तली हुई नहीं है तो सात्विक मिठाई है। तो श्रोताओं, ज़रूरी ये है कि जो मन रूपी मंदिर है इसको ठीक रखना है। यदि मन मंदिर ही ठीक ना रहा तो फिर क्या प्रभु का नाम लेंगे। और मन को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही भोजन करना ज़रूरी है। तो इसलिए श्रोताओं, प्रभु का नाम लेने के लिए पूरा जीवन बदलना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, भोजन करें तो प्रभु का धन्यवाद करें, सुबह उठें तो प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु जो भोजन तुमने मुझे दिया लाखों को यह नहीं मिलता है, जो बिस्तर और नींद तुमने मुझे दी हजारों को नहीं मिलती है। हे प्रभु, तेरा बहुत धन्यवाद है कि तुमने मुझे एक अच्छा जीवन दिया, सोचने की बुद्धि दी, अच्छे मित्र दिए, अच्छा घर दिया। हे प्रभु, मैं तेरा कृतज्ञ हूँ। जितना उसके प्रति कृतज्ञता दिखाएंगे उतनी विनम्रता आएगी, उतना पता चलता है कि इस संसार में मैं कहाँ हूँ, एक बिंदी भी नहीं। तो जो विनम्रता और कृतज्ञता आती है तब व्यक्ति प्रभु का नाम और अधिक लेता है। तो श्रोताओं, इस अंतिम भजन के साथ मुझे और यज को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ीद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की उर्दू नशरियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खैर मकदम खुलूस कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से हैं। सामीन मोहतरम, आइए महफिल शब की इब्तिदा इस खूबसूरत कलाम से करते हैं।

हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का लुकमा गिर जाए तो उसे उठा ले, उस पर लगी हुई गंदगी साफ़ कर दे और फिर उसे खा ले और उसे शैतान के लिए न छोड़ दे। इस हदीस से मालूम होता है कि खाने को ज़ाया करना दुरुस्त नहीं। अगर खाना गिर जाए और उसे साफ़ करना मुमकिन हो तो उसे साफ़ करके इस्तेमाल करना चाहिए। इस्लाम हमें अल्लाह ताला की नियमतों की कद्र करना सिखाता है। आज के दौर में जब बहुत सा खाना ज़ाया किया जाता है, इस हदीस की अहमियत और भी बढ़ जाती है।

कि तुम्हारे खाने के किस हिस्से में बरकत है। खाने के हर हिस्से में अल्लाह ताला की बरकत हो सकती है, इसलिए खाने को बिला वजह ज़ाया नहीं करना चाहिए। बर्तन में बहुत सा खाना छोड़ देना या सिर्फ थोड़ा सा बचा कर फेंक देना नियमत की कदर के ख़िलाफ़ है। खाने के बाद बर्तन को साफ़ करना और जितना खाना लिया हो उसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना अच्छी इस्लामी आदत है। सामीन मोहतरम, हम अपने प्रोग्राम महफिल शब के आखिर तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक और ताकत अता करे। मौला करीम तमाम अहले ईमान को अच्छी सेहत अता करे और जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता करे। आइए महफिल शब के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ ये महफिल ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। शब बख़ैर और खुदा हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 9:10 हो गए बा हमनी से जुड़ल हो जा AM2 और AM फ्री पर श्रोतागण यही है तोहर मनपसंद रेडियो चैनल जिकर पर रोज के तोहर खातिर प्रोग्राम चलेला भोजपुरी तड़का तोहर स्वागत उषा करता बरका बरका नंबर वा मिलाल 402-4-5 और अपन गीत की मांग करा फौरन हमनी से तोहर बात भी हो जाए और फरमाइश भी पूरी हो जाए हम तोहर साथ हाय रात के 11 ले तो चल ये कार्यक्रम वा जारी रखा और अगला गीत खासकर चलो भोजपुरी बजा बाजे बॉयज के गावल गीत इंद्रानी जी खातिर जो हमने सुना था बुबासे से

ए दादा कहाँ जाला बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का
2: रात के 9:24 हो गल बा भोजपुरी हमनी के संस्कृति के एगो अहम हिस्सा है। एक साथ कबो नहीं छोड़िया नई पीढ़ी के वे संस्कृति से अवश्य अवगात करिया और ये भाषा हमेशा जीवित

रही। बड़ा काम बातें मुश्किल बा पर असंभव नहीं है। तो चला अगला गाना खास कर अनीता जी खातिर जोन रही लाफी कॉम्फ्लाक और ये बखत हमनी के सुनता गाना खास कर मांगा तवंजा पति राज खातिर बेटी अंतिश अंकुश बहु मनीषा आशी माँ और पोती हिमेशा के लिए और आदिया के नाम और हमारे सभी रेडियो मॉरिशस और ये रेडियो मनोरंजन के सभी सुनने वालों के लिए।

ते चलो छोटा लोग अगला गीत ललिता पुनीत के गावल गीत और गाना जाएगा जानवी खातिर जोन रहिला बनते और ये बखत हमने के सुनाता

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी जगत के जोन चमकता सितारा बहते ओ तह हमनी के गायक कलाकार लोगन, परंतु भोजपुरी के सागर के जोन माही होवन ओ तोहलोक श्रोतागण होवा जा, काहे कि तोहर बिना त भोजपुरी तड़का के कोनो मोल नहीं भ, पर तोहर साथ ई प्रोग्राम

राम हो जाला अनमोल। तो चला रात के 9:40 अगला गाना सुदेवी जी खातिर जन रहिला पोपलमो सॉरी बखत हमने के सुनाता गाना एकर खातिर और परिवार खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 9:53 हो गल बा। श्रोता लोग बाहर देखबा तब बहुत तेज हवा बहा था, इतना ठंडा करा था कि का तोरा बोली है ना, अपन ख्याल रखिया और गर्म में रहिया। साथी लोगन पूछा था वन कि हमने ठंड के मौसम में कैसे काम करा था, जानेला तो हर प्यार के नतीजा है, चाहे गर्म हो या ठंडा हमने के कर्तव्य है चाहेला निभाए खातिर। और यहाँ पर निशा जोन रहीला वाकवा और ई बखत जुड़लबा गाना मांगा तवन जा पति देव खातिर और बीता कुश खातिर।

stand up in the yard. Sonu, basa tu ase kam paral bahar. Kaito ke.

भोजपुरी तड़का तड़का।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:18 हो गल बा। श्रोता लोग, नेपाल में देखला कितना भीष्म भार उठल हाइल। देखबा करे जा कांप गल, इतना कोई के जान चल गल, कितना लोगन दुख से तटपट हो अंजा। चला सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करी जा कि जल्द ही सब कुछ हुआ पर स्थिर हो जाए। और यहाँ भोजपुरी तर्क का कार्यक्रम तो हर नाम और धर्म जी जो रहिला बेल रोज और बखत हमने के सुनाता साथ देने खातिर बहुत धन्यवाद। ये गाना तो हर खातिर और जितना कोई भक्त काम करता और गाड़ी चलावता तो हर खातिर ये गाना कृषि के गावल गीत।

0: भोजपुरी तड़का।
1: संगतिया लोगन, संगीत के असर त जन्म भर होला। संगीत के लिए तो बहुत मेहनत और तपस्या करे के चाही। चला अगला गीत माहिन जी खातिर और ओ रहला पालमा और गाना मांगत वंजापन खातिर पूरे देवनाथ परिवार खातिर और संगी धर्म पत्नी मीला खातिर।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। स्वीकार कर लीजिए, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। तो बड़े प्यार से सारे म्यूजिक लवर्स का हम स्वागत करना चाहेंगे इन सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

कभी रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि घर का एक हिस्सा था। आज भी वही एहसास लेकर हम आपके साथ हैं, लेकर आए हैं वो गीत, वो पीढ़ियों को जोड़ने वाला, ऐसे खूबसूरत नगमे जो चुन चुन कर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से शो में, आपका सुनहरे पल। आप कहीं से भी अगर हमारा साथ दे रहे हो तो ये अगला नगमा सीधे हमारे दिल से आपके दिल तक ऑन रेडियो मॉरिशस।

एक गीत और हजार यादें, बस इसी खूबसूरत रिश्ते का नाम है सुनहरे पल। तो जल्दी से अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर दीजिए, क्योंकि अगला नगमा जो हम पेश करने वाले हैं वो सीधे आपके दिल को छू लेने वाले हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए ये अगला गाना हमारे दिल से आपके दिल तक।

हम हैं आपके प्यारे से दोस्त आरजे की निशा, जो आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहां हर गीत सुर सुना नहीं जाता, महसूस किए जाते हैं, जहां हर धुन एक कहानी सुनाती है और हर कहानी हमें उन सुनहरे पलों तक जरूर लेकर जाती है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए यादों का ये हसीन सफर खासकर आपके नाम।

0: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आंखें जरा बंद कर लीजिए और इन गीतों के साथ अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पलों को याद कीजिए। शायद आज का कोई गीत आपको किसी अपने के और करीब लेकर आए, और हम दिल से उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए आपके लिए। तो चलिए जी, सुरों में खो जाइए और गुनगुनाइए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: दिल जला।
1: पुरानी फिल्मों के गीत आज भी इसलिए अमर हैं क्योंकि उनमें सिर्फ सुर नहीं, दिल की सच्चाई बसी हुई है। आइए उन अनमोल नगमों का बस स्वागत करते हैं दिल से, इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: हम दिल से उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आपने दिल से एंजॉय किया और आपकी यादों को आपने याद करते करते बस मुस्कुराते रहे थ्रू आउट दी होल शो। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू। आप हमें प्यार से इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के शो में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस
2: गे ऑन टैक नाउ टैक। अरे दादा ये क्या गलती किया, इतना पिल

0: दिया।
1: अरे तो क्या कोई चोरी किया?
0: नहीं दादा।
1: कोई डाका डाला?
0: नहीं दादा।
1: कोई खून किया?

0: अरे छोटे,
1: आ दादा।
0: देख जैसे ये रेलगाड़ी चली जा रही है ना,
1: आ दादा,
0: हमारी जिंदगी का सफर भी यूं ही चला जा रहा है, समझा?

दो दीवाने दो आ दादा दीवाने दो यार दो जान एक जिस्म दो दुनिया के नौ अजूबे अरे